0: सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: रेडियो मॉरिशस
2: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस
3: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।
0: बुधवार 3 जून घड़ी मिला लीजिए, सवेरे के 6 बज रहे हैं। रेडियो मॉरिशस पर आप सभी सुनने वालों का स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से नमस्कार स्वीकार।

0: आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आस्था से। नमस्कार।
1: नमस्कार, 6 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। कल कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल को राज्यसभा में संशोधनों के साथ पारित किया गया। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि केवल संविधान भर से किसी लोकतंत्र की रक्षा नहीं की जा सकती। उनके अनुसार लोकतंत्र की असली ताकत मजबूत संस्थाओं और जागरूक नागरिकों में निहित है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलता और विकसित होता रहना चाहिए। संसद की कार्यवाही अब शुक्रवार 19 जून शाम 5 बजे तक स्थगित कर दी गई है। इससे दिन बजट 2026-2027 पेश किया जाएगा। बजट से पहले विभिन्न पक्षों के साथ परामर्श बैठकों का दौर 29 अप्रैल से 6 मई तक 5 दिनों में आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम पहले ही संकेत दे चुके हैं कि मौजूदा वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और भू राजनीतिक तनावों के बीच ये बजट चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। सरकार ने वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए 2,264 मिलियन रुपए की अतिरिक्त बजटीय राशि की मांग की है। इसके तहत द सप्लीमेंट्री अप्रोप्रिएशन बिल को राज्यसभा में पहली बार पेश किया गया। इस अतिरिक्त राशि का उपयोग प्रिजन सर्विस, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर और भूमि एवं आवास मंत्रालय समेत विभिन्न विभागों के बढ़े हुए खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। FCC ने एसेट्स डिक्लेरेशन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव घोषित किया है। अब डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एक्ट में संशोधन के बाद सभी डिक्लेरेशंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मुदफ के माध्यम से जमा करनी होंगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि उसने ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर कार्रवाई की। अमेरिका के अनुसार ये कदम ईरान की ओर से मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाब में उठाया गया। और अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: Center 94, North, South 95.6, East, West 98.2. You are listening to RM3 Radio.
4: بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ RM3 ہے پرویزہ کا ساتھ ہے اردو تشریحات بنام سب الخیر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ تمام سامعین خیریت اور عافیت سے ہوں گے روشنیوں رحمتوں اور برکتوں سے سجی اس سے خوبصورت نشریات میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں مزید سامعین یہ وہ لمحات ہیں جب دل ذکر الہی سے منور ہوتے ہیں روح کو سکون ملتا ہے اور ایمان کو تازگی نصیب ہوتی ہے تو آئیے مزید سامعین اس سے روح پرور محفل کا آغاز کرتے ہیں اللہ رب العزت کا بابرکت کلام سے جو سراپا ہدایت اور سراپا نور ہے بغور و با ادب سماعت فرمائیے تلاوت قرآن پاک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम रा, ये एक पुरनूर किताब है। इसको हमने तुम पर इसलिए नाजिल किया है कि तुम लोगों को अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाओ, यानी उनके परवरदिगार के हुक्म से इज्जत वाले खूबियों वाले मालिक के रास्ते की तरफ, यानी उस अल्लाह के रास्ते की तरफ कि जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब उसी का है, और उन काफिरों के लिए अजाब शदीद की वजह से तबाही और बर्बादी मुकद्दर है जो आखिरत के मुकाबले में दुनियावी जिंदगी को पसंद करते और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते और उसमें कजी चाहते हैं। ये लोग बड़े दूर की गुमराही में हैं।

और हमने कोई पैगंबर नहीं भेजा मगर वो अपनी कौम की जबान बोलता था ताकि उन्हें अहकाम इलाही खोल खोल कर बता दे। फिर अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह रहने देता है और जिसे चाहता है हिदायत देता है, और वो गालिब है हिकमत वाला है।

हमने मूसा को अपनी निशानियां देकर भेजा कि अपनी कौम को तारीकियों से निकालकर रोशनी में ले जाओ और उनको अल्लाह के दिन याद दिलाओ, और इसमें उन लोगों के लिए जो साबिर और शाकिर हैं निशानियां हैं।

और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह ने जो तुम पर मेहरबानियां की हैं उनको याद करो, जबकि उसने तुमको फिरौन की कौम से रिहाई बख्शी, वो लोग तुम्हें बुरे बुरे अजाब देते थे और तुम्हारे बेटों को मार डालते थे और तुम्हारी लड़कियों को जिंदा रहने देते थे, और इसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बड़ी आजमाइश थी।

और जब तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको आगाह किया कि अगर शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा और अगर नाशुक्री करोगे तो याद रखो कि मेरा अजाब भी सख्त है। और मूसा ने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम और जितने और लोग जमीन में हैं सब के सब नाशुक्री करो तो भी अल्लाह बेनियाज है, काबिल तारीफ है।

भला तुमको उन लोगों के हालात की खबर नहीं पहुंची जो तुमसे पहले थे, यानी नूह और आद और समूद की कौम और जो उनके बाद थे, जिनका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। जब उनके पास उनके पैगंबर निशानियां लेकर आए तो उन्होंने अपने हाथ उनके मुंहों पर रख दिए कि खामोश रहो, और कहने लगे कि हम तो तुम्हारी रिसालत को तस्लीम नहीं करते, और जिस चीज की तरफ तुम हमें बुलाते हो हमको उसमें भारी शक है।

उनके पैगंबरों ने कहा, क्या तुमको अल्लाह के बारे में शक है जो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है? वो तुम्हें इसलिए बुलाता है कि तुम्हारे गुनाह बख्शे और एक मुद्दत मुकर्रर तक तुमको मोहलत दे। वो बोले कि तुम तो हमारे ही जैसे आदमी हो, तुम्हारा ये मंशा है कि जिन चीजों को हमारे बड़े पूजते रहे हैं उनके पूजने से तुम हमें रोक दो। तो अच्छा, कोई खुली दलील लाओ यानी मौजजा दिखाओ।

पैगंबरों ने उनसे कहा कि हां हम तुम्हारे ही जैसे आदमी हैं, लेकिन अल्लाह अपने बंदों में से जिस पर चाहता है नबूवत का एहसान करता है, और हमारे इख्तियार की बात नहीं कि हम अल्लाह के हुक्म के बगैर तुमको तुम्हारी फरमाइश के मुताबिक मौजजा दिखाएं, और अल्लाह ही पर मोमिनों को तो भरोसा रखना चाहिए।

और हम क्यों अल्लाह पर भरोसा न रखें, हालांकि उसने हमको हमारे दीन के सीधे रास्ते बताए हैं। और जो तकलीफें तुम हमको देते हो उस पर हम सब्र करेंगे, और अहले तवक्कुल को तो अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए।

और जो काफिर थे उन्होंने अपने पैगंबरों से कहा कि या तो हम तुमको अपने मुल्क से बाहर निकाल देंगे या तुम हमारे मजहब में वापस आ जाओ। बस उनके परवरदिगार ने उनकी तरफ वही भेजी कि हम जालिमों को हलाक कर देंगे और उनके बाद तुमको इस जमीन में आबाद कर देंगे। ये उस शख्स के लिए है जो कयामत के रोज मेरे सामने खड़े होने से डरे और मेरे अजाब से खौफ करे।

और पैगंबरों ने अल्लाह से फतह चाही और हर सरकश जिद्दी नामुराद रह गया। उसके पीछे दोजख है और उसे पीप वाला पानी पिलाया जाएगा, वो उसको घूंट घूंट करके पिएगा और गले से नहीं उतार सकेगा, और हर तरफ से उसे मौत आ रही होगी मगर वो मरने में नहीं आएगा, और उसके बाद सख्त अजाब होगा।

जिन लोगों ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया उनके आमाल की मिसाल राख की सी है कि आंधी के दिन उस पर जोर की हवा चले जो उसे उड़ा ले जाए। इसी तरह जो काम वो करते रहे उन पर उनको कुछ काबू न होगा। यही तो परले सिरे की गुमराही है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमानों और जमीन को तदबीर से पैदा किया है? अगर वो चाहे तो तुमको नाबूद कर दे और तुम्हारी जगह नई मखलूक पैदा कर दे, और ये अल्लाह को कुछ भी मुश्किल नहीं।

और कयामत के दिन सब लोग अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो गरीब पैरोकार बड़े बन बैठने वालों से कहेंगे कि हम तो तुम्हारे पैरो थे, क्या तुम अल्लाह का कुछ अजाब हम पर से दफा कर सकते हो? वो कहेंगे कि अगर अल्लाह हमको हिदायत करता तो हम तुमको हिदायत करते। अब हम घबराहट जाहिर करें या सब्र करें, हमारे हक में बराबर है। कोई जगह रिहाई की हमारे लिए नहीं है।

0: अलीम।
1: और जब हिसाब किताब का काम फैसल हो चुकेगा तो शैतान कहेगा, जो वादा अल्लाह ने तुमसे किया था वो तो सच्चा था और जो वादा मैंने तुमसे किया था वो झूठा था, और मेरा तुम पर किसी तरह का जोर नहीं था। हाँ, मैंने तुमको गुमराही और बातिल की तरफ बुलाया तो तुमने जल्दी से और बेदलील मेरा

0: कहना मान लिया तो आज मुझे मलामत न करो, अपने आप ही को मलामत करो। न मैं तुम्हारी फरियाद रसी कर सकता हूं और न तुम मेरी फरियाद रसी कर सकते हो। मैं इस बात से इनकार करता हूं कि तुम पहले मुझे शरीक बनाते थे। बेशक जो जालिम हैं उनके लिए दर्द देने वाला अजाब है।
1: सदकल्लाहुल अजीम। कुरान पाक की इन मुतबर्रिक आयतों की तिलावत और उनके उर्दू तर्जुमे ने यकीनन हमारे दिलों को एक अजीब सा सुकून और हमारी रूह को एक नई ताजगी बख्शी है। यकीनन कुरान मजीद में वो पैगामात हैं जो इंसान को अल्लाह से जोड़ देता है। अल्लाह ताला हमारे दिलों को नूर ईमान से मुनव्वर फरमा दे, हमें कुरान को समझने, अमल करने और उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की तौफीक दे। आमीन। उस ज़ाते किबरिया की तिलावत के बाद जिसके ज़िक्र से कायनात का हर ज़र्रा रद्द अमल देता है, आइए मुअज़्ज़िज़ आमीन मिलकर सुनते हैं एक नहायत ही खूबसूरत और मुनफरिद हम्द बारी ताला।

0: बेशक दिलों का सुकून अल्लाह के ज़िक्र में है, हमारे ख़ताओं की कोई हद नहीं मगर तेरी रहमत का शुमार नहीं। हम जो भटक जाएं अंधेरों में, तेरे सिवा कोई गफ्फार नहीं। ये और एम फ्री है, परवीज़ा का साथ है, उर्दू प्रोग्राम मसल खैर में दिन के 7 बजे तक। मज़ी सामीन, अभी कुछ ही दिन कबल हमने ईद उल अधा की मुबारक और सईद घड़ियाँ गुजारी हैं। घरों में रौनकें थीं, दस्तरखान सजे हुए थे, कुर्बानियाँ हो रही थीं, हर तरफ एक अजीब सा जोश खरोश था। लेकिन क्या ईद उल अधा सिर्फ 3 दिनों के मेले का नाम था? क्या कुर्बानी सिर्फ एक जानवर के गले पर छुरी फेरने और गोश्त को तकसीम कर देने का नाम था? बिल्कुल नहीं। अकीदतमंद सामईन, जब ईद उल अधा का ज़िक्र होता है तो हमारा जहन फौरन उन सुनहरे पन्नों की तरफ चला जाता है जहां एक अजीम बाप और एक फरमाबरदार बेटा खड़े हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की दास्तान वफ़ा ये कोई आम कहानी नहीं है। ये इश्क और तस्लीम और रज़ा की वो मेराज हैं जहाँ अक्ल हैरान रह जाती है। एक ख्वाब में हुक्म दिया जाता है कि अपनी सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान कर दो, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सबसे प्यारी चीज़ क्या थी?
1: हाँ।

यकीनन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास वो बेटा था जो बुढ़ापे की लाठी था, वो बेटा जो सालों की दुआओं के बाद नसीब हुआ। मगर मज़ी सामीन, जब खुदा का हुक्म आता है तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम लड़खड़ाते नहीं, वह अपने बेटे को बताते हैं और बेटे का जवाब सुभान अल्लाह। बेटा कहता है, अब्बा जान, आपको जो हुक्म दिया जा रहा है आप वो कर गुजरिए, आप मुझे इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में से पाएंगे।

ये आर एम फ्री हैं और आप सुन रहे हैं उर्दू नशरियात बनामे मसल खैर। शामिल मोहतरम, आप अपने दिल पर हाथ रख कर सोचिए, आज हम किस दौर में जी रहे हैं। आज अगर हमारे वालिद थोड़ी सी मुज़ाहमत पर हमें टोक दें, हमारे किसी ख्वाहिश के आगे दीवार बन जाए या हमें किसी गलत काम से रोक दें, तो हमारे चेहरे उतर जाते हैं, हम बदतमीज़ी पर उतर आते हैं। कईयों तो सिलसिलाए ताल्लुक तोड़ देता है, मगर वहाँ फरमा बरदारी का ये आलम था कि जान की कुर्बानी के लिए भी गर्दन हाजिल थी। सुभान अल्लाह।

शामिल मोहतरम, हमने जानवर तो कुर्बान कर दिए, क्या हमने अपने अंदर के उस नफ्स को कुर्बान किया जो हमें हर रोज़ बुराई की तरफ ले जाता है? क्या हमने अपने

डर के उस तकबर पर छुरी फेरी जो हमें दूसरों से सिलसिलाए मोहब्बत जोड़ने नहीं देता। क्या हमने अपने उस गुस्से और हसद की कुर्बानी दी जो हमारे घरों के सुकून को खाक में मिला रहा है? या अल्लाह, हमने जो कुर्बानी

हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा मिजाज और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसी फरमाबरदारी नसीब फरमा, हमारे घरों को सुकून और मोहब्बत का गहवारा बना दे। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला नसीब फरमा और जो परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा, आमीन। हमें भी अपनी दुआओं में शामिल करें। तकनीकी मदद अंजू की रही है, मशकूर व ममनून है हम। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक परवीज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

0: सुजन रेडियो
1: सर्वे जना सुजनो भवन्तु सर्व सुजना सुखिनो भवन्तु शुभमस्तु शुभोदयम अंदरिके नमस्कारम श्रोतलु मीकु तोलिरागालु कार्यक्रमानिकि प्रेमतो स्वागतिस्तुन्नदि मी सन्नीतमैन स्नेहितुरालैन गिरीशालिनि ई रोजु बुधवारं जून नेलकु 3వ तेदीन मी अंदरू क्षेमंगा उन्नारनि आशिस्तू नीटि चिट्टि कार्यक्रमान्नि मोदलु पेडुतुन्नां श्री विनायकुडि पाटतो

छोकरो रे विधातानु आ गीत लाजवाब गीत ने 10 वागीने 27 मिनिट भाई आपणे कहीए ने के प्रेम नी अविरत लागणी नी वात छे भाई गम्मे एटला रोकी लियो खुद ने पण जे

0: वो हमारी साथ है।
1: भाई जाशे रे, वन ऑफ द सक्सेसफुल मंत्र आपने कही है ना कि लाइफ नी प्रॉब्लम्स ना झमेलाओ माथी निकलवा माटे नो एक सरल रस्तो। कारण कि घणी वक्त प्रॉब्लम्स एटली बधी आवी जाए एंड लाइक वी आर स्टक अप विथ थिंग्स, आपणे बहार ज नथी निकली शकता। सो घणी वक्त आपणे कही है ने कि जस्ट ट्राई टू डील इन बिट्स एंड पीसीस, बधी ज प्रॉब्लम्स नु सोल्यूशन छे। बट इट्स जस्ट लाइक कि आपणे कही ने कि घणी वक्त आपणा एग्जाम जेवू छे कि भाई वचमां एक छुट्टी नहीं अने एक पछी एक टाइम टेबल में पेपर्स नी लाइन। अने आपणे कही ने कि नो रिविजन करवानो टाइम मळे कि नो रिलेक्स करवानो टाइम मळे, बस त्यारे ज पोतानी जातने ए विश्वास देवड़ावू कि थई जाशे, बधुं बराबर थई जाशे। माटे आपणे कहीए ने कि भाई डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट, ऑलवेज बी प्रिपेर्ड, ऑलवेज तैयारी राखो। तैयारी राखवाथी तमे हमेशा बस ए घड़ी माटे, ए टाइम माटे तमे हमेशा पोतानी जातने तैयार राखो छो। सो गाइज, आजना आपणा कार्यक्रममां गीतोनी जादूगरी एंड विथ दिस द लास्ट सॉन्ग, आजनू छेल्लू गीत छे सुपरस्टार फिल्ममांथी लेवामां आवेलू अरमान मलिकनू वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग, वन ऑफ माय बेस्ट सॉन्ग। अने आ साथे ज आजना आपणा कार्यक्रमने बस अहीं फुल स्टॉप लगावीशुं। होप के तमारो आजनो दिवस आपणा गीतोना जेम फुल ઓન એનર્જેટિક રહે, ફૂલ ઓન સ્ફૂર્તિ ભરેલો રહે એન્ડ વિથ ધીસ બસ એન્જોય કરતા રહો આપણા ગુજરાતી દૈનિક ગીતો જે ચાલે છે રેડિયો મનોરંજન પર એવરી ડે 10 વાગ્યાથી લઈને 10:45 સુધી। અને ઇટ્સ ઓલરેડી 10:40, ટાઈમ ટુ સે ગુડ બાય। તો આ સાથે જ રત્નાને આપો અનુમતિ, ફરી મળીશું આવતીકાલે 10 વાગે અહીંયા જ રેડિયો મનોરંજન પર। નમસ્કાર, શુભ દિવસ એન્ડ ગુનગુનાતા રહો આ ગીત।

नमस्कार प्रिया श्रोताओं, एमबीसी रेडियो पर आप सबका अभिवादन है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मनोरंजन के साथ और प्रस्तुत है भक्ति में शक्ति कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए मैं उषा कौर यहाँ पर। जी हाँ श्रोताओं, कहते हैं जो हृदय में प्रेम और दया रखता है वही सच में धार्मिक होता है।

कहते हैं धर्म का असली अर्थ केवल मंदिर जाना पूजा करना नहीं होता बल्कि हर जीव के प्रति प्रेम दया और सम्मान रखना होता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों से दूसरों के जीवन में खुशी लाता है वही सच्चे अर्थ में धार्मिक और आध्यात्मिक होता है। मनुष्य चाहे किसी भी धर्म को माने अगर उसके हृदय में सच्चाई करुणा और विनम्रता है तो वही उसकी सबसे बड़ी पूजा है। भगवान को शब्दों से ज़्यादा साफ मन और नेक कर्म प्रिय होते हैं।

11:07 हुए हैं श्रोताओं। एक गांव में दो व्यक्ति रहते थे। एक रोज मंदिर जाता था, बड़े बड़े पाठ करता था और सबको अपने धर्म का ज्ञान देता था। दूसरा व्यक्ति ज्यादा पूजा पाठ नहीं करता था, परंतु हमेशा गरीबों को की मदद करता, भूखों को भोजन देता और सबसे प्रेम से बात करता। एक दिन गांव में एक संत आए। दोनों व्यक्ति उनके पास गए और पूछा, सच्चा धर्म क्या है? संत मुस्कुराए और बोले, धर्म केवल शब्दों और रिवाजों में नहीं होता, धर्म तो वो उस व्यवहार में है जिसे किसी के जीवन में सुख और शांति आए। फिर संत ने दूसरे व्यक्ति की तरफ देखकर कहा, जो मनुष्य बिना दिखावे के दूसरों का की सेवा करता है, वही सच्चे अर्थ में धर्म का पालन करता है। उस दिन पहले व्यक्ति को समझ आया कि धर्म का सबसे बड़ा रूप इंसानियत, प्रेम और सेवा है।

श्रोतो, गणपति बप्पा का जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्ची सफलता केवल बल से नहीं बल्कि बुद्धि, धैर्य और विनम्रता से मिलती है। उनके बड़े कान हमें ज़्यादा सुनने की सीख देते हैं, छोटी आँखें हर चीज़ को ध्यान से देखने का संदेश देती हैं और उनका शांत स्वरूप बताता है कि कठिनाई समय में मन को स्थिर रखना चाहिए। जीवन में कितने भी विघ्न आए, अगर मन में विश्वास और कर्म में ईमानदारी हो तो हर रास्ता आसान बन जाता है। गणपति हमें ये भी समझाते हैं कि ज्ञान तभी सुंदर लगता है जब उसके साथ दया और नम्रता जुड़ी हो। इसीलिए हर दिन एक नई शुरुआत समझकर गणेश जी के आदर्शों पर चलना ही सच्चे जीवन का

श्रोताओं कहते हैं धर्म का मार्ग कभी भ्रमित नहीं करता, वह सदा सही दिशा दिखाता है। सत्य और नीति पर चलने से ही मनुष्य का जीवन पवित्र बनता है। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो चला। अपने साथ दिया धन्यवाद। उषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार और शुभ दिन।

0: Club Center, 95.5. North, South, 95.6. East, West, 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: 12 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। बजट 2026-2027 अगली 19 जून को पेश किया जाएगा। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, बढ़ती महंगाई और भू राजनीतिक तनाव के बीच इस बजट पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। सरकार पहले ही संकेत दे चुकी है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए ये बजट चुनौतीपूर्ण रह सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल सुधार के साथ कल राज्यसभा में पारित। प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम ने कहा कि केवल संविधान भर लोकतंत्र की रक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती, बल्कि मजबूत संस्थाएं, पारदर्शी व्यवस्था और जागरूक नागरिक भी उतने ही आवश्यक है। सरकार ने नागरिक समाज से भी सुझाव देने की अपील की है। सरकार ने वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए 2,264,000,000,000 रुपए की अतिरिक्त बजटीय राशि की मांग की है। सप्लीमेंट्री अप्रोप्रिएशन बिल राज्यसभा में पहली बार पेश किया गया। यह अतिरिक्त राशि प्रिजन सर्विस, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के कार्यालय, कई विभागों, मंत्रालयों के बढ़े हुए खर्चों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। एमओआरए ने जुलाई 2025 से अप्रैल 2026 तक वीएटी के रूप में 52,200,000,000 रुपए से अधिक की राशि एकत्रित की है। ये जानकारी प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में कल दी। उन्होंने सांसद ईशान जुमन के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए ये आंकड़े पेश किए हैं। विदेश मंत्री रितेश रामफल ने राज्यसभा में एक बार फिर दोहराया कि मॉरिशस हमेशा से फिलिस्तीनी जनता के अधिकार और स्वतंत्र राष्ट्र की मांग का समर्थन करता आया है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून, बहुपक्षीय सहयोग और शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में मॉरिशस अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखेगा। डिक्लेरेशंस ऑफ असेट्स एक्ट में संशोधन के बाद संपत्ति घोषणा प्रक्रिया में बदलाव लागू हो गया है। अभी डिक्लेरेशंस ऑनलाइन मंच के माध्यम से जमा करनी होंगी। ये व्यवस्था पहली जून से लागू हो चुकी हैं, जबकि पहली जुलाई के बाद कागज़ पर जमा किए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि उसने ईरान के एक सैन्य नियंत्रण केंद्र को निशाना बनाया। वहीं ईरान ने भी मिसाइल और ड्रोन के जरिए अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का किया दावा। अमेरिकी सेना के अनुसार कई हमलों को बीच रास्ते में ही रोक दिया गया है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। बेक्सली हीथ कैंट यूके में 74 साल के 74 years old की जयराज जीबन की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें अनिल के नाम से ज़्यादा जानते थे और वे पहले टागोर रोड फोंजिसाक के रहने वाले थे। उनकी अर्थी शुक्रवार 5 जून को यूके के समयानुसार 3 बजे वहीं पर उठाई जाएगी। शोकग्रस्त परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
4: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv.
5: You're listening RM3 Radio.

0: अरे हम तो गिर पड़े।
1: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
2: अजी शीला रानू जितने भी हैं सब हमारे साथ हैं और हमारे साथ जुड़ गए हैं। 12:10 हुए हैं। बुधवार 3 जून इस आफ्टरनून में मैं विदिता आप सबों का स्वागत करती हूँ हमारे प्रोग्राम में। जी हाँ, सुहाना सफ़र हमारा प्रोग्राम यहाँ शुरू होता है रेडियो मनोरंजन RM3 पर। कैसे हमारे सभी दोस्त आपका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। और आपको तो पता ही है कि हमारा ये प्रोग्राम लाइव होता है रेडियो मनोरंजन की टिकटॉक पेज पर, तो अगर आप चाहें तो हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर हमें देख सकते हैं, हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई गाना सुनना है तो हमसे मांग सकते हैं, हम कोशिश करेंगे चलाने की। वरना बाकी तो हम अपने गीतों के साथ ही आए हैं, काफ़ी लंबी लिस्ट है हमारी। सो आप लोग भी आइए, हमारे साथ जुड़े रहिए। और अभी सर्दी का मौसम है, ज़रा जब बैठे हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए तो भूलिएगा नहीं कि आप चाहिए कि आप अपनी तबीयत का भी थोड़ा ख्याल रखें। तो चलिए, खूबसूरत गीतों के सफ़र में हम सफ़र बनने के लिए अगर आप तैयार हैं तो हम भी एकदम सेट है। और यहाँ पर जो अगला गाना होगा हमारा अनिल राजन कुजन के नाम हम डेडिकेट करेंगे यलेश शाम जो कि हमारे साथ हैं। कैसे हो एजे, आ गए हैं अंजू के साथ, तो उनके लिए भी गाना हम डेडिकेट करते हैं। बबीता नमस्कारम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। रेशमा राम की सुन, तरुण राम आपका भी वेलकम करते हैं, और शैलेंद्र आपका भी स्वागत है।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: 12:16 हुए हैं और आप विदिता का साथ दे रहे हैं। प्रोग्राम चल रहा है आपके लिए सुहाना सफ़र, और सुहाना सफ़र में हमारा टिकटॉक लाइव है। अगर आप चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम फिया, माधुरी, बबीता, विकिंग, त्रिशा, हरकू जो फ्लैक में भी काम कर रही है उनके लिए गाना डेडिकेट कर रहे हैं। वी हैव रोशनी, मुनसन। मुनसन कहती है आज कंबल लेके आए हो? हाँ भाई, सर्दी बड़ी है ना आजकल। आप लोगों को भी चाहिए कि आप अपने साथ अपने गले को कम से कम, ये जो हमारा चेस्ट जो पार्ट होता है ना, इसको आप हमेशा वार्म रखें, वरना यही से सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ठीक है। और गर्म हो सके तो गर्म पानी पिया कीजिए, ठंडे पानी को थोड़ा अवॉइड कीजिए। और जिन लोगों को वजन की प्रॉब्लम है वो भी अगर गर्म पानी पीते हैं तो काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। हाँ, सूर्या, विमला, प्रेमिला, अनिल, आपने गाने की फरमाइश की है। एंड चलो जी, यहाँ पर अनिल जी हमारे साथ हैं और उन्होंने भी गाने की फरमाइश की है। वी ऑल्सो हैव एक और फरमाइश, वो गाना मेरे लिस्ट में है। ऐसा कभी कभी हो जाता है कि आप जो गाने मुझसे मांगते हैं वो ऑलरेडी मेरे लिस्ट में है, सो इसमें चलाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस थोड़ी देर में वो गाना मैं डेडिकेट करती हूँ आपके लिए। तरुण और कहते हैं कि कॉटेज में इतना ठंड नहीं है। हाँ, कॉटेज में, थ्रियोले में इतनी ठंड नहीं होती, लेकिन यहाँ स्टूडियो में हम कांप उठते हैं। लीना नमस्कार, स्वागत है। अतुल महिंदर जी, हेलो जी, कैसे हो आप? शिवम हमारे साथ हैं। जी नहीं शिवम, आपने जो सवाल पूछा हमसे, गलत सवाल पूछ लिया जी, बिल्कुल नहीं। और यहाँ पर कविता दोलीप जी हमारे साथ है, थैंक यू सो मच। हमें यहाँ पर पाकर आपको अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा हमें भी। विमी, आपका स्वागत है। एंड यहाँ पर, यहाँ अनीशा हमारे साथ हैं और साथ में ये गाना जो है हम डेडिकेट करना चाहेंगे मनोज जी आपके लिए। निगाहें मिलाने का बड़ा मन कर रहा है आपको? चलो जी, देखते हैं अगर हम निगाहें मिला पाएँ तो। एक्चुअली गाना है निगाहें मिलाने को दिल चाहता है, तो उसके लिए आपको मॉरिशस आना पड़ेगा, हम सबसे आपको मिलना पड़ेगा। मिस्टर नूरुद्दीन कैसे हैं आप? बोंजू, आपका स्वागत है। स्वराज, हाय, गुड आफ्टरनून, नमस्कार जी, कैसे हो? हम बिल्कुल ठीक हैं। आज का दिन आपके लिए भी बहुत प्यारा, बहुत खुशनसीब हैं हम कि हमारे इतने सारे दोस्त दुनिया के कोने कोने से निकल कर हमारे इस प्रोग्राम में आए हैं। तो यहाँ पर हम इंदिरा जी का भी स्वागत करते हुए नेक्स्ट गाना डेडिकेट करते हैं आपके लिए।

0: हमसे न सही गैरों से सही तुझे दिल का लगाना तो आ गया। चलिए भाई, जितने भी लोग अपने दिल को थामे बैठे इस गाने को एंजॉय कर रहे थे, मैं आपको बताऊं ये है प्रोग्राम सुहाना सफर।
1: सुहाना सफर
0: और सुहाना सफर को इस सफर में सुहाना बनाने के लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उसमें चाहिए हमारे लिसनर्स का बहुत बहुत बहुत बहुत सारा प्यार, बस आपका साथ, आपका प्यार और क्या, ये सफ़र तैसे ऐसे ही सुहाना बन जाता है। तो चलिए, हमारे साथ सज्जद भी हैं, हमारे साथ अफजल गुदर जी भी हैं। वो भी कहते हैं कल कहाँ थी, अरे कल नहीं, हम मंगलवार को थोड़ी ना आते हैं, मंगलवार को हमारा मंगल चलता है तो हम बस बैठे रहते हैं दूसरा काम भी होता है ना, शूटिंग वगैरह होती है। तो चलिए, यहाँ पर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको कहेंगे बहुत बहुत प्यार, थैंक यू। परी हमारे साथ है और अपनी शेरनी से मिलने कहती है मैं तो आ गई। हाँ बिल्कुल आ गई इंदिरा जी, आपके दोस्त शाम के लिए गाना होगा। जगदीश कहते हैं हाय विदिता नमस्ते, आई लव योर प्रोग्राम। और बहुत सारे हार्ट्स भेजे हैं, थैंक यू। मैं आपको एक छोटा सा हार्ट भेजती हूँ जिसमें बहुत सारा प्यार है, ठीक है जगदीश जी, थैंक यू सो मच। चलिए जी, इसी के साथ यहाँ पर हमारे गाने को एंजॉय कर रहे हैं जर्मनी से, और ये हैं मिस्टर अतुल महिंदर, कहते हैं कि वी आर वाचिंग यू फ्रॉम जर्मनी, योर सॉन्ग सिलेक्शन हमेशा की तरह वाव होता है। ये वाव नहीं, ये आपका

0: प्यार होता है आप इतने प्यार से सुनते हो तो मुझे भी कहीं ना कहीं एनकरेजमेंट मिलती है कि नहीं भाई ये गाना चला दो उनको अच्छा लगेगा, ये गाना चूज करते उनको अच्छा लगेगा। हाँ बस कई कुछ ऐसे गाने होते हैं जिनकी फरमाइश आती है जिसे सुनने के बाद थोड़ा सा दिल सांस लेना थोड़ा बंद हो जाता है लेकिन फिर भी हमारी पार्टी जारी होती है। तो चलो यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट गाना जो होगा आपके नाम डेडिकेट करेंगे। ये है कौन, आंटी फ्रॉम फोजी सा, थैंक यू आंटी जी, बहुत बहुत प्यार आपको। माया रामदोस जी नमस्कार, और यहाँ पर हमारे गीतों को एंजॉय कर रहे हैं एथर वॉचिंग फ्रॉम फीजी, हाय फीजी वालों कहाँ हो। एंड शेरनी के लिए यहाँ पर शेर खान आया है, मिस्टर तरुण कहते हैं मैं शेर खान हूँ। हाँ बेटा शेर खान हूँ, अभी आएगा बगीरा आएगा थोड़ी देर में आपसे मिलने। एंड चलिए जी स्मिता आप हमें सुन रही हैं, अच्छा कैट्रोबोन से शर्मिला हमें सुन रही हैं, राम राम मनीता जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अजय लक्ष्मण जी नमस्ते, इन्होंने भी शेर ने नाम डाल दिया हमारा, चलो ठीक है। अभी के लिए हम नेक्स्ट गाना डेडिकेट करेंगे आप के लिए, सूर्या कहते हैं कि किरा थैंक यू सो मच, और साथ में जो गाना होगा ये लिया है हमने, फिल्म है तीसरी मंजिल।
1: दीवाना

0: सुहाना सफर
1: दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे। जी हाँ, और हमारे ऐसे श्रोता कहाँ मिलेंगे हमें प्यार करने वाले। और

0: सज्जद अफजल गुदर जी तो हमारे साथ ही हैं, लावोचे से भी हमें किसी ने याद किया है, नाम नहीं लिखा, और राजीव, सुरेखा, ललिता, नीलिमा कहती है बेटे मानव के लिए गाना डेडिकेट कर दीजिएगा, और यहाँ पर सज्जद आपने गाने की फरमाइश की है वो ज़रूर चलाएंगे। रीना जी नमस्ते एंड थैंक यू अनिल जी, आपने बहुत सारा प्यार भेजा है। और शिवम कहते हैं अरे भाई भागो, शेरनी जंगल से छूट गई है। ऐसे नहीं, ये प्यारी सी शेरनी है जो लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाती, प्यार बांटती है, ठीक है। रीना जी कहते हैं नेक्स्ट गाना फॉर बेटी रूही एंड हस्बैंड अविनाश। वहीं पे हमारे साथ जुड़ गए हैं साहिल जी। राजीव जी मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। और नजीमा गोवर्धन नमस्कार, कैसे हैं जी। और साथ में यहाँ पर गाना जो होगा हम आपके लिए कहते हैं हाई ग्रीटिंग्स फ्रॉम एम्स्टरडम, और रियली दैट्स कूल बॉय, थैंक यू। यहाँ पर ज्योति गुली है हमारे साथ, हैप्पी वेनसडे आपको भी। फिया जी कहती हैं कि हमारे लिए गाना चला दो, हिमेश रेशमिया हमारे साथ हैं, अब तो करना पड़े तेरा तेरा तेरा सुरूर। मैं कोशिश करूँगी। और शमीम जमन उनको कहते हैं कि मुझे बड़ी हंसी आ रही है, हंसा करो, मैं यहीं पे हूँ हंसाने के लिए। और साथ में कहते हैं कि आपने ये गाना लगा दिया, मेरी बड़ी बहन का फेवरेट गाना है। चलो संजू, राधे राधे, कैसे हो संजू। और साथ में स्मिता कहती है कि खुश रहो, थैंक यू, आप साथ में हैं तो हम खुशी हैं। और साथ में यहाँ पर अगर हमारे दोस्तों के साथ हमारे आशीर्वाद और प्यार मिले तो क्यों नहीं। फिया जी हमने आपका गाना नोट कर लिया, आप एक ही मैसेज बार बार भेज रहे हो, मुझे मिल गया फिया जी आपका मैसेज मिल गया, थैंक यू थैंक यू। करीना जी नमस्ते, कैसे हैं आप। और यहाँ पर प्रवीणा दुर्गा हमारे साथ हैं, ज्योति प्रणाम एंड एस एस थैंक यू। रेशमा जी बहुत सारा प्यार आपके लिए, ठीक है। और किसके लिए गाना होगा, चलिए आप सभी लिसनर्स के लिए जिनको ये गाना पसंद है।
1: RM Free Radio.

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर,
1: ला ला ला ला ला ला ला ला।
0: अरे भाई लला लला रोरी दूध की कटोरी, चलो उसको कोने में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। 12:36 विदित आपके साथ और यहाँ पर हम वेलकम करेंगे हमारे सुहाना सफर प्रोग्राम में इटली से हमारे भाई साहब, जी हाँ कर्नेल सिंह जी का हम वेलकम करते हैं। सत श्री अकाल, कैसे हो भाई? और साथ में है सिमी। हाय सिमी, कैसे हो सिमी? सब हमारे साथ हैं, नहीं सब तो हमारे साथ हैं, जिन्होंने अपना नाम लिखा है उन्होंने सब लिखा है SAB, तो मैंने कहा सब हमारे साथ हैं, मुझे तो पता है सब हमारे साथ हैं, पूरा नाम लिख देता हूँ, अच्छा लगता है। चलो जी, कल्याणी जी हमारे साथ हैं, हरी फैमिली के लिए गाना होगा। नितेश मंगर का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। और किसका बर्थडे बोलो, एक ही बार में गाना गा लेती हूँ, आवाज़ ख़राब है ना, मार पड़ेगी तो एक ही बार पड़ेगी, वरना बार बार गाऊँगी बार बार मार पड़ेगी। यहाँ पर शोभा बिजादिर जी हमारे साथ हैं, आप कहती हैं कि लगता है विदिता ने बहुत अच्छी तरह से पेट पूजा कर लिया होगा इसीलिए सबका मूड बना रही है। सबका मूड बनाना बहुत बहुत ज़रूरी होता है, पता है। वैसे हिमेश रेशमिया कहते हैं ग्रीटिंग्स फ्रॉम मुंबई, ये हमारे नकली वाले हिमेश हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम इनको असली वाला प्यार भेज रहे हैं। हेलो सनशाइन, हाँ कहते हैं कि क्या हुआ यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा है, कंबल तो क्या, अब तो हम रजाई भी लेकर आएंगे। चलो जी स्मिता जी, थैंक यू। कुनकुन फैमिली के लिए नेक्स्ट गाना होगा और कहते हैं संजू का गाना चलाओ ना, कोशिश करेंगे। जीवासन पिरोमल, हेलो सीताराम धोनी, आपके हबी सूरज और साथ में बेटा यश और हंस के लिए राम धोनी हीरू समारू बधाई फैमिली के लिए गाना। हेलो यश, कैसे हो? कहती हैं चीता माता को मेरा प्रणाम। बेटा तू चीता बोल रहा है या मेरी क्या कर रहा है? चलो ठीक है। हाय नीलम, हाउ आर यू? जीतन दुलवा जी स्वागत आपका, किरण कतोना और ओके तो यहाँ पर सूर्या कहते हैं खुश रहो, मैं भी कहती हूँ खुश रहो, ऐसे मस्त रहो, गाने सुनते रहो और गुनगुनाते चलो।
2: You're listening RM Free Radio Radio Radio।
0: हेलो शालिनी, कैसी हो? कभी शालिनी काम करिए तो शालिनी के लिए गाना होगा। और हाय हैना, हमारा काम है सबको खुश करना, डेफिनेटली हैना, और मैं कोशिश करती हूँ कि जो मैं काम समझ कर करती हूँ उसमें इतना प्यार हो कि आपको वो प्यार लगे मेरा काम न लगे।

चलो जी, इसी के साथ इतवारी तीरू हमारे साथ हैं यहां पर, कहते हैं लिसनिंग टू यू फ्रॉम दुबई. हेलो मॉरिशस पीपल, कैसे हो? हम बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू सो मच. क्या बात है, क्या बात है बबीता जी, हम बड़े खुश हो गए. लक्ष्मी जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम में.

0: छोटी सी कहानी से बारिशों के पानी से दैट वाज अ ब्यूटीफुल वन फरमाइश आई थी थोड़ी देर पहले एंड वी कैन खुश हो गए होंगे चलिए हमारे साथ भी बहुत सारे लोग हैं एंड हमारे साथ हैं एलजी क्या बात है रेशमा यश रेशमा एंड बेटा हर्ष जो तायाक से हैं नीन जीत पटेल श्वेता इम्तियाज मोहम्मद रिशान दीप्ति सुल्ताना कांदाय सनफ्लावर सारा इंदिरा मतव सिंह सब साथ में जुड़े हैं हमारे गीतों को एंजॉय कर रहे हैं
1: RM3 Radio. Radio.
0: और ये गाना हम माई इवेंट पे लिए जगह के लिए डेडिकेट करते हैं कहते हैं हेलो फ्रॉम ईरान हेलो जी कैसे हो आप थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड निश्जेश हमारे साथ हैं गुड मॉर्निंग कहाँ है तो यहाँ मॉरिशस के तो नहीं होंगे एंड चंद्रावती रमेश और आपका भी हम स्वागत करते हैं हमारे प्रोग्राम में वीनू का आज बर्थडे है नीन ने बोला है प्लीज उनको विश कर दो ना चलो जी हैप्पी बर्थडे नी कौन वीनू वीनू हैप्पी बर्थडे छोटी देवीना हाय कैसे हो आप वेलकम है आपका प्रोग्राम में एंड उमा जी स्वागत है
2: चेहरे पे गिरी जुल्फे कह दो तो हटा दूं मैं गुस्ताखी माँ

सुहाना सफर कहते हैं कि किसी का दिल जितना इतना भी आसान नहीं होता, लेकिन जहाँ प्यार सच्चा होता है ना, वहाँ पे प्यार छलक ही जाता है। अब सोचो अगर आपने थोड़ा सा प्यार किसी को दिखाया, तो वो कहते हैं ना कि आप किसी को थोड़ा सा प्यार दो, बदले में वो इंसान आपकी पूरी ज़िंदगी प्यार से भर देता है, पूरी लाइफ आपको कभी प्यार की कमी महसूस नहीं करने देता है। हमारे लिसनर्स भी कुछ ऐसे ही हैं, इनका जो प्यार है ना एक समुंदर जैसा है, उसमें से अगर आपने एक चम्मच भी निकाल लिया ना तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें अगर आपने एक बाल्टी भी निकाल ली ना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो इतना सारा प्यार है। सो सभी मेरे जितने भी लिसनर्स हैं वो इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं, रेडियो मनोरंजन के टिकटॉक लाइव पे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच। एंड किरण कतोना जी, आपका भी हम स्वागत करते हैं प्रोग्राम में। एंड वी हैव धर्म जो इस समय में सुन रहे हैं, निशा भवानी नमस्कार, संजय बुधु थैंक यू सो मच, सरोज आपका वेलकम है। एंड कहते हैं निमोड़ा गाना चलाओ, निमोड़ा गाना चला दूंगी तो यहाँ पर थोड़ी सी खटास बढ़ जाएगी ना। रेखा जी आई हैं प्रोग्राम में, कहती हैं कि एक गाना स्वराज के लिए चला देंगे आप, स्वराज के लिए गाना चलाना है, ठीक है चला देंगे स्वराज जी के लिए, आपके पति हैं ना तो चलाते हैं उनके लिए गाना, लेकिन थैंक यू सो मच साथ दे रही आप। यहाँ पर चंदनी सिंह सिपौर साथ हमारे साथ हैं, थैंक यू। एंड मनोज जी आपने प्यार भेजा, मनीषा अरेना, वी हैव एंटी 1 2 3 राखी, ओके इनका भी वेलकम करते हैं प्रोग्राम में हमारे। और काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझे बहुत बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं, उनके बहुत सारे हार्ट्स आ रहे हैं। लीना जी थैंक यू सो मच, बिंता हमारे साथ हैं, किस कोई तो ये भी पूछता है कि अगर आप चाहो तो हम आपको अपना ओरिजिनल हार्ट भी दे सकते हैं। अरे नहीं भाई, एक छोटा सा हार्ट देना और कुछ नहीं। चलो इसी के साथ नेक्स्ट गाना जो होगा डेडिकेट करते हैं आप सभी लिसनर्स के नाम, उम्मीद करती हूँ गाना पसंद आएगा, वैसे फरमाइश आपने की थी।

0: कामचोर फिल्म के इस गाने की फरमाइश आई थी। और चलिए इसी के साथ अभी आप गाना सुन रहे थे किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में।
1: सुहाना सफर।
0: चलिए तो यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा गाना आ रहा है श्रिया के नाम डेडिकेट करेंगे। साथ में है प्रतिमा, अजय, स्नेहा, जयेश और दाऊताल फैमिली। रेखा जी की तरफ से उनके बेटे अंश के लिए, बीना, नंद, वी हैव प्रेम, नक्चेदी, रूही, उनके पति अविनाश, और गाना होगा रूही। और साथ में पति अविनाश के लिए ये है रीना की तरफ से। एंड साउल साहब का हम स्वागत करते हैं। मरियम ने गाने की फरमाइश की है। मनीषा साथ में है, राजीव जवाहिर, और इंडोनेशिया से भी हमारे पास अब मैसेजेस आने लगे हैं। क्या बात है, हम तो दुनिया के कोने कोने में पहुंच रहे हैं। एंड ऑल थैंक्स टू आवर रेडियो मनोरंजन टिकटॉक, जिसके चलते हम कहीं भी चले जाते हैं। तो आप लोगों के प्यार के लिए थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

सिंह लक्ष्मण हेलो कैसे हो और यहाँ पर नमस्ते आपका वेलकम है गाना होगा फॉर दादा एंड डैडी समारोह ऑफ ये है बेबू फ्रॉम फ्रांस हेलो एंड वी हैव होले ओले हाँ होले तो मैसेज आया ऐसे ही आया मोहम्मद रिबाई कैसे हो आप गाना जाएगा आपके लिए और इसी के साथ थोड़ी देर में बढ़ेंगे समाचारों की ओर तो आप लोग भी तैयार हो जाइए हमारा जो सुहाना सफ़र प्रोग्राम है इसको जारी रखेंगे एक बजे के समाचारों के बाद

0: मंत्री सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे अशिता नमस्कार
1: नमस्कार नीलमणि श्रोताओं को भी नमस्कार संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है मॉरिशस का राष्ट्रीय बजट वर्ष 2026-2027 के लिए आगामी 19 जून को राष्ट्रीय सभा में प्रस्तुत किया जाएगा इस बात की पुष्टि प्रधानमंत्री कार्यालय के एक आधिकारिक सूत्र ने एमबीसी को दी है बजट प्रस्तुति के दौरान सरकार आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपनी आर्थिक नीतियों विकास योजनाओं और राजकोषीय प्राथमिकताओं का ब्यौरा पेश करेगी और सभी जानकारियां मिलेंगी कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल कल शाम लगभग 8 बजे राष्ट्रीय सभा में संशोधन के साथ पारित कर दिया गया बहस के समापन पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री डॉ. रवि राम गुलाम ने देश की चुनावी प्रणाली की समीक्षा और उसमें सुधार की आवश्यकता पर बल दिया उन्होंने कहा कि एक आधुनिक मॉरिशस के सुचारू संचालन और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए संवैधानिक तथा चुनावी ढांचे का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है वर्षों से जारी तटीय कटाव यानी इरोजन के कारण थोबिश समुद्र तट के कई हिस्सों की चौड़ाई में काफी कमी आई है यहां पर्यावरण मंत्रालय लगभग 1.1 किलोमीटर लंबे तटीय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर संरक्षण कार्य शुरू करने की तैयारी कर रहा है वहीं होटल ग्रुप बीचकॉम्बर ने इस सप्ताह थोबिश होटल के सामने समुद्र तट पुनर्वास परियोजना का शुभारंभ किया है फ्रांस से आए विशेषज्ञों द्वारा किए जा रहे इन कार्यों का उद्देश्य रेत के बहाव और विस्थापन की गति को धीमा करना है साथ ही तटीय क्षेत्र में प्राकृतिक अवसादी यानी सेडिमेंट आदान प्रदान की प्रक्रिया को भी सुरक्षित बनाए रखना है अधिकारियों के अनुसार ये पहल समुद्र तट को दीर्घकालिक रूप से संरक्षित करने और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रुख करते हैं हम भारत दिल्ली की ओर भारत की राजधानी नई दिल्ली के मालवीय नगर क्षेत्र में आज सुबह एक इमारत में भीषण आग लगने से कम 21 लोगों की मौत हो गई जबकि कई अन्य घायल हो गए पुलिस के अनुसार इमारत के भूतल यानी ग्राउंड फ्लोर पर एक रेस्टोरेंट और ऊपरी मंजिलों पर एक होटल संचालित किया जा रहा था दक्षिणी दिल्ली का ये घनी आबादी वाला इलाका छात्रों और युवा पेशेवरों के लिए काफ़ी लोकप्रिय माना जाता है 8 दमकल वाहनों की मदद से आग पर काबू पाया गया दिल्ली पुलिस ने बताया कि बचाव अभियान के दौरान 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकालकर आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है आग लगने के कारणों का तत्काल पता नहीं चल सका है और मामले की जांच जारी है घटनास्थल से सामने आई तस्वीरों से दमकल कर्मी आग बुझाने का प्रयास करते दिखाई दिए जबकि इमारत से घना धुआं निकल रहा था अंदर फंसे कुछ लोग खिड़कियों से लटक कर मदद की गुहार लगाते हुए दिखे स्थानीय निवासियों ने ये भी कहा कि राहत और बचाव कार्य में सहयोग उन्होंने भी दिया उन्होंने इमारत में फंसे लोगों को बाहर निकालने और घायलों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में मदद की गौरतलब है कि नई दिल्ली में इलाज के लिए आने वाले कई विदेशी मरीज अक्सर आसपास के होटलों या आवासीय परिसरों में ठहरते हैं इस बीच भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला साथ रहे बढ़ते हम शोक समाचारों की ओर

0: Chouk San Cha Sounye, Morel Road, Rivière-du-Rond-Pomé, Morel Road, Rivière-du-Rond-Pomé, Banbe Salaki, 92 years old ki, Bibi Amina Durman, पैदाश नाम कुदाबकस और जिन्हें मीना के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा आज रात 8:30 बजे इनके बेटे रफीक दरमन के घर रिविया जोंपो से उठाकर दफनाने के लिए पॉइंट लास्कोर का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुनाइट एट 8:30 PM सलाबी लेन क्लेफो नंबर एक फिनिक्स में 73 साल के 73 ईयर्स ओल्ड के श्री सदासिवन पीले कनकसाबा जिन्हें सदा के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 4 बजे उनके घर क्लेफो नंबर एक फिनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4 PM शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. RM3 Radio.

कितना खूबसूरत गाना है कर्ज फिल्म का गाना और ऋषि कपूर को कौन भुला सकता है उनका स्टाइल ही अलग था और उनमें था वो बड़ा बड़े चार्मिंग थे वो और डांस क्या बात करें हम डांस की चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं शांता सुकालिंगम के लिए गाना होगा ग्रीटिंग्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका दिन के 1:13 हुए हैं 13 क्या होगा कालिया सुरेंद्र कुमार केशनी साथ में है तानिया प्रिया नैना बबीता बंधु जीवमान प्रकाश केतिका अनिता अफ्रीका फ्लाक से मोहिनी कुरविंदर कौर कुमार मंडल फ्रॉम मलेशिया गहाफ सरेना संगीता सुखारी विपिन सिवरत रजिया खान दादी बन गई कमाल की बात है चलिए नेक्स्ट गाना आपके लिए छोटा सा बेबी बॉय आया है और आपकी ज़िंदगी को खुशियों में बदल चुका है ईशानी रेखा इंदिरा राम दुनिया सब हमारे साथ हैं चलिए उनके लिए गाना होगा और ये गाना खास हमारे उन दोस्तों के लिए जो हमें परदेश में सुन रहे हैं

0: वाह क्या गाना है आपके लिए लेकर आए हैं खुद्दार फिल्म से किशोर कुमार के साथ आवाज मिला रही थी लता मंगेशकर। चलिए यहाँ पर विमता रामफल के लिए गाना और साथ में मोहिनी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और बहुत बहुत बहुत सारा प्यार यहाँ तरुण भेज रहे हैं हमारे लिए और साहिल भी थैंक यू सो मच कहते दो बजे तक तो बस हम आपके साथ हैं और जब तक आपके साथ हैं हम खुश हैं। गाना प्रतिमा चेष्टा रीना आदेश और हांसले के नाम डेडिकेट करते हैं। कवि किशन जी हमारे साथ हेलो। आरती रघु सिबुरत हेलो जी कैसी हो। रेखा जी बड़ी प्यारी सी स्माइल भेज रहे हैं मैं थैंक यू सो मच। और मनीता जी वक्त पे वक्त गिन रही हैं कि कितना टाइम रह गया प्रोग्राम ख़त्म होने में। पहले जितना है हमारे पास टाइम उसको तो इन्जॉय कर लो। माधुरी जी अगला गाना खास आपके नाम डेडिकेट करूँगी मैं।
1: You're listening to RM3 Radio.

0: सुहाना सफर।
1: बहुत बहुत बहुत प्यारा गाना था, बहुत सारा प्यार था इस गाने में, बहुत सारा अपनापन था इस गाने में। और ये प्यार, ये अपनापन तो तभी आता है ना जब कोई आपके साथ अपनापन दिखाता है, जताता है, प्यार देता है। यहाँ पर आपको पता है, मैं हमेशा कहती हूँ, मैं फिर कह रही हूँ कि हमारा ये जो रेडियो मनोरंजन है, ये ना सिर्फ एक रेडियो और लिसनर्स के बीच और एक आरजे के बीच का प्यार रह गया है या साथ रह गया है, ये एक ऐसी फैमिली बन गई है जहाँ पर हर कोई आता है, अपनी फीलिंग्स शेयर करता है। बहुत सारे ऐसे अपने बन गए हैं यहाँ रेडियो मनोरंजन में, जैसे कि जिनका तो रोज़ जैसे उनकी सांसें अटकी हुई होती है कि मैं अगर ना आऊँ या प्रोग्राम ना चले ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे मनीता जी, मैंने बोला ना, हमेशा टाइम चेक करती रहती हैं, और एजे जो हैं जब भी आते हैं बस अपनी इस प्यारी सी बहन का साथ देने चले आते हैं। परी हैं हमारे साथ, वी ऑल्सो हैव साहिल हमारे उन लिसनर्स में से हैं जो हर किसी को अपना बना के यहाँ पर, अगर किसी ने बस इतना बोल दिया कि वो बीमार हैं तो बस पीछे पड़ जाते हैं कि कैसे थे, कैसे हो, कहाँ हो, तो हर कोई अपनापन यहाँ पर जताना चाहता है। सो थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे इस प्रोग्राम में हमारी फैमिली बनकर आए हो, और एक ऐसी फैमिली बनकर आए हो जहाँ पर हमें लगता है कि ये हमारा एक दूसरा घर बन गया है। सो रेडियो मनोरंजन, इट्स नॉट ओनली अबाउट अ टीम, इट्स नॉट अबाउट ओनली लिसनर्स एंड म्यूज़िक और आरजे, इट्स ऑल अबाउट अ फैमिली। तो यहाँ पर हम आपको थैंक यू कहना चाहेंगे, और हमारे जो लिसनर्स हैं जो हमें परदेश से सुनते हैं, दुनिया के कोने कोने से सुनते हैं, थैंक यू। विकेंद्र कुमार, सुनीता, दीदा, प्रवेश, सुभाष, अवैदेही, लैला मदारन, मिस्टर सिंह, दादी सीता, श्वेता देवांश, कविता बरुंदयाल, साथ में चिंतामणि कुमार, अंजनी कर्पन हमारे साथ है, और साथ में यहाँ पर दीप्ति गुंदावरी जी हैं, वो भी हमेशा आते हैं। माधुरी हमारे साथ हैं, वो भी अब रोज़ उनकी आदत बन गई है, बस उनको हमारे साथ ही जुड़ना है। सुरेखा जी हमारे साथ, एंड मनीषा और विनय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसा करते हैं, अब अगला गाना जो होगा, कविता दुलीप जी, आप भी तो हमारे उन फैमिली के मेंबर्स में से हो, तो आपका भी हम स्वागत करते हैं। और इटली से, जैसे मैंने कहा, बहुत सारे लोग हैं। कर्नेल सिंह जी कहते हैं, मैं देख रहा हूँ, मुझे पता है भाई साहब आप देख रहे हो, चलो आपके लिए प्यार है।
2: You're listening RM Free Radio. Radio. Radio.
1: Thank you so much, Saroj.

0: पर यहाँ पे कोई परेशान नहीं है, हम किसी को परेशान न करते हैं, ना होने देते हैं।
1: RL Free Radio, Radio, Radio.
0: चलिए गाना हम रेणुका और साथ में अंजू पुरंग के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे और साथ ही साथ टर्शा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। चलिए जी, हमारी बातें तो होती रहेंगी, आप गाना एंजॉय करें। शमा, कैसे हो आप? अच्छा लगा जानकर कि आप हमारे साथ हमारे गीतों को एंजॉय कर रहे हैं। कुसकुस आपका भी और सतीश गणेश लिसनिंग टू रेडियो मनोरंजन, थैंक यू सो मच। अरीना और उनके दोस्त के नाम ये गाना।

0: भाई इतना मेघा मेघा हो रहा है, लगता है कि अभी बादल बरसने वाले हैं।
1: सुहाना सफर
0: प्रोग्राम है सुहाना सफर, विदिता का साथ दे रहे हैं आप लोग। चलिए यहाँ पर हम हेलो कहेंगे उमेश चतुर जी को। अभिषेक ने काफ़ी टाइम के बाद हमें ज्वाइन किया आज टिकटॉक पे, थैंक यू सो मच। हमारे साथ हैं हंसराज जो हमारे गाने एंजॉय कर रहे हैं, मिमी, जैनी, बबीता नेमन, माधवी हीरा, ऋषि अभी कहते हैं आज नाइट ड्यूटी है तो आपको कहेंगे बोंको आज, रूबा गंगा देवी और साथ में है गिरीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर, आश, रूपलाल एंड और भी बाकी दोस्त हैं जैसे वी हैव सीना। हाय सीना, नमस्ते, कैसे हो आप? गाने अच्छे लग रहे हैं ना, चलो एंजॉय करो गाने और इतना खुश हो के एंजॉय करो, सारी टेंशन को दूर भुला जो। यहाँ पर बबीता जी हमारे साथ हैं एंड चलिए इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम में जो अगला गाना हम लेकर आए हैं आपके लिए, आप भी सोच रहे होंगे कि अगला गाना कौन सा होने वाला है। भाई मेरी पसंद का ही गाना है, सुन लो तो जानो। यहाँ पर हमारे साथ रुमेशा भी जुड़ गए हैं एंड नेक्स्ट गाना फॉर माय भाई कुणाल गणेश जो इस समय फ्रांस में काम कर रहे हैं नेट्स की तरफ से। और सीना कहती है कि भाई गाने तो बड़े कमाल के हैं आज। एक्चुअली हमारे गाने रोज कमाल के ही होते हैं, आप देर से आती हैं, आपने सुना नहीं बाकी ये गाने। हमारे लिए बस इतना जरूरी है कि लाइफ में टेंशन ना रहे। और बस तरुण कहते हैं कि मैं वकेशन पे हूँ, बस गाने सुन रहा हूँ एंड आई गिव माई हार्ट टू सुहाना सफर।

0: सुहाना सफर। सफ़र सुहाना तभी होता है ना जब हम सफ़र साथ में हो। तो यहाँ पर हमारे हम सफ़र जो हैं दुनिया के कोने कोने से हमारे साथ जुड़े रहते हैं। और अभी के लिए गुरु हैं फ्रांस में, उनकी वाइफ वीना गंगादोस, और पूरी फैमिली के लिए गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे। हमारे साथ हैं दिनेश गोपी, जिन्होंने काफ़ी देर से हमारे प्रोग्राम को अभी फॉलो करना शुरू किया, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए तो सही। एंड वी हैव फिजी आइलैंड से कितने सारे दोस्त, कितने सारे लोग हैं जो हमारे इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं, एंड एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद अभी मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो शायद यहाँ पर कमेंट नहीं करते लेकिन प्रोग्राम सुनते ज़रूर हैं। सुबह फिजी आइलैंड से काफ़ी सारे दोस्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, थैंक यू। अनिल जी हमारे साथ हैं, और साहिल को ये इजाज़त देना कि भाई रेडियो चला दो, हम भी सुनेंगे और काम करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, थैंक यू सो मच। तो अनिल जी, नेक्स्ट गाना स्पेशली आपके नाम हम डेडिकेट करेंगे, और साथ में अभी हमारे वैसे तनिष रामनाथ जी हैं, हेलो कैसे हो आप। क्वेट से खान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, काफ़ी देर लगा दी, आप कहाँ थे इतने टाइम। अभी तो मेरा प्रोग्राम वैसे भी 12 मिनट में समाप्त होने जा रहा है, तो मैं कोशिश करूँगी, चलिए जो नेक्स्ट दो गाने होने वाले हैं आप इन्जॉय करें। एंड साथ में यहाँ पर हमारे मिसेस किरण सिंह हैं काथोसियो से, बहुत प्यारी जगह है ये काथोसियो, और मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पर माया जी जो है ना, पता है क्या करती है, जब भी वो कुछ भी खाती है ना, मुझसे पूछती है वाटरमेलन खाएगी, अच्छा खीर खाएगी, अच्छा मानियो खाऊंगी। मैंने कहा ये बार बार फ़ोन पे क्यों पूछते, क्योंकि कहती है जब भी मैं अपना फ़ोन लगा के कुछ खाने बैठती हूँ आप मेरे सामने होती तो सोचा पूछ लेती हूँ, नेक्स्ट टाइम ना पैक करके भेज देना, फिर साथ में मिलकर खाएंगे और इंजॉय करेंगे। बहुत सारा प्यार आपने हमें याद किया। उदा फरीस हमारे साथ हैं, सलाम भेजा है इंडोनेशिया से, और साथ में यहाँ बहुत सारा प्यार भेजा है हमारे सभी लिसनर्स ने।
1: RM3 रेडियो।
0: जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे, लेकिन जहां भी होंगे आपका प्यार हमेशा हमारे दिल में रहेगा। नेक्स्ट गाना नाज के लिए, जो इस समय हमारे साथ हैं, शनिल बिखिया, उनका आज बर्थडे है, सो हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू।

और बस और क्या, यहाँ पर हमारे साथ जितने भी दोस्त जुड़े रहे आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बहुत बहुत थैंक यू। चलिए जाने का टाइम हो गया यश, थैंक यू सो मच। अब क्या चीता माता के साथ झगवर माता बना दिया। तरुण थैंक यू, विना पेंथिया जी आपको भी थैंक यू, माधुरी परी एजे एंड साहिल सबको, मनीता जी एक बार फिर आपको भी, वी हैव रवीना फ्रांसो थैंक यू। एंड चलिए जी अभी माधुरी जी अब आपसे कल मुलाकात करेंगे हम ऐसे ही प्यार के साथ, भूलिएगा नहीं आ जाएंगे हम 12 बजे, तो कल मिलने का वादा करके जा रही हूँ। यश लिवरपूल इंग्लैंड से साथ दे रहे हैं, फिर मिलेंगे, बहुत सारा प्यार, लव यू ऑल, टेक केयर एंड हाय वकी।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है आशिता, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परिश्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। मेलगोज उच्च सुरक्षा कारागार में बंदी ओंजी सेल्मो की मृत्यु की परिस्थितियों की जांच के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट मंगलवार को प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम को सौंप दी गई। पूर्व न्यायाधीश पुल लाम शांगलिन द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट में मामले से जुड़े तथ्यों का विस्तृत विवरण, जांच के निष्कर्ष और कई महत्वपूर्ण सिफारिशें शामिल हैं। रिपोर्ट में विशेष रूप से जेल सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने तथा कारागार प्रशासन और प्रबंधन में सुधार से संबंधित सुझाव दिए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार रिपोर्ट में प्रस्तुत सिफारिशों का उद्देश्य भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना और देश की कारागार प्रणाली को अधिक प्रभावी तथा सुरक्षित बनाना है। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की एक व्यापक जांच में विधवाओं, बुजुर्गों और बीमारी और शोक से प्रभावित परिवारों को कथित रूप से निशाना बनाए जाने का एक मामला सामने आया है। वाक्वा सुल्फिगनो नंबर 3 क्षेत्र के 64 वर्षीय निवासी हेमराज मनोहर पर आरोप है कि उन्होंने दर्जनों कथित पीड़ितों की भावनात्मक कमजोरियों का फायदा उठाकर उनसे बड़ी रकम हासिल की। आज बुधवार को उन्हें औपचारिक चेतावनी के तहत पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उनके लंबित ओवरटाइम का भुगतान इस महीने के अंत तक कर दिया जाएगा। इसके साथ ही दमकल विभाग के कर्मचारियों के लिए संडे अलाउंस तथा पब्लिक हॉलीडे अलाउंस की पेमेंट भी शुरू हो चुकी है। अधिकारियों के अनुसार इन सभी पेमेंट्स की प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2026 की समाप्ति से पहले पूरी कर ली जाएगी। इन निर्णयों पर सरकारी कर्मचारियों के एक प्रमुख संगठन गवर्नमेंट सर्विसेज एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने आयोजित एक प्रेस वार्ता में प्रतिक्रिया व्यक्त की और उनका स्वागत किया। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमरीकी सेना ने कहा कि उसने रात भर ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा के तहत हमले किए और जहाज़ों तथा खाड़ी देशों की ओर दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में स्थित कश्म द्वीप पर किए गए ये हमले मध्य पूर्व में ईरान की ओर से कथित हमलों की कोशिशों के जवाब में किए गए। ईरान ने कहा कि उसने जवाबी कार्रवाई में एक क्षेत्रीय देश में मौजूद अमरीकी ठिकानों और हेलीकॉप्टरों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। सेटकॉम का दावा है कि तेहरान ने क्वेट की ओर 2 और बहरीन की ओर 3 मिसाइलें दागी, जिन्हें या तो बीच रास्ते में रोक लिया गया या वे स्वयं ही निष्क्रिय हो गई। इस बीच क्वेत की सेना ने कहा कि ईरानी ड्रोन ने उसके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को निशाना बनाया, जिससे इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा और कई लोग घायल हुए हैं। आज बुधवार सुबह हवाई यातायात स्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। वहां के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल साउद अब्दुल अजीज अल उतैबी ने इस हमले को ईरानी आक्रामकता का आपराधिक कृत्य बताया और कहा कि घायलों को आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की गई है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। साथ रहे सुन पाएंगे एक शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। रॉयल रोड कौचिमलितिया में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड के श्री जगदत सिंह संदुगाम जिन्हें जग के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे और जो पहले बायोन कॉलेज और बॉम्बू एसएसएस में एजुकेटर थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 11:30 बजे उनके घर कौचिमलितिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए विल में शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन

0: शुरू हुआ था ऑफ 11 AM शोक में डूबी इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: NBC Radio.
2: धरोहर के सरोवर साप्ताहिक प्रोग्राम महात्मा गांधी संस्थान के सहयोग से तो आवा भोजपुरी सीखा धरोहर के सरोवर संगे।
3: नमस्ते, धरोहर के सरोवर कार्यक्रम में आप सब लोग के स्वागत बा। हम अरविंद और ई कार्यक्रम की तैयारी में हमने के सहयोगी संजू टुकु भी हमी के साथ देवत हुआ और साथ में जय गणेश दाऊ सिंह जी के भी सुनवाई कार्यक्रम में। तो धरोहर के सरोवर कार्यक्रम जुन महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट के भोजपुरी लोक संस्कृति विभाग और NBC रेडियो के मिला जुला सहयोग से तैयार करल गल बा। जेकर में हमनी भोजपुरी लोक संस्कृति पर चर्चा करी लजा, साथ साथ में भोजपुरी गीत, भोजपुरी किस्सा, भोजपुरी सीखे के मौका है ये ऐसा एगो मंच। तो कार्यक्रम के आगे बढ़ावा जा, सबसे पहले एगो गीत सुनी जा।

0: RM3 Radio.
1: है गीतवाजन सुनला कचोड़ी गली, एक ऐतिहासिक रूप से कचोड़ी गली।

0: उन कैला बलमु ई 200 बरिस के पुराना भोजपुरी लोकगीत है। 200 बरिस, अब सोचे 200 बरिस जब बोला था इतना भोजपुरी भाषा भोजपुरी संस्कृति कितना प्राचीन बा। ऐसा नए काल परसों के जन्म लघु भाषा वो हमें की प्राचीन परंपरा में एकदम समागर हल। तो ई एगो कजरी और दादरा परंपरा के है जेकर में प्यार खास तौर पर जुदाई जिक्रा बोल जा फोर्स्ड सेपरेशन और उस समय के प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाई के एंटी कोलोनियल रेजिस्टेंस। तो ई गीत एकरा इतना वायरल होगल इतना लोकप्रिय होगल कि हाल ही में कोक स्टूडियो भारत जिक्र में रेखा भरद्वाज उत्पल पंडित ख्वाब ई गीत के बहुत ही निमन से गेलन जा। तो ई जो आइकोनिक लाइन बा कचोरी गली सुन कैला बलमू एकर अर्थ है कि हमर बलम ई कचोरी गली के छोड़ के ओकरा धलखाली छोड़ के चल गल हुए सब कुछ सुना सुना लगत बा। तो कचोरी गली एगो बहुत ही मशहूर एगो गली है जहां पर खाना कचोरी को खाना है वो खाना मिलेला और ई वाराणसी में ही बनारस में और मिर्जापुर में। तो एक में धलागो एगो एगो दृश्य बनेला एगो ऐसा बाजार जहां पर ढेर कोई बा और एकदम सुनसान हो गल बाद में जहां पर ही कहे कि ओकर बलमुआ चल गल बा। तई गीत 1820 पहल का जो एंग्लो बर्मीज वॉर हल 1824 से लेके 1826 ले तो उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाके जो मरद लोग रहन जा लोग के लेके वाराणसी से मिर्जापुर जगह से वो लोग के दहाज में डाल के वो लोग के विदा कर रहे जा रंगून आज यांगोन रंगून आज म्यांमार में हो करा बोलन जा यांगोन। तो एक में डिस्प्लेसमेंट यानी जैसे जुदाई के ऊपर ऊपर ऊपर दर्द बा सैया चले गए रंगून हम तो ई एक तरह से ई गीत में ई सब हाल बा। तो ये वो एगो रोमांटिक ट्रैक है बिरहा बिरहा बिरहा बिरहा सुन लो बा बिरहा गीत कोनो दिन संजू के बोला वो बिरहा गीत खोजे के बिरहा गीत में हुए है कि वो याद करे लन जा वो गली जो छोड़ के आल हुआ जा हम एगो हमें के एगो भाई रलन बाबूलाल मशहूर कलाकार कुनल बाबूलाल के भाई उनका हमने पोपेट बोला था जा उनकर उनकर से हम पहला ला सुनने नहीं गीत टागोर नागोर गीत बोला था उनकर में सुन लो बा टागोर नागोर बाजे लतबर निकाल गेला टागोर नागोर बाजे लतबर निकाल गेला अहिर बेटा नचे लतबर निकाल गेला। ये टागोर नागोर एक परिकर से पहले को बिरहा है पहले में सुमेरी ला धरती माता के भैया धरती माता के तो भैया के याद चलावेला। तो ये गीत के बारे में रहा चला एगो दूसर गीत सुनी जा
1: RM3 Radio.

0: ते सब गीत जो सुनाओ थी जा अलग अलग गीत बा अभी ये जो गीत सुन ला ये 200 साल पुराना गीत अब हमने पिछले काफी गई नहीं जा हमने के रिश्ता योगी संजू ता जाइबे करे लंच सगरो इंटरव्यू करे वीडियो करे अभी हाल ही में वो फिल्म बनाई ले वन का नाम दलन फताक नहीं हाँ झारू ओकर में झारू की कहानी मन बनाई ई अभी बचात नहीं उनकर सेम के बोलत होन ई जोन फिल्म बनाई ले वन भोजपुरी में झारू पर ई उनकर यूनिवर्सिटी के वो काम है ओकर एगो प्रोजेक्ट रहल त देखत हो भोजपुरी कहां कहां पहुंच गेल बा यूनिवर्सिटी ले पहुंच गेल बा त हमनी के काहे ओजा पर पहुंचल बा काहे कि एकरा एगो धरोहर के रूप में बचा के रखले वन जा हमनी के पुरनिया लोग और वो अभी ले मॉरिशस के कोना कोना में पुरनिया लोग जिन बा हमनी के दादी लोग हमनी के चाची लोग ये लोग लैका लोग के सब गीत सिखावत हो जा त संजू बुलंद पे चिराफरी में काफी लोग बात जुन जाने लन जा बहुत कुछ हर परौली पर झूमर पर फिर और कौन गीत बाय कर रहे हर परौली झूमर बिरहा त ये सब कुछ ही है कहाँ गावे लन जा आवाज सुनी ले जा
1: RM3 Radio
2: हमने गीत गाविला सगरे से जाला सा गीत गावा आयु में सगरे जाला सा घरे भी गीत गाला सा एगो रिहर्सल करीला सा कबो आवेलन सा बहिन लोग सबको संगे बैठ के गायला सा आर हमने के एगो लेकोल भी बाते लेकोल में ऐसा सिखाई सीखे वो जाला सा लेकोल वा हमने के पेचे थापे में परल बाते तो हम सब कोई जाला सा सीखे आर हमने के पुरानी आदमी जोन बा वो लोग से सीख रहे थोड़ा आर हबी जोन हमिक जाने ला समी के अपन जवान लड़का लोग सिखावत है सा जोन हमी के अब जवान जवान लोग भवन जा तो उन लोग के हमने के अब सिखावत है जा आर हमने को जोन जाने ला सा होगे उन लोग के सिखाए ला जा
3: तो उहर फरवरी के गीत हम दादी लोग से सीखले हैं तो वह हबी ले हम सीखले हैं आर गीत गवाई वो पूर्वज लोग से सीखले हैं अब हबी तो एक दिन गवा लाना सुख के पहले 8 दिन गीत गवात रहल आई समय आज तिलक चढ़ल 8 दिन गवा गीत तब शादी हुई 8 दिन के बाद अभी तक के दिन गवाला तो उ सब सीखले हैं तो अभी हमरा कामे आवता अभी तो बहन लोग लगे कोई लगे शादी रहेला तो गड़िये से एक बरिस आगे हमरा के जना देवेलन से कि अये हमर लगे शादी बा गीत गावे तोहर टोली के लेके तो हमनी अपन जितना जना है जा अपन बहन लोग सब कोई मिल के जाए ला जगावे की हा कि देवी के तो अच्छा अच्छा पान फूल भावेला देवी के अच्छा अच्छा फल भावेला हरी हरी नीम भावेला ता लेकिन जब पानी नहीं बरसी तो हरी हरी नीम मिली कहाँ से आके पानी नहीं बरसी ता फल होई कहाँ से तो हवे से हमने बोला था ऐसा देवी के ता भावेला हाँ लेकिन बनिया बरसी तब ना फल फूल होई ता चढ़ाईबा ता अभी बात बात ता अब लगली सा बोले कि पनिया के परल भाई अकाल हो ए पनिया के परल भाई अकाल गोसाई इंदर देव के छतियो ना फाटेला हर फरवरी गोसाइया ता अब इंदर देवता के जब

गईली सा गीत उत मनैली सा तब तक काली बदरिया घिरते आवे लगल पानी लगल भर से तब पानी लगल भर से तब हम के सुखल रोपल खेत जो रहल हरियागल धान सब हरियागल अब त राम के ओकर पगड़ी भिंज गल सीता के लंबे केस भिंज गल और मोटका पानी बरसल तब हरी हरी धन जब हरियागल तब हवे धान के खीर पकैली सा तब हवे धान इंदर देवता जेवेलन देवी माई जेवेलन तब हवे बोलीला तुलसी दास बलुआ सा चरण के गंगा मैया के चरण चिता लाई तब अब गंगा माई हमने कितना पानी देलन तब के जाके गंगा माई में अब उनकर पूजा करीला जाहू जा।

0: वाकई गीत में गहराई बा और जैसे चाची सांता से खेले हवन कि गीत में कौन सी बुलल जाला गाय के तब और आसानी हो गल बा। गायकी के असन प्रतिभा तो खाली सिखला से मिलेला। हाँ ई चाची दादी लोग जालन जा गीत सीखे।
1: हमने के लिए कोल में जोन बात हमने सात गो अथी सा गुरु माता है सौदा पर सात गो आर गो गीता पुनीत हवन ओ हमने के सहज हवन आर हमने के लिए कोल में सैक पचास गो अथी बाती विद्यार्थी लोग हवन जा गीत गवाई सीखला सा संध्या के गीत देवता देवी के गीत महादेव के गीत शादी के गीत रामायण भी होला हो जा आर जोन भी पर्व आवे लाते जैसे महोत्सव दिवस बाते बिहार दिवस बा सब में पार ले ला सब बिहार ही में हो 6 तारीख के पार ले ली सौदा जाके नचली सा

0: देवी देवता से लेकर विषय के गीत सब हमने के भोजपुरी संस्कृति में बा।
1: बड़ी दुखदाई पूर्वज की कहानियां, बड़ी दुखदाई पूर्वज की कहानियां,

लपनिया बड़ी दुखदाई पूर्वज की कहनिया अंग्रेज ठक्के बोले चल कुली मोरिसुआ रसुआ उलट बे मिली तो के सुनुआ अंग्रेज ठक्के बोले चल कुली मोरिसुआ रसुआ उलट बे मिली तो के सुनुआ हमनी के पूर्वज गरीब दुखिया हमनी के पूर्वज गरीब दुखिया

एक हाथ गठड़ी एक हाथ रामायण, उतरे ये प्रवासी के घटुआ बड़ी दुखदाई, पूर्वज की कहानियां बड़ी दुखदाई, पूर्वज की कहानियां। हुआ से बसलन फुलियार ढकुआ, सोचे मन में अब दिन सुख से बितयन। हुआ से बसलन फुलियार ढकुआ, सोचे मन में अब दिन सुख से बितयन। ना पेट

ना पेट भर खाना ना तन भर कपड़ा, फिर भी अपन दिन वहाँ बितैलन। बड़ी दुखदाई पूर्वज की कहानियाँ, सुनवा के बदले कोड़ा के मरवा, फिर भी मोरिसुआ के स्वर्ग बनैलन। सुनवा के बदले कोड़ा के मरवा, फिर भी मोरिसुआ के स्वर्ग बनैलन।

0: कहानियां
1: आरएम श्री रेडियो रेडियो रेडियो
2: ते सब दादी लोग के सब मौसी लोग के बहुत धन्यवाद दुआ जा ये लोग अपन जो निधि बा जो धरोहर बा बचा के रख लो जा और हमनी के सरोवर के माध्यम से नई पीढ़ी तक पहुंचावत हो जा तो इसने आप भी जनता सब जान रहे तो हम इसे संपर्क करिए महात्मा गांधी संस्थान में एमबीसी में भी सकब जात लोग के सब रिकॉर्ड करके रेडियो पर चलाए जो चीज आप जाने लग खासतौर पर भोजपुरी लोक संस्कृति भोजपुरी लोक परंपरा के लेके तो अब समय चला देखते हैं के सहयोगी जय बता हम कब आओ भैया बुलाए ला जाओ आज हमने के दुगो गीत के बारे में बोलियन और वो गीत भी सुनबा
3: धरोहर के सरोवर साप्ताहिक प्रोग्राम महात्मा गांधी संस्थान के सहयोग से तो आओ भोजपुरी सीखा धरोहर के सरोवर संगे
4: आज एगो सोहर गीत लेके आल है आंगन में कुआं खुआए के खंडाए के पियर माटी ई सोहर गीत जोन सचिता गुप्ता और मंगला सलोनी द्वारा गावल गेल बा भोजपुरी लोक संस्कृति के एगो अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है सोहर मूल रूप से जीवन महोत्सव के गीत होला जेकरा के नवजात शिशु के जन्म पर खासकर पुत्र जन्म पर नारी शक्ति द्वारा गावल जाला ई गीत भारत के बिहार पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके मॉरिशस तक भोजपुरी समाज के सांस्कृतिक निरंतरता में प्रमाण है आंगन में कुआं खंडाई के कुआं के पियर माटी बहुत प्रतीकात्मक बा आंगन में कुआं खुदावल जीवन समृद्धि और वंश वृद्धि के प्रतीक मानल गेल बा पियर माटी शुभता पवित्रता और मंगल के संकेत देवेला भोजपुरी सांस्कृतिक में पियर रंग हल्दी के रंग विवाह जन्म और धार्मिक संस्कार से जुड़ल जाला इस गीत में पारिवारिक संरचना के सुंदर चित्रण मिलेला नवजात के जन्म के समाचार दादा बाबा चाचा आदि पुरुष सदस्यगण तक पहुंचावल जाला ऐसने पता चलेला कि सांस्कृतिक पारंपरिक भोजपुरी समाज संयुक्त परिवार पर आधारित रहल बा जहां नवजात के आगमन पूरा कुल के उत्सव मनावल जाला गीत में सोने के हंसवा से नार काटे के वर्णन विशेष ध्यान खींचेला हंसवा खेती किसानी और ग्रामीण जीवन के प्रतीक है जबकि सोना समृद्धि और शुभ अवसर के दाय के अंजूरी मुटियन से भर देवे के उल्लेख लोक अतिशयोक्ति फोल्क हाइपरबोल के सुंदर उदाहरण है इसने परिवार के अत्यधिक खुशी और कृतज्ञता झलकेला सोहर गीत अधिकतर नारी शक्ति के मौखिक परंपरा से जीवित रहल बा ई गीतवन से नारी शक्ति के भावनात्मक संसार सामाजिक भूमिका और सांस्कृतिक ज्ञान संरक्षित बा दाई दादी चाची माई सभी के भूमिका इस गीत में अप्रत्यक्ष रूप से

0: दिखावल गेल। ऐसने भोजपुरी लोकगीत नारी शक्ति केंद्रित सांस्कृतिक दस्तावेज भी कहल जाला। मौशिस में गिरमित्या पुरखन भारत से भोजपुरी भाषा और लोक संस्कृति के परंपरा साथे लेके ऐलन जा। आजो सोहर गीत मौशिस के भोजपुरी पहचान सांस्कृतिक स्मृति और भारतीय मूल के विरासत के जीवित रखेला। ये गीत केवल मनोरंजन ना है बल्कि सांस्कृतिक शिक्षा के माध्यम भी है। आज के आधुनिक समाज में अस्पताल परिवार और पाश्चात्य प्रभाव के कारण सोहर गावे की परंपरा धीरे धीरे कम हो जाबा, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम रेडियो लोक संस्कृति मंच और शोध कार्य द्वारा ई परंपरा के पुनर्जीवित करे के प्रयास होल बाटे। सचिता गुप्ता और मंगला सलोनी जैसन कलाकार लोग ई विरासत के संरक्षित करे के महत्वपूर्ण योगदान देवत हवन जा। हालांकि ई गीत मुख्यतः पुत्र जन्म की खुशी पर आधारित बाटे, आज के समाज में बेटी और बेटा दोनों के सम्मान महत्वपूर्ण मानल जाला। एक कारण आधुनिक व्याख्या में ई गीत के नव जीवन के उत्सव के रूप में देखल जा सकेला और ई न केवल पुत्र जन्म तक सीमित है। ई सोहर गीत भोजपुरी लोक जीवन पारिवारिक मूल्य स्त्री परंपरा और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत उदाहरण है। भारत और मॉरिशस दोनों जगह ई गीत सांस्कृतिक पहचान के मजबूत आधार बनल बा। आधुनिकता के बावजूद इस तरह के लोकगीत समाज के जुड़ और जोड़ेरा तथा नई पीढ़ी के अपन इतिहास भाषा और संस्कृति से परिचित करावेला। अप्रवासी घाट के सोहर नामक सीडी से उद्धृत ये गीत प्रस्तुत बाटे। तो लोग के ध्यान खातिर बहुत ही धन्यवाद। नमस्ते।
1: RM3 रेडियो।

0: RM3 Radio. Radio.
1: चला कार्यक्रम के आगे बढ़ाईला जा तो लोग के जो लोग अभी अभी जुड़ल हो जा अपन चाली के अपन गातो पिमाले के और कुछ खाल जलाई ई बेरा संजू जी पे फिर तारल तारल रोटी पर संजू वो चापी लन तो हो कैसे बन सा हो दूध नहीं डाले लन कर चामे हाँ तेवे पी लन देखा था इतना पता आगल मन देर दिन से चला एवो एवो कहानी सुनब जाए वो लोक कथा भोजपुरी लोक कथा के दोस्त आदर्श सितोहल ई कहानी सुनयन आदर्श सितोहल जो जन्मे करेला भोजपुरी नाटक न केवल भोजपुरी बल्कि हर भाषा के नाटक के वो दिग्गज होन भोजपुरी नाटक प्रतियोगिता हिंदी नाटक प्रतियोगिता क्रियोल नाटक प्रतियोगिता सब में उनकर टोली लोग भाग लेवल जा और हजले की अभी हाल ही में मंत्रालय दिन से कला एवं संस्कृति मंत्रालय दिन से उनके चुनल गए रहल जाके भारत में हो जा परी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हो जा NSD में जाके अपन नाटक प्रस्तुत करे के जो बहुत बड़ा बात बा तो सब जो नाटक के लोग बनावे लन जा हम खासतौर पर भोजपुरी नाटक दिखले हैं ऊंच स्तर के और उनकर पिताजी स्वर्गीय पिताजी जरा आदर सम्मान कर ले जा याद कर ले जा नाटक के वो संकलन भी निकल ले रहलन तावा उनकर सुपुत्र ई एगो कहानी एगो लोक कथा लेके आल हुअन जिकर में वो चर्चा करियन कौन शीर्षक है संजू बुद्धिमान खरगोश सुनी जा
2: बुद्धिमान खरगोश एगो जंगल में एगो सिंह रहल वो हमेशा जंगल के जानवर के मार के खा जात रहल खरगोश हिरन जिराफ सब बेचारा जानवर लोग जान तान बचाते भागत रलन सर सिंह के डर से सब कोई बहुत परेशान रलन एक दिन सब जानवर लोग जंगल के राजा सिंह के बुला के अपन ने ये बात तय कर लन सर कि राजा सिंह के खाए खातिर बारी बारी एगो जानवर भेजल जाए सिंह ई सुन के बोलक ठीक बा रोज हमर गुफा में एक एक करके अय्यसा जे देरी होई तो सब के खा जाब कोई के ना छोड़ब एक दिन खरगोश के बारी आल वो सोचे लगल कैसे सकब हम बचे जे कुछ ने करब तो सिंह हमरे ही खा जाए कोनो उपाय सोच खरगोश सोच खरगोश के दिमाग में एगो उपाय आल सिंह आग बबूला होके उकर इंतजार करत रहल वो बोलक कहाँ रले इतना देरी कब से भूखाल है खरगोश बोलक राजा हम तो आवत रहनी का करी राजा एगो दूसर सिंह जंगल में चल के आल बा वो बोला था कि वो जंगल के राजा है सिंह बोलक अच्छा हमर जंगल में दूसर राजा चल ओकर खबर ले ला सर खरगोश सिंह के एगो कुआं लगे ले यार देख राजा है जा बा तोहर नियर बा देख देख अपन परछाई देख के राजा सोचलक कि दूसर सिंह कुआं में बा खीस में ऊ न आओ देखलक न ताओ झट से कुआं में कूद गल सिंह कुआं में डूब गल खरगोश हंसते कूदते खुशी खुशी खबर अपन सब संगतिया के सुनाईलक जब जंगल में खबर फैल गल खरगोश के जय जय होल खरगोश अपन बुद्धि से काम करलक

0: ने बच गल और अपन सब संगतिया के बचा ले लग। यही खातिर बोला जाला, बुद्धि से काम कर ब तो सब काम निमन होई, सब परेशानी दूर होई।
1: RM3 रेडियो।
2: कार्यक्रम के अंत में अभी चर्चा करते हैं जाकि हमने खाली मॉरिशस के भोजपुरी

दूसर देश में भी, जैसे ट्रिनिदाद में भी भोजपुरी भतिया लंजा। अभी आजकल सोशल मीडिया में संजू जानी एगो कैरेबियन हिंदुस्तानी नाम के एगो फेसबुक में एगो आवेला ओकर एगो पोस्ट आवेला, तो अभी गल एक महीना से वो लोग भोजपुरी पर, भोजपुरी संस्कृति पर काफी पोस्ट डालत बन जाए। कहे कि अभी हाल ही में हो जा परी पहल का अप्रवासी लोग के आयल के वर्षगांठ मनावल गल, तो जिसे हमके ई एगो मिलल ट्रिनिदाद भोजपुरी स्पीच, यानी कैसे बात करे लन जा। तो अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग ढांचा बा, जिसे हो जा परी पश्चिमी बिहार और छोटा नागपुर, फिर उत्तर प्रदेश ई धला पूर्व उत्तर प्रदेश पश्चिमी बिहार के ऊपर जो बॉर्डर है ईस्टर्न यूपी भी, और वेस्टर्न बिहार के जो बॉर्डर ईस्टर्न यूपी, तो ई सब एक अलग अलग भोजपुरी बोले लन जा हो जा। अब जैसे एगो एगो एगो बानी या फिर बारे सिस्टम बोले ला जा, ई पश्चिम बिहार और छोटा नागपुर में ऐसे बोला, जैसे बोलबा आई एम, तो लोग बोले जा हम बानी। यू आर, तो लोग बोली तुबारे। ही शी इज, वो लोग बोली ऊ बारे। तो एक बहुत कमती ऐसा सुने की मिलेला, एक से जस्ती सुने की मिलेला हाई सिस्टम इधला पूर्वी उत्तर प्रदेश में। वो बोलिए वो लोग बन जा हम हई, हम जो बोले जाना मॉरिशस में हम हई, तू हई, ऊ हई, ईतन कुन जस्ती कोई बोला। फिर आवेला बाती, बाते सिस्टम, बाती, हम बाती, आई एम, तू बाती, यू आर, ऊ बाती, ही इज, शी इज। अब इसने वेस्टर्न बिहार के जो कोना हो का बॉर्डर है और ईस्टर्न यूपी में आवेला हम बा, आई एम के बोले जा हम बा, तू बा, यू आर, ऊ बा, ही इज, शी इज। इधर ट्रिनिदाद में लोग कैसे बोले लन जा, हम ट्रिनिदेडियन है बा, हम ट्रिनिदेडियन है, आई एम ट्रिनिदेडियन। वो लोग बोली तू टोबगोनियन बाते, तू टोबगोनियन बाते, यानी आर यू टोबगोनियन, ऊ गयानीज है, ही इज गयानीज, ऊ लोग जमैकन बारी, दे आर जमैकन। तो है ये हमनी मॉरिशस में बोला जा, संजू कैसे बोल बा, धला बोले हम, धला आई एम, कैसे बोल बे हम है, हम है, अब बोल बे ही इज, उ बाती, वो लोग हवन सा। तो देख भाई को एगो एगो एगो खिचड़ी नियन सब भोजपुरी के तनी तनी तनी तनी हमी के भोजपुरी में चला गा। तो इतना कुछ आज के भोजपुरी, आशा करते जा बहुत कुछ सीखला, हमियों के भी सीखे के मिलल, और संजू के भी धन्यवाद दो अब जा हमके कार्यक्रम में सहयोगी दिलन, सहयोगी रहलन, जय गणेश दाऊ सिंह के भी, फिर मिल जाएगा नवा कार्यक्रम लेके, तब ले नमस्ते।

Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.

0: नमस्कार श्रोताओं, ये रेडियो मॉरिशस का प्रसारण है। बुधवार का दिन है, 3 जून आज की तारीख, और आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। मैं हूँ रत्ना, आप पहुँची हूँ आज की चर्चा कार्यक्रम को लेकर। वैसे आपको ये भी बताते चले, इसका सीधा प्रसारण इस वक्त रेडियो मॉरिशस की लहरों पर यानी मीडियम वेव 819 किलोहर्ट्ज पर आप सुन पा रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी याद दिला दे कि MBC के तीसरे चैनल पर इसका सीधा प्रसारण आप देख पा रहे हैं। साथ ही साथ रेडियो मॉरिशस के फेसबुक पेज पर भी इस कार्यक्रम को आप फॉलो कर पाएंगे, और इसी कार्यक्रम का पुनः रीब्रॉडकास्ट किया जाएगा दोपहर के 3 बजे से 4 बजे के बीच रेडियो मनोरंजन पर। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आपको ये भी बताते चले, 14 जून को मनाया जाएगा वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे, और इसी के उपलक्ष में इस सप्ताह और अगले सप्ताह हम इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे। आज के हमारे जो अतिथि हैं, हमारे मेहमान हैं श्रीमान भावेश रावू जी, जो वाइस प्रेसिडेंट ब्लड डोनर्स एसोसिएशन, और साथ ही साथ उन्होंने 20 वर्ष तक लगातार ब्लड बैंक में भी कार्य किया है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में उनका स्वागत करते हैं। श्रीमान रावू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्ते रत्ना जी और सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्ते
0: जी। तो आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे रक्तदान पर, और रक्तदान का जो इतिहास है, पहले तो हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि हिस्टोरिक तौर पर ये क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाने लगा है ये।
1: देखिए, सबसे पहली बात ये बात कि हमने के चाहिए जाने के जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन बतियाला जा, तब कब से ये सब डिस्कवरी को मौसे हुल बा। आलो 1628 में पहला आला एगो इंग्लैंड के गो फिजिशियन जेकर नाम रहल डॉक्टर विलियम हॉवे, वो एगो एक्सपेरिमेंट करलक, जब देखलक कि द फ्लो ऑफ ब्लड इन वेन कैसे होला। तब उगर थोड़े दिन बाद में एगो एक्सपेरिमेंट कर लन जा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे से क्यों हुई, मगर वो समय में थोड़ा डिफिकल्टी रहल क्योंकि और ही डिस्कवरी नहीं हो रहा। फिर जाके 1665 में एगो दूसर इंग्लैंड के और एगो फिजिशियन जेकर नाम रहल रिचर्ड लोअर, वो पहला हला से ये कर लन डॉग टू डॉग ट्रांसफ्यूजन, यानी कि एगो जानवर के लेके वो कुत्ता जैसे बोले चुचू जैसे बोले जा ओकर, और दो तीन गौरी चुचू के लेके लोग के ट्रांसफ्यूजन कर लग
0: एगोरेशियस रहल।
1: हाँ, मेसन वो सक्सेसफुल होल, मगर बाद में ओवरी कॉम्प्लिकेशन के साथ वो भी नहीं चलल। फिर 1667 में जिसे चेमसेक की बात बताते हैं, सा एगो ला फ्रांस के डॉक्टर हल जॉन बाचिस डेनी, ओ से ये कर लन एगो ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम लैम्ब मुटों और ह्यूमन बॉडी में खून ट्रांसफ्यूज करके, और ये जाके अनसक्सेसफुल रहल, बस की कंपैटिबिलिटी नहीं रहल। फिर ऐसे चलते कल कितना एक्सपेरिमेंट होल, तब जाके 1900 में एगो ऑस्ट्रियन फिजिशियन जेकर नाम रलन डॉक्टर कॉल लैंडस्टाइनर, वो जाके डिस्कवरी करलक ब्लड ग्रुप के। सबसे पहला रहल ग्रुप आ, ग्रुप बी, ग्रुप सी, और बाद में जाके है ये ग्रुप सी हो गल ग्रुप ओ, है ढेर कोई नहीं जाने ला साझा, ग्रुप आ, ग्रुप बी, ग्रुप सी, फिर ग्रुप से एलिमिनेट करके ग्रुप ओ दलन जाओ करना। और ऐसे ही 1902 में तब जाके ओकर और जो साथी लोग रहल डॉक्टर कॉल लैंडस्टाइनर के ओकर साथी लोग, वो लोग देखो वैकलन जा ग्रुप आ बी। फिर हमने के आज जो बतिया इलाजा वर्ल्ड वाइड से 4 गो ब्लड ग्रुप है, ग्रुप आ, ग्रुप बी, ग्रुप ओ और ग्रुप आ बी। फिर चलते चलते इसे और रेजिस फैक्टर यानी कि खून वहाँ से कि निगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे, तब आल ग्रुप ए पॉजिटिव, उस ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ऐसे ऐसे करके सब
0: सब में दो

0: गो मतलब हो गए
1: दू गो हो गए तो ऐसे करते करते अब 1950 में हई डिस्कवरी खातिर डॉक्टर कार्ल आइंस्टाइन के नोबेल प्राइज ऑफ मेडिसिन मिलल 1950 में ओकरे जन्मदिन के अवसर पर ले 14 जून के ओकर जन्मदिन रहल डॉक्टर कार्ल आइंस्टाइन के वही दिन वही खातिन
0: वही दिन घोषित करल गल
1: घोषित करल गल वर्ल्ड ब्लड डोनर डे।
0: अच्छा तो जैसे तू बतावत हवा इतना इतिहास हो गल तो आज के समय में जैसे रक्तदान काहे करल जाला।
1: देखा जितना कंट्री है वर्ल्ड वाइड जितना डेवलपिंग कंट्री बा डेवलप कंट्री बा सबके एगो ब्लड बैंक है तो चाहे एगो लाबोंक में कैसे बोले सर जहाँ पैसा रखे जाए ला जाए तो हमने के लाबोंक में खून के एगो स्टॉक चाहे ला और हमने के मॉरिशस के एगो मिनिमम ऑफ 600 to 800 हमेशा चाहे ला अवेलेबल
0: एगो स्टोरेज रखे
1: एगो स्टोरेज रहे ला काहे के कोनो कबो कबो कोनो एक्सीडेंट हो जाए सिपा कोनो प्रॉब्लम हो गल तो तुझो एगो स्टॉक रहे ला
0: इमरजेंसी
1: तो काहे चाहे खून दे के ये एगो क्वेश्चन बहुत फासिल बाकीपूर्ण करके हमने के जितना इंसान जितना हमने मोरिशन है सब या विदेशी जे लोग बा या मोर देन 6 मंथ्स रह गल बा वो लोग सेक्शन जा अपन खून दे क्योंकि हमने के हमेशा चाहला हमने के स्टॉक अवेलेबल रखे के ताकि हमने से कब सर जैनिक हमने की माँ बहन भाई दोस्त लोग बा हॉस्पिटल में वो लोग आतंक करन जाए खून तो वो लोग के हमेशा अवेलेबिलिटी रही खून के जमे के वो लोग के काम रही
0: था। एगो खून जब तू निकाल बा तक कितना दिन तू पे प्रिजर्व करके रखे सब पर
1: वो देखा नॉर्मलमा 35 डिग्री ब्लड बैंक में रखा ला जब कलेक्टेड होला डे ऑफ कलेक्शन से लेके 35 डेज तक रखी ला जा खून हमने ब्लड बैंक में ऑफ्टरवर्ड जो नई सेवी हुई जहाँ बिया रॉ होला
0: जो
1: लोग महिला लोग सकी हर 4 महीना के बाद यानी कि 1 साल में सकी 3 हलापन मिनिमम और जो पुरुष लोग हैं वो लोग सकी हर 3 महीना के बाद अपन खून दे और ये वो लोग सकी मैम सैकुद का पहुँचो कुछ सकियन दे जब कभी कभी इमरजेंसी रही कैसे जब रहा कोविड नहीं आता थी तो उतना दिन थोड़ा मुआ बोलते थी जे थोड़ा सा आगे हुए सकियन आके दे दे तो सब सब पे ही के अपन अपन प्रोटोकॉल है तो मॉरिशस के प्रोटोकॉल है पुरुष लोग में और महिला लोग
0: 4 महीना में और के लोगन मतलब कौन कौन व्यक्ति खून देवे सकेला
1: वो देखा खून दे के वो क्रिटेरिया है रिस्पेक्ट करे के तो जे एक जना का खोजिए को ब्लड डोनर बने के तब से हला हाई सब क्रिटेरिया जोन बोला वो लोग एलिजिबल रहन जा तब से क्या जा खून दे वो प्रीमियर क्रिटेरिया है लार्ज यानी कि 18 बरिस से 65 साल एक व्यक्ति जो अच्छा रही हेल्दी रही तो उसे के मन खून दे मगर अभी हमने के एगो ये स्मॉल पॉपुलेशन बा और देखते हैं जाके हमने के नौजवान लोग थोड़ा अभी उतना इन्फॉर्म नहीं हो जा तो वो खातिन बोलते हैं सर अभी जेतों से अभी एगो प्रोग्राम डले जा 17 बरिस से कुमासे कर दे के खून दे और चाहला एगो पेरेंटल कंसेंट तो ई ब्लड डोनर्स एसोसिएशन जोन बा अभी एगो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ मिलकर एगो प्रोग्राम चलावा थे मंजा कई साल से यंग ब्लड ओकर नाम है और प्लेज 15 क्लब यानी कि सब लिकुल में कॉलेज उज में जे लोग के 17 बरिस हो गल बा लोग के एगो प्लेज ले बन जा अपन लावी में कि एटलीस्ट 15 टाइम्स अपन ब्लड दियन जा तो ये काहे सब प्रोग्राम करते जा क्योंकि हमने के जितना डोनर्स लोग रहल था वो लोग के तलाज मौत हो जाता है लोग के वो लाज आए जहाँ नहीं कहन सर और वो लोग नेक्स्ट सेक्शन से खून दे वो खातिर हमने के चला नौजवान लोग को मोटिवेट करके वो लोग के ब्लड डोनर बनाए
0: और जब हम ब्लड समूह की बात करीला ब्लड ग्रुप के बात करीला तो कौन कौन जैसे अभी तो हमने के समझेलन कि कौन कौन प्रकार के रहेला तो हमें जितना प्रतिशत परसेंटेज ऑफ ग्रुप

0: कैसे रहेला
1: देखा हमने के जितने चार गो ग्रुप हा ग्रुप आ ग्रुप बी ग्रुप ओ और ये ग्रुप आ बी ग्रुप आ हा 26% population mauricienne, 27% groupe B, 40% groupe O, 4% 7% pardon, 7% groupe AB. Magar résiste facteur de comme dit, kitna positive blood hub, kitna négative résiste. 96% पॉजिटिव ब्लड है और 4% है नेगेटिव
0: यानी नेगेटिव सबसे कम दी रहेला मतलब बहुत रेयर है
1: हां रेयर है मगर जो एक चीज इंपॉर्टेंट बताने के जब कोई मरीज रहेला जेकर ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो जो अनाउंस करी ला जा या मीडिया पर या फेसबुक पर कि जे कोई सके आके खून दे वॉलंटियरली तो बहुत ऐसा ही सका बोले कि ढेर को आवेला मगर स्टिल हमने के चेहरा कॉन्शियस रहे कि जैसा स्थिति आई था हमने के चला वॉलंटियरी रहे क्या अपन
0: तब भावेश जी जैसे हम बहुत दिन से सब कोई बहुत सुना था और हम तो हर बरिस ब्लड डोनेशन पर एगो कार्यक्रम रहेला ब्लड डोनर्स एसोसिएशन द्वारा तो हाई भी लोगन के जनाई दे के चाहिला कि ब्लड डोनर्स एसोसिएशन द्वारा जब ऐसा कार्यक्रम चलता तो हाई में जैसे बोलल जाला कि यूनिवर्सल डोनर केकरा बोलल जाला और यूनिवर्सल रेसिपियंट केकरा बोलल जाला
1: देखा ढेर कोई है किशवा बहुत है वो तो मैं चाहिए जाने कि कैसे बोलनी हमने के 40% ब्लड ग्रुप ओ हम जा तो जोन ब्लड ग्रुप ओ है वो यूनिवर्सल डोनर है और जोन ग्रुप ए बी है वो लोग यूनिवर्सल रिसीवर बन जा रेसिपिएंट तो हाई दो ग्रुप बहुत है पोता है और सब तय पोता हुए है मैं से मां जहाँ डिफिकल्टी रहेला तो हई एक खातिन से गिला सक मजे कैसे ग्रुप आबे मैम से पूछा बन जा मगर यूनिवर्सल रेसिपियंट मन सा लोग के प्रॉब्लम नहीं हुई कोनो ब्लड से कैंसर
0: रिसीव करी तो हई बहुत एपोता है जाने के और आज के जो कार्यक्रम है ब्लड डोनर्स एसोसिएशन द्वारा जारी करल जाता और बहुत ऐसा जानकारी है आज के कार्यक्रम में प्राप्त करब जा चलो एगो बढ़िया गीत सुनब जा बसंत सुपोल के आवाज में रक्तदान और रक्तदान एगो बहुत महान कार्य है बहुत नोबल कार्य है और जीवन में रक्तदान करे के कोई के जीवन बचाए के बहुत जरूरी है एगो गीत के ब्रेक लेव जा और फिर उसे हाजिर हो जा आज के कार्यक्रम में आगे बढ़ेगी।

वर्षस पर आज की चर्चा का कार्यक्रम बिल्कुल रक्तदान एगो उपकार के काम है, एगो नोबल कार्य है और जीवन दान जे देवेला ओकरा सबसे बड़का आशीर्वाद मिलेला। तो चल आज के कार्यक्रम जी हाँ ब्लड डोनर्स एसोसिएशन द्वारा हैजा पर उपस्थित होल हवन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ब्लड डोनर्स एसोसिएशन श्रीमान राव जी और आप सब कोई के जनावत हैं कि रेडियो मॉरिशस पर है कार्यक्रम के सीधा प्रसारण तो देखे सकत हव अभी सुने सकत हव और साथ ही साथ हमने के टेक्निकल टीम पर हैजा पर हमर संगे हवन फैजान जी संगे हवन उरुसा हमर प्रोडक्शन असिस्टेंट और रत्नमाला मंगरू जी हमर प्रोड्यूसर। तो चला आगे बढ़ब जा और जे तोरा मन में कोनो ऐसन सवाल बा मन में कोनो ऐसन डाउट है पूछे के तो जरूर तू हमने के टेलीफोने करे सकब 402-8085 रेडियो मॉरिशस पर। तो चला कार्यक्रम के आगे बढ़ाब सर और जैसे रक्तदान एगो बहुत महान कार्य है

0: जैसे बहुत हमनी के मॉरिशस में ऐसा ढेर कोई हवन जेकरा ब्लड हाइपरटेंशन डायबिटीज जैसन समस्या है तक जानते हैं ऐसा व्यक्ति खून देवे सकी प्रवेश जी जे कोई के जाबे था टॉशों के बीमारी है तो ऐसा व्यक्ति वो रक्तदान करे सकी
1: देखा और कितना बीमारी बा जहाँ बोलीला जा खून नहीं दी के
0: हाँ.
1: मगर जब सवाल आवेला हाइपरटेंशन और डायबिटीज की तो जितना प्रोग्राम में आईला जितना जगह जाएला हई एगो लौफाज डालीला हम एकर पर क्योंकि ढेर कोई नहीं जानेला कि एगो व्यक्ति जेकर हाइपरटेंशन है उसका डायबिटीज है सकी खून दे आर ओकर खून बीएसयूएस सेवी कर ला जा काहे के अब एक्सप्लिके करब काहे एगो पेशेंट जेकर डायबिटीज बा सकी खून दे देखा डायबिटीज वे एगो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है यानी कि एक जना के ओकर जाबित रही ओकर ग्लूकोज फ्लो रही खून में तो सकब से ओकर खून लेके एगो दूसर व्यक्ति में डाले और ये नहीं बोला कि ओकर में खूनवा डाली सकता ओकर
0: ग्लूकोज जाबित हो गया
1: नहीं नहीं एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोले आ जा और सब व्यक्ति के एगो ओकर लेको में वो गान है जिसका नाम है पैंक्रियास और पैंक्रियास के काम है वो इंसुलिन रिलीज करेला तो वो शुगर लेवल ग्लूकोज लेवल रेगुलराइज करेला तो एगो व्यक्ति जेकर जाबित नहीं बा ओकर तो पैंक्रियास फंक्शन होता है नॉर्मल तो ओकर में कत में कितना ग्लूकोज ये चीनी ले जैसे नॉर्मल वर्ड में बोले ऐसा ओकर चीनी मोटी हो गल बा सिपा ओकर जाम्बित मोते होगल बात तो रेगुलराइज हो जाना तो ओ तो एगो व्यक्ति जेकर डायबिटीज है उसे की खून दे आर ओकर खून कोई के जान अवश्य बचाए
0: तो प्रभु जी यहाँ पर हैजा पर प्रभु जी यहाँ पर हैजा पर पूछब जा मान ला एगो व्यक्ति के जाबित बा वो खून देवा था और जे वो खून देवा था ओकरो भी जाबित बा
1: कोई खून दे और कोई सके खून ले जेकर जाबित है और बाकी है इपेटेंसिव है जेकर टेंशन फो है प्रोवाइडेड वो अपन दवाई ले ले माते हैं और जाए अपन खून दे जब जन ले में खून देवी ओकर टेंशन चेके होला जब ओकर टेंशन चेके करब जा ओकर विजिन नॉर्मल रेंज रही तो अवश्य अपन खून सकी दे और ओकर खून सकी सेवी होई दूसर पाचन लोग खातिर तो लिरवा एगो क्वेश्चन बताया पूछ ले रहा कौन कौन क्रिटेरिया है रिस्पेक्ट करके एगो ब्लड डोनर एलिजिबिलिटी तो प्रमियर क्रिटेर है लार्ज जो बतियाई नहीं है दूसरा क्रिटेर है पॉइंट पॉइंट लेको तो एक जना के चाहला ओ मिनिमम 50 किलो रह के तब से अपन खून दे और तीसरा क्रिटेर है चाहला ओकरा परफेक्ट संति में रह के साथ गुड हेल्थ में रह के एको प्रॉब्लम ला फीवर सिपा कोनो कोनो दूसर मलादी अपॉट जाबे टेंशन जैसे बोलनी पा कोनो ग्रैंड ऑपरेशन नहीं कर लेबा तो वो लोग सकी अपन खून नॉर्मली दे और मॉरिशस में अभी तक 3% पॉपुलेशन नहीं आ रही है जो लोग खून देवेला है जैसे 2.8 पाला पॉपुलेशन खून देवेला और मॉरिशस के जो 5% व्यक्ति लोग खून दे लगी तक कबो खून की कमी नहीं हुई
0: मतलब उतना पुसौतास चाहिए
1: पुसौतास हाँ
0: और पावे जी हाई जा पर पूछब जा कि कौन कौन मलाद में अभी तो हम बोलने जाबे तो टोंशों बाकी दूसर कौन ऐसा मला था जेकर में खून नहीं देवे सकता
1: देखो मला तो ढेर बा जो मैं एकर में से दो तीन को सीटी करब कैसे बोलनी जे कोई ऑपरेशन लेके करे ले बा तो लोग के बोली ला आप अच्छा कि ऑपरेशन हो गल तो लोग के नहीं खून दे के क्योंकि तुझू एक ग्रांड ऑपरेशन कर ले कोई ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गन कर ले बा कोई कि कोनो मला कैंसर हो जा सिपा कोई जालीज करेला रिनल फेलियर बा तो ऐसा ऐसा काम है बोली राजा खून नहीं दी के आज कोई जानेला इन्फेक्टिव बा कोनो इन्फेक्शन तेल के एच आई वी सिपा दूसर रथी से तो लोगों के बोली राजा खून नहीं दी के

0: d'accord du seul pays qui est infecté né oui mais au cas contraire si quoi il y a problème de hal il y a l'époque à la chahogal abnormal state mais chalal tu ça qui est pas condé normal dit mais c'est moi une fois qu'il y a une grande opération qu'elle est là disons les cas que c'est transplantation qui dans bolis là j'en ai alors quoi que bon c'est pas une petite opération qu'elle est là tu au lieu que ça qui condé un an qui bat donc anesthésie générale mais j'en bolis que opération là tu as ces protocoles c'est qui qui a une baris qui bat c'est qui en j'en ai condé normal dit
1: और मान ला अभी आजकल तो जैसे लाग्रिप हुआ था लाग्रिप कोई के बुखार चलाल बा कोई के कुमाजा सर्दी रहता और जैसे मान ला चिकुनगुनिया डेंगू और आजकल तो लेप्टोस्पाइरोसिस नामक एगो बीमारी सब कोई के बहुत अफेक्ट करा था तो ऐसन समस्या में एगो व्यक्ति मतलब मान ला अभी तो बुखार चल गल बा चिकुनगुनिया हो के फिनी हो गल बा एगो एगो 10 दिन हो गल बा तब फेरो से वो देवी सकी खूनवा
0: देखा चिकुनगुनिया जब होला तो नॉर्मली थोड़ा दिन ले अफेक्ट करेला हमनी के जॉइंट्स इधर उधर तो जब तक एगो एगो व्यक्ति में ओकर दुले बा थोड़ा दर्द होता जॉइंट पेन
1: अशक्ति माते भाव
0: तब नहीं चाहिए खून दे के मैं ओका कॉन्ट्रे जे ओकर चिकुनगुनिया फिनी हो गल नॉर्मल हो गल ओकरा एको ने बाद तैसे कि दे समय के बाद अपन खून दे पाकोत डेंगे में एक जब डेंगे के ओकर समस्या हो लाता बोले राजा एक महीना के बाद दी पाकोत लेप्टोस्पिरोज के ओकर प्रॉब्लम कहाँ है जब से इन्फेक्टे हुई बा तो थोड़ा लाफीव हुई लगी हेडेक हुई लगी तप लगी सिपा कुबाचिया हुई तो है सब जब सेंटोम होला तो डेफिनेटिव खून नहीं देबा बस कि हम नहीं जहाँ जब जेबा खून दे तो पूछे जाना तो और हेल्थ स्टेट तो बोल बा ऐसे ऐसे होता तो लोग भी तो नहीं ले ग्रीपे रहे बता मैं पाकोत लेप्टोस्पिरोज के ओकर अभी तक नहीं प्रोटोकॉल नहीं जाना थे जा कितना दिन में एगो व्यक्ति अच्छा हो जाए सिपा कितना दिन के बाद से कि खून दे मैं पाकों जब तक इन्फेक्टे रही तब तक नहीं चाहिए एको ब्लड डोनेशन दे के करे के और लेजोत ला ग्रिपो रही दूसरा ला ग्रिप सीजनियर जैसे अभी ठंडा के लिए पका होता था देर कोई ग्रिपे हो जाला देर कोई के लागोज तो कोनो इन्फेक्शन रही जब देखा तो हमारा खुल नहीं दे बोल जाना
1: और महिला लोग में जैसे मान लो कोनो महिला जब मासिक धर्म से गुजरत हवन तीन दिन चार दिन तो ऊ में ऊ दरमियान ऊ खून देवे सकी
0: देखा नो मालमो हमने के कोई स्कूल प्रोग्राम चले बतियाते नहीं जब जाए ला जाए लेकुल में तो जब कोनो लड़की लोग को लो के मेंस्ट्रुअल पीरियड में होन जा तब बुरी लाजो के खून नहीं दिखे मैं पाको बड़ा जे लोग एडल्ट हम सब वो लोग मैम ब्लीड हो तो वो लोग हेमोग्लोबिन अच्छा बा तो सेकेंड जाओ अपन खून दे मैं पाको नॉर्मल मो बोली राजा महिला लोग तो ऐपे फ्रिल हो जा को फ्रिल नहीं बोले खोजे थे कि
1: हाँ नहीं कोई कोई लोग बहुत जस्ती को मजा वीकनेस महसूस करे लंसर हाँ
0: सिपा हेमोग्लोबिन बा हो जाला तब भाई कावन में नहीं देवल जाला मैं से मो एक महिला देखी और मैम और तो आकाजू हो गल और हेमोग्लोबिन वा अच्छा बा लेवल से ओकर लेवल अच्छा बा खून दे के तो सकी दे
1: और जब हम बात करीला जा एगो शॉर्टेज जब चलावेला तो शॉर्टेज काहे हो जाला
0: देखा है दुनिया भर में जितना कंट्री बा जहाँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन होला ब्लड डोनेशन होला हो जा शॉर्टेज एग्जिस्ट है काहे होला मॉरिशस के लोग जाता एगो शॉर्टेज होला सीजनियर अभी जैसे लीवर ही रहता तो ढेर कोई ग्रीपे होला ढेर कोई मलाद होला तो कमती आदमी जाला खून दे तो देखे ला रिमार्के के राजा कि लीवर में थोड़ा खून की कमी होला पाको एगो दूसर फैक्टर जो अफेक्टे करेला ये जब ब्लड डोनर एसोसिएशन जाएला जा अपनी अपन कोजरी करे तो बोली ला जा जब पेयुत फेस्टिव रहेला लाने के लिए पोक नोएल के लिए पोक संक्रांति रही तब कावेदी रही तब महाशिवरात्रि रही तो ऐसे जब हमने के मुसलमान भाई लोग अपन कांग में हिल जाए हई सब मोमोवा में सोते हमेशा रहला क्योंकि सब कोई बिजी रहला अपन एक्टिविटी से और जे लोग नॉर्मल मो धीरे कोई कांग में रहला तो बोले ना जब खूने दिया सब अस्की दिन भर नहीं खेले वन जा चिपकवा तो जब देखब सत जानवे से लेके एगो मॉस ले पर थोड़ा जस्ती काम करके जस्ती अपील करके

0: blood donation cantine. Mais par contre, après nous régulariser là, après c'est l'hiver mais il y a une shortage là. Donc फिर से
1: हाई में भी मतलब रक्तदान में भी एक सीजन
0: सीजन से मैं सेमा डिपेंड हां जे जे व्यक्ति वहां मलाड नहीं रहते हां भी अब जे आई ठंडा में ढेर कोई थोड़ा है पे एम भी जस्ट ही जदमी लोग इफेक्टेड होला कुछ मतलब बे वो खाते हैं थोड़ा सीजनल शॉर्टेज रहला
1: हां हां तो आज के कार्यक्रम के है ये उद्देश्य है जस्ती से जस्ती मीडिया द्वारा हम जस्ती से जस्ती लोगन के अपील करत है कि ऐसन कार्य में अपन सहयोग देवे खातिर बस अपन सहयोग दिया काहे के है जो नेगो कार्य है वो दूसर लोग के जान बचावे खातिर एगो ऐसन कदम उठावल जाला जहाँ पर सचे के रक्तदान एगो बहुत महान कार्य है तनी सन तू ए दे कर दे बताऊ का जानी उद आदमी के जान बच जाए तो यही खातिर ऐसन प्रोग्राम के माध्यम से हम जस्ती से जस्ती लोगन के हई सूचना देवत हई तो चला एगो गीत के ब्रेक ले जा और कार्यक्रम के आगे बढ़ावब जा।

0: रेडियो मॉरिशस पर आज की चर्चा कार्यक्रम ब्लड डोनर्स एसोसिएशन से उपस्थित हुए उप प्रधान श्रीमान काविश राव जी आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे अतिथि हैं। और ब्लड डोनेशन यानी रक्तदान कितना आवश्यक है, कितना अनिवार्य है हमारे समाज के लिए और क्यों ये किया जाता है, इस पर आज की चर्चा का आधारित है ये कार्यक्रम। और चलिए भावेश जी से ये पूछते हैं कि रक्तदान का आयोजन कौन करता है, के करेला आयोजन रक्तदान के भाई भावेश।
1: देखो मॉरिशस में हमने मौसम में बोलनी 20 बरिस ले हम काम करनी ब्लड बैंक में और हो जहाँ पर एक रेजो क्रिए करनी सर जन लिकिप से हाउ बकत से और सब बोले ईयरली जितना बुकिंग मिलेगा हमने के हो जा अच्छा अब पर एक को जिफो वे नहीं करे के पास क्योंकि ये अली एक एग्जाम से कब ले एमबीसी के टीम जो है वो लोग भी थे ऑर्गेनाइज करे ला हर हर साल तो इससे जितना कंपनीज बा मिनिस्ट्रीज बा स्कूल्स बा कॉलेजेस बा सोशल क्लब्स बा तेलमो बुकिंग मिले ला रिलीजियस बॉडीज बा तेलमो बुकिंग मिले ला कि कबू पर ला रिफ्यूज करके मैं बुकिंग सकेला मिले में ब्लड कहूँ मिलेगा ढेर कहूँ कमती मिलेगा में इम्पोर्टेंट यह है कि हमने के चला सब कोई के अवेयरनेस करे के एजुकेट करे के क्यों ब्लड डोनेशन काहे इम्पोर्टेंट बा और काहे हमने के चाहिए वो स्टॉक हमेशा रखे के। देखो रत्ना जी एक बात बोलो, एक जना लोपिताल में एडमिट होल तो सकी खाई के मिले सकी लीली मिले सकी लोये मिले तो क्या मिले सकी ओकर मेजिकामो मिले सकी एकोन भी मिले सकी वोंचिलाते भी मिले इक्के गुच्छ चीज सियाने हो मिली सेजिस खून क्योंकि खून न सकीला सकी ने न सकीला सा फैब्रिक करे ये खून मिलेला जिस वॉलंटरी फ्रॉम ह्यूमन बॉडी
0: टू ह्यूमन बॉडी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हाई बात समझे के बहुत जरूरी है, कोनो लीजिन में नहीं बनेला खून
1: नहीं से की बने।
0: और आज आज ले अभी ह्यूमन उतना आगे नहीं बढ़ल बा कि कहा वो खून अपन आप से फोजुए करे सकी, तो हाई सम हाई चीज बहुत एपोत हाँ समझे के। और जब हम रक्त रक्तदान के आयोजन के बात करीला तो मान ला अभी कोई ऑर्गेनाइज करे खोजत हवन एगो रक्तदान खातिन तो कैसे ओकरा चाहिला, कौन कौन माध्यम से उ तोरा आपोषे करे सकी या कैसे उ तोरा जनावे सकी कि वो एगो ओकरा मन करता आयोजन करे के।
1: देखा सेंट्रल ब्लड बैंक जो है कांडूस में और ब्लड डोनर्स एसोसिएशन जो रोजिल में है सकबा जा वो लोग के कॉन्टैक्ट करे एक कोई के मन रही फेक मजे हमने के गांव में एगो आयोजन करे खोज दें चाहे ब्लड डोनेशन तो 427-07-11 पर ब्लड बैंक के सकबा जा टेलीफोन करके एगो बुकिंग कराए या एगो लेटर या ईमेल द्वारा सकबा जा भेजे तब वो लोग बुकिंग करके या सकबा जा ब्लड डोनर्स पर ही पासे होके ब्लड डोनर्स एसोसिएशन पर ही तब ब्लड डोनर्स एसोसिएशन बुकिंग वहाँ कर देवी तो खातिर और हेल्प भी करी ब्लड डोनर्स ऑर्गेनाइजे करे के कैसे समझाओ अब जा मीटिंग कर अब जा कि कैसे कौन सी एप्लीकेशन चाहिए लॉजिस्टिक चाहिए और कैसे मोटिवेट करे के गाँव के आदमी लोग के जो अपन गाँव में करबा या अपन लिए दे हवाई में जैसे बोले सब मिनिस्ट्रीज और कोनो कोई मुस्के में करेला कोई मंदिर में करेला कोई चर्च में करेला कहूँ कर वजह तो हम नहीं जाए ला जाओ लोग के हेल्प करे जमी के फ्रूटफुल

0: एक्टिविटी हुई।
1: और जब हम बात करी ला जा, जैसे शुरुआत में तू बतैलन कि कैसे तू लेकुल में जाके एगो प्रोग्राम करत हवा, तो एक प्रतनी जस्ती हमने के इन्फॉर्मेशन देवे सकब।
0: देखा आज के जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज बा हमने के चाहला जैन लोग के मोटिवे करे के, क्योंकि यही नौजवान लोग कल के लावीनीय होन जा, और यही नौजवान लोग हमने के कल की दुनिया होन जा। एक हला जे एक अपन खून दे देन जा, और हाई जो डर है खून दे के, इत सब कोई में है जे पहला ला जाना खून दे तो वो लोग के डर लगेला कि हम जाए खून दे तो सो गिर जा तो सो हमरा खून कमती हो जाए। तो ये सब मैं इन्फॉर्मेशन हमने नौजवान लोग के देवत हैं जा, और एगो खासियों से सब बोले कि ब्लड डोनर्स एसोसिएशन जो काम करता है लेवल वा में, जितना नौजवान लोग बा वो लोग एक कुछ अपन खून दे दिल जा, तब वो लोग आता तोहर से पूछा था मिशे कौन कहाँ के दुनी दिल में वो लोग के अच्छा लगेगा कि एक ऐसा काम कर दिलन जा जहाँ कोई के जान बचा दिलन जा, और वो जीतों के लाज में हमने तो बोली रहा सा अभी छोटा बा बाद में बड़ा हुई था एगो निमन काम करी बा कोई के ऐदे करी, तो छोटे ही से हमने ऐसा एगो सोशल एक्टिविटी में डाल देनी जा कि आज ऐसा प्राउड महसूस होला कि हम कोई के जान बचा देनी। और हौ दिनवा से हौ लैकवा जब ले अपन सखी अपन खून दे वो देते रही हाई 15 क्लब हुआ, ये एगो माध्यम है कि लैकवा के मोटिवेट करके ओकरा 15 टाइम्स ब्लड दे मैं कैश कुछ दे दे रखते बोली मो पापा आ गए थे हंसते मोता दे दे। और जब अपन खून देवता अपने के हेल्थी रखता ना, और जितना हाला अपन खून दे उतना हाला टेस्टिंग होला, उतना हाला होकर फुल मेडिकल चेक हो, यानी कि अपन 15 मिनट जन हो जा गई दे कोई के जान बचेला, और अपन खुद अपन जान बचाओ तो हाई यंग ब्लड जन क्रिए कर ले जा। हम बोला गाँव में ऐसी मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर सौंते, और हमने की जितना कर्मचारी लोग बा ब्लड डोनर्स एसोसिएशन में महिला लोग भी बा, अभी महिला लोग सामजी के फित मामा के अवसर पर वो ब्लड डोनेशन करलन सा कतो में वित महिला लोग खून दिलन जा, और वो लोग बहुत अपन लगन से काम करत बन जा। और हमने के जाने ला हमने के प्रेसिडेंट भाई देवानंद हुसैन और शोभानंद सिंह गुलाम जी के जाने ला, और कितना मेम्बर्स लोग बावरी अपन फुल सपोर्ट डिविलन अपन फुल 100% डिविलन जा कई कार्य में। तो वो लोग खातिन हम सब बोली हमने की चाहना बोली कि मैसी कि ऐसा काम करके इतना ब्लड हमने तो वो NGO है सर जितना ब्लड कलेक्टेड होला सब गवर्नमेंट के जाके दे ला जा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, और अब जैसे जिस विषयों होला।
1: और जैसे भाई अभी बोला था वन कि कैसे एगो खून एगो व्यक्ति जब खून देवे पहला तो हये डर लगेला कि हमर खून कमती हो जाए, तो हई पे हम हये पूछब जा कि एगो व्यक्ति कितना पॉइंट खून देवे सकी और उ कितना दिन में फेरों से हों भूसे हो जाला।
0: देखा कुमौसमा बोलनी एगो महिला जो है वो हर 4 महीना में 1 पॉइंट ऑफ ब्लड सकी दे, और पुरुष 3 महीना में सकी एगो 5 जिसे दे, और एनफुआ कि वो खुनवा दे दिलक, और फुदे कि ओकर हीमोग्लोबिन लाओ 2.5 ग्राम पर लीटर रही तब सकी दे। ये वो खीते हैं वो तो हैं तब यहाँ हम भुला गए नहीं, जब 2.5 ग्राम पर लीटर से जस्ती रही तो एलिजिबल बा अपन खून देगी। और एनफुआ कि वो मैक्सिमम 450 मिलीलीटर खून एगो पाइंट ब्लड में जाला तब सकी ला से ओकरा यूज करे, कबो कबो थोड़ा कम टीवी ले जा दे पा ला पेशन के पुआ पर जैसे कब जा अगर पुआ थोड़ा कम थी बा 50 किलो 50 किलो तो सके ला 450 मिलीलीटर ले ला जा। और एनफुआ कि वो अपन खून दे दिलक तो कबो ओकरा दौजे में नहीं हाउ फोदे 3 हला हाई वॉल्यूम वा पेजी हो फेक माजे वो ऑक्सीडन कर ले बा 3 हला 450 मिलीलीटर पेजी हो गल तब सके एगो एता कोमा में जाए। मैं वो का कॉन्ट्रे एगो खून दिलक एक पॉइंट ऑफ ब्लड तो वो तो जस्ती हेल्दी हो गल क्योंकि उतना मूवे किचो जो हमने के दें में हा उतना निकल गल क्योंकि हमने के एक दें अब नवा खून पहुंच जाए करी। और कैसे पूछ ला

0: कितना दिन में रिकवरी हो जाएगा खून, तो 21 जो में ओकर वॉल्यूम दे सौ पारी हो जाला 48 एवं में खून पानी पीबा जितना लिक्विड सकब कंसोमे करिए तो 48 एवं में हो जाला और 21 जो लेवल ओकर सब जितना सेल्स
1: खून दे देले है हम तो फेब हो गल, अभी हम पतरा हो गईली है काहे के खून दे देले है। सलमा जैसे भावेश बोलत हवन कि ऊ गबू से हो जाला थोड़ा घड़ी में थोड़ा दिन में, और बहुत हेल्दी है खून देवे के। और आज के कार्यक्रम में है भी पूछे के बहुत ऐप होता, हम मान लग कोई सिगरेट पियाता फूकता और शराब पिया था, तो ऐसा आदमी खून देवे सकी और देवे सकी तो मतलब ओकर ओकर सेहत खातिन या दूसर के सेहत खातिन वो खून अच्छा बाकी नहीं।
0: नहीं देखो अल्कोहल और सिगरेट में सक बोले नॉर्मली बोली राजा जो कोई फीमे करेला तो अपन खून दे दे तो इन्हें तो नहीं फीमे करेगी काहे बस की जब फीमे कर बोहर औते रिट्रेसी होला ना फीमे तो सकी गिर जाए तो वो खातिन बोली राजा जब अपन अपन कंपाइन करी राजा जो कोई आए खून दे तो बोली राजा सी ऊ फीमे अप्रे ऊ कहाँ फीमे अप्रे नहीं तो स्वा वो कहाँ आखिर फीमे उसी मजा से मोटिवेट करे सर जब कि नहीं
1: फीमे
0: समा तो वो तो व्यक्ति जब फीमे करी तो एटलीस्ट समा पहला वन आवर वाला उगड़ा नहीं चाहिए ना फीमे करके पाकों जे लोग पीले बा जे सवेरे पीले हुए अंजा तो नहीं सर खून दे में लावे के पीले हम अंजा वह देर भजियर लेना ही जे लावे के मजा 7-8 बजे पी के लौंग दे में खून दे होता तो वो एको न न रेसिपियंट वाके अफेक्ट करे न दुनिया वाके तो देखो ओकर हेल्थ स्टेट कैसे
1: और ओकर खून हेल्दी रही दूसर व्यक्ति खातिर।
0: हाँ हाँ कोनो प्रॉब्लम नहीं हुई
1: और ओकर में भी कोनो टेस्ट करल जाला मतलब
0: अल्कोहल के टेस्ट नहीं होला में टेस्टिंग के बारे में पूछब तब बोला कैसे बोलिए एगो फुल मेडिकल चेकअप है जे ओकर डिटेक्शन चिको ओकर ब्लड ग्रुपिंग ओकर एच आई वी जितना इन्फेक्शन व सब की टेस्ट क्योंकि जब एगो खून ले भी ला जा तो हमने के चैनल आश्चर्य करी कि जन रमिया रिसीव करी खून हुआ ओकर एगो सेफ ब्लड मिली।
1: तो है सब पर आधारित रहल आज के कार्यक्रम। और आज हमने के संगे रहल ब्लड डोनर्स एसोसिएशन के उप प्रधान श्रीमान भावेश राव जी। और बस आवत समय में भी एगो और कार्यक्रम ब्लड डोनेशन पर आधारित रही वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे जे मनावल जाता 17 जून को। तो आज के कार्यक्रम के हैजा पर समाप्त करे खातिर हम प्रवेश जी से है ये निवेदन करब जा कि आज के कार्यक्रम के तनी समराइज करिए और हमनी के कौन मैसेज देब हमर जनता लोग के।
0: देखो हम जनता से है ये अपील करब आज की जो स्थिति बा वर्ल्ड वाइड हमनी के चैनल अपन हेल्थ के बहुत कोंत लेके हमनी के चैनल हेल्थ कॉन्शियस रह के और जे अप अपन स्पो अपन आलिमा सब निमन से लेवा दें जा तो और ही गो फैक्टर के कंसिडर करिए कि अपन जान बचावत हुआ तो देखा सक और ही व्यक्ति लोग जो लोग हॉस्पिटल में बा वो लोग के जान बचाई तो है वो बहुत बड़ा बात रही। हमने कि चलो हमने के मॉरिशस के कैसे बोलनी 5% जो व्यक्ति लोग खून दे तो कब वो सोते जो ब्लड नहीं रही तो ये एगो अपील बा सब जनता से कि जे तोहर लड़का के 18 वर्ष हो गल या स्कूल जाता 17 वर्ष होल बा तो ओकरा मोटिवे कर बोला जाके खून दे के आर हेल्दी रह के और ऐसे हई नौजवान जो बढ़ता वो जो ओकर लड़का आई तो वो लोगों ऐसे मोटिवेट करके
1: अपन सहयोग
0: दियन जा और अपन जान बचाव और ही दूसरों को अपने अपन हमने के जितना परिवार लोग
1: सहयोग दिया
0: सब सहयोग द ताकि वो लोगों के जान सके बचे।
1: तो इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को बस यहीं पर समाप्त करेंगे। हमारी टेक्निकल टीम पर हमारा साथ दिया फैजान जी ने, साथ ही साथ उरुसा प्रोडक्शन असिस्टेंट रत्नमाला मंगरू जी हमारे साथ बनी रही हमारी प्रोड्यूसर, और जितने भी दर्शकों ने टीवी के माध्यम से फेसबुक के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को फॉलो किया, रेडियो मॉरिशस के कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस पर आपने इस कार्यक्रम को सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक शुभ दिन की शुभकामना देते हैं, फिर मिलेंगे एक अगले कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए रत्ना को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को।

0: काफी कमी आई है, ये जहां पर्यावरण मंत्रालय लगभग 1.1 किलोमीटर लंबे तटीय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर संरक्षण कार्य शुरू करने की तैयारी कर रहा है, वहीं होटल ग्रुप बीचकॉम्बर ने इस सप्ताह थोबिश होटल के सामने समुद्र तट पुनर्वास परियोजना का शुभारंभ किया है। फ्रांस से आए विशेषज्ञों द्वारा किए जा रहे इन कार्यों का उद्देश्य रेत के बहाव और विस्थापन की गति को धीमा करना है, साथ ही तटीय क्षेत्र में प्राकृतिक आफ्तादी यानी सेडिमेंट आदान प्रदान की प्रक्रिया को भी सुरक्षित बनाए रखना है। अधिकारियों के अनुसार ये पहल समुद्र तट को दीर्घकालिक रूप से संरक्षित करने और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उनके लंबित ओवरटाइम की पेमेंट इस महीने के अंत तक कर दी जाएगी। इसके साथ ही दमकल विभाग के कर्मचारियों के लिए संडे अलाउंस तथा पब्लिक हॉलीडे अलाउंस की पेमेंट भी शुरू हो चुकी है। अधिकारियों के अनुसार इन सभी पेमेंट्स की प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2026 की समाप्ति से पहले पूरी कर ली जाएगी। इन निर्णयों पर सरकारी कर्मचारियों के एक प्रमुख संगठन गवर्नमेंट सर्विसेज एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने आयोजित एक प्रेस वार्ता में प्रतिक्रिया व्यक्त की और स्वागत किया। मेलरोज उच्च सुरक्षा जेल में बंदी ओंजी सेल्मो की मृत्यु की परिस्थितियों की जांच के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट कल मंगलवार को प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम को सौंपी गई। पूर्व न्यायाधीश पल्लम शांगलिन द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट में मामले से जुड़े तथ्यों का विस्तृत विवरण, जांच के निष्कर्ष और कई महत्वपूर्ण सिफारिशें शामिल हैं। रिपोर्ट में विशेष रूप से जेल सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने तथा जेल प्रशासन और प्रबंधन में सुधार से संबंधित सुझाव दिए गए हैं। नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल द्वारा कैनाबिस से जुड़े सुधारों पर परामर्श प्रक्रिया जारी रखी गई है। आज बुधवार को विभिन्न मंत्रालयों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों के लगभग 40 प्रतिनिधियों को इस विषय पर अपना मत देने के लिए आमंत्रित किया गया। इस प्रक्रिया का उद्देश्य नीतिगत सुधारों पर व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त करना और संबंधित पक्षों के सुझावों को शामिल करना बताया जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस और यूक्रेन के अधिकारियों के अनुसार आज बुधवार तड़के यूक्रेनी ड्रोन हमलों ने सेंट पीटर्सबर्ग में ऊर्जा और सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। ये हमला ऐसे समय हुआ जब शहर में रूस के प्रमुख आर्थिक मंच यानी इकोनॉमिक फोरम का आयोजन शुरू हो रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भाग लेने की उम्मीद है। सेंट पीटर्सबर्ग के गवर्नर अलेक्जेंडर बेगलोव ने कहा कि हमले में कई बुनियादी ढांचा सुविधाओं को नुकसान पहुंचा है, हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। वहीं विभिन्न यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य इकोनॉमिक फोरम के आयोजन को प्रभावित करना और उसे बाधित करना था। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष के बीच इस हमले को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: से मिले दिल
2: सभी सुनने वालों को अनुराधा की ओर से नमस्कार और आदाब। जहां रेडियो मनोरंजन पर आप ही के मन पसंदीदा प्रोग्राम हम चला रहे हैं इस समय दिल से मिले दिल। जी हाँ, 94.95 MHz, 98.2 MHz पर। और बेशक हम आपका साथ रहेंगे शाम 5 बजे तक। और ये विशेष म्यूजिकल प्रोग्राम आज समर्पित है हिंदी फिल्म जगत की उस मधुर और सुरमई आवाज को जिसने अपनी गायकी से लाखों दिलों को छुआ, और आप हैं सुमन कल्याणपुर।
1: You're listening RM Free Radio.

0: आइए सुनते हैं समाचार आशिता के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार गिनीशा, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। वर्षों से जारी तटीय कटाव यानी इरोजन के कारण तोबिश समुद्र तट के कई हिस्सों की चौड़ाई में

बंगाली, गुजराती, भोजपुरी, पंजाबी और कई अन्य भाषाओं में भी गीत गाए। और सुमन कल्याणपुर ने अपने संगीत के सफर में सैकड़ों यादगार गीतों को अपनी मधुर आवाज से अमर बनाया। उनकी गायकी में कोमलता, भावनाओं की गहराई और सुरों की ऐसे मिठास थी जो श्रोताओं के मन को सीधे स्पर्श करती थी। और सुमन कल्याणपुर ने अनेक महान संगीतकारों गायकों के साथ काम किया और हिंदी फिल्म संगीत में कई अनमोल गीत गाए। लिहाजा ये गाना जो अभी आप सुन रहे हैं फिल्म राजकुमार का गीत।

0: से मिले दिल
1: जहां दोस्तों रेडियो मनोरंजन पर इस समय आप सुन रहे हैं दिल से मिले दिल प्रोग्राम जो चलेगा शाम 5 बजे तक और इस विशेष म्यूजिकल प्रोग्राम में हम सुनेंगे सुमन कल्याणपुर के कुछ चुनिंदा और सदाबहार नगमे जो आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में बसे हुए हैं तो सुरों की इस खूबसूरत यात्रा को जारी रखते हैं और याद करते हैं महान गायिका सुमन कल्याणपुर को जो अब इस दुनिया में नहीं रही बस 89 साल की उम्र में 89 ईयर्स की उम्र में वो भगवान को प्यारी हो गई पिछले 31 मई 2026 को

जी हाँ, ये था फिल्म चालाक का गीत। वैसे तो सुमन कल्याणपुर ने अपने लंबे संगीत जीवन में सैकड़ों फिल्मी और गैर फिल्मी गीत रिकॉर्ड किए और भारतीय संगीत जगत में अपनी अलग पहचान बनाई। हाल ही में, जिस तरह हमने कुछ क्षण पहले बताया, हाल ही में उनका 89 साल की उम्र में 89 ईयर्स उनकी आयु में मुंबई में निधन हो गया और संगीत जगत और उनके प्रशंसक, उनके चाहने वाले, उनकी मधुर भावपूर्ण और कोमल आवाज़ के लिए हमेशा हमेशा याद करेंगे। सुमन कल्याणपुर के साथ साथ आप मुकेश को सुनेंगे।

सुमन कल्याणपुर हिंदी फिल्म जगत की स्वर्णिम गोल्डन पीढ़ी की एक बेहद लोकप्रिय और सम्मानित पार्श्व गायिका थी। उनका जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। बाद में उनका परिवार मुंबई आ गया, जहां उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त की। वैसे अभी अभी आपने उनको मुकेश के साथ ये गाना सुनते हुए सुना, और मोहम्मद रफ़ी के साथ भी कितने गाने गाए हैं, लोकप्रिय गाने, मन्ना डे, तलत महमूद, किशोर कुमार साहब के साथ भी, इन लोगों के साथ कई महान गायकों के साथ भी कई लोकप्रिय युगल गीत गाए, और उनके प्रसिद्ध गीतों में आजकल, तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार हुए, तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल ने फिर याद किया, इस तरह के गाने शामिल हैं।

0: शाम के 4:32 हुए हैं।
1: चौरानवे पंचानवे दशमलव छः 98.2 आप सुन रहे हैं और M3
0: और दिल से मिले दिल प्रोग्राम हम जारी रखते हैं और आज का ये प्रोग्राम समर्पित है सुमन कल्याणपुर पर और इन्होंने अपनी फिल्म करियर की शुरुआत 1954 में की और 1950 से 1970 के दशक के बीच अनेक यादगार गीत गाए। उनकी आवाज़ इतनी मधुर और कोमल थी कि कई बार लोग उसे लता मंगेशकर की आवाज़ समझ लेते थे। स्वयं सुमन कल्याणपुर जी ने स्वीकार किया था कि युवावस्था में वे लता जी के गीत गाया करती थी, इसलिए उनके गायकी पर उसका प्रभाव दिखाई देता था।

ते क्रात की ये गाना हेमंत कुमार भी गाया है। चलिए दिल से मिले दिल प्रोग्राम इस समय अब सुप्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर की मधुर आवाज से सजे यादगार बॉलीवुड गानों का अनमोल संग्रह आप सुन रहे हैं, जो श्रोताओं को संगीत युग की खूबसूरत यात्रा पर ले जाएगा। फिल्म साथी का वो प्यारा सा गाना है जो सुमन कल्याणपुर के साथ साथ मुकेश की आवाज आप सुनेंगे।

सुमन कल्याणपुर की आवाज़ जो है उनकी तुलना लता मंगेशकर से की जाती थी। कई श्रोताओं को तो वर्षों तक ये पता ही नहीं था कि आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे ना ना करते प्यार कर

हो गए, जैसे कई गीत सुमन पुरियापुर ने गाए थे, पर उन लोगों ने सोचा कि लता जी ने मतलब ये गीत गाए न कि सुमन कल्याणपुर जी। तो चलिए अब की बार फिल्म बदलते रिश्ते से लिया गया ये नगमा सुनते हैं, जिसका साथ दिया है मतलब सुमन कल्याणपुर का साथ दिया है किशोर कुमार साहब ने।

सुमन कल्याणपुर की गायकी को बेहद मधुर, कोमल और भावपूर्ण माना जाता है और कई संगीतकारों व गायकों ने उनकी अलग पहचान और योगदान की सराहना भी की। खुद सुमन कल्याणपुर ने कहा था कि उन्होंने कभी किसी की नकल नहीं की। उनका मानना था कि उनकी आवाज़ भले लता जी से मिलती हो, लेकिन उनकी आवाज़ उनकी अपनी शैली थी। एक प्यारी सी लोहड़ी है आप सभी प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, खास करके ईशान भी के लिए उनकी डैडू की तरफ से।

और बहुत से संगीत प्रेमी ऐसे मानते हैं कि सुमन कल्याणपुर ने उतनी पहचान और अवसर नहीं मिले जितने उनकी प्रतिभा के अनुसार मिलने चाहिए थे। आज सुमन कल्याणपुर हमारे बीच नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ कि जब तक आकाश में तारे चमकेंगे तब तक सुमन कल्याणपुर जी का नाम सभी के जुबान पर रहेंगे और उनके गाए गीतों को रेडियो के चैनलों पर सभी प्रोग्रामों में ज़रूर हम चलाएंगे। तो चलिए एक और प्यारा सा नगमा जो उनके लोकप्रिय गीतों में से एक है ये सुन।

श्रोताओं याद रहे ठीक 5 बजे आप का साथ देंगे श्री विश्वानंद जी। और आज के हमारे इस प्रोग्राम में दिल से मिले दिल प्रोग्राम में हमने सुमन कल्याणपुर के गाए गीतों से आप लोगों का मनोरंजन किया। उम्मीद करते हैं हमारे साथ अच्छे वक्त आप बिताए होंगे। और एक अंतिम नजराना है आप सभी के नाम छोड़े जा रहे हैं, बस संगीत जगत में सुमन कल्याणपुर के बहुत सारे प्रशंसक हैं, बहुत से चाहने वाले हैं, तो उनकी मधुर आवाज़, उनकी भावपूर्ण और कोमल आवाज़ के लिए हमेशा याद करेंगे। तो अनुराधा आपसे अब अनुमति चाहेंगे, फिर मिलेंगे। नमस्कार और शुभ संध्या।

ना दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अर्थात परमात्मा न किसी के पाप को ग्रहण करता है और न किसी के पुण्य को। जीवों का वास्तविक ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ रहता है, इसलिए वे मोह और भ्रम में पड़ जाते हैं। श्रोताओ, रात्रि में रास्ते में पड़ी हुई रस्सी को देखकर कोई व्यक्ति उसे सांप समझ लेता है और डर भी जाता है। अज्ञानतावश या वस्तु का सही ज्ञान न होने के कारण भ्रमवश मनुष्य रस्सी को सांप मान लेता है। जब ज्ञान रूपी प्रकाश आता है तब भ्रम और भय मिट जाते हैं। आत्मज्ञान होने पर सभी

0: संदेह श्रोताओं मिट जाते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, एक बार फिर अनकही एक कहानी नामक कार्यक्रम में विश्वानंद आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। अपनी स्वरचित कहानी लेकर प्रोफेसर राज भी हमसे जुड़ गए हैं, उनका भी हृदय से स्वागत है। तो देर न करते हुए चलिए सुनते हैं अनकही एक कहानी प्रोफेसर राज की जुबानी।
1: आपका हार्दिक आभार गुरु विश्वा। नमस्कार प्रिय श्रोतागण, रेडियो की इन मधुर तरंगों पर गुरु विश्वा के साथ मैं प्रोफेसर राज आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम अनकही एक कहानी में। भारतीय संस्कृति और दर्शन की परंपरा में अनेक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने यह सिद्ध किया है कि मनुष्य की पहचान उसके शरीर से नहीं बल्कि उसके ज्ञान, चरित्र और आत्मबल से होती है। अक्सर हम बाहरी रूप, रंग और शारीरिक बनावट को ही किसी व्यक्ति की योग्यता का आधार मान लेते हैं, जबकि वास्तविक प्रतिभा मनुष्य के भीतर निवास करती है। हाँ श्रोतागण, आज की हमारी अनकही कहानी है महर्षि अष्टावक्र की। एक ऐसा बालक जो जन्म से ही 8 स्थानों से वक्र अर्थात टेढ़े शरीर वाला था, लेकिन जिसकी बुद्धि, ज्ञान और आत्मविश्वास ने बड़े बड़े विद्वानों को भी चकित कर दिया। यह कहानी केवल एक ऋषि की नहीं बल्कि आत्मविश्वास, सत्य और ज्ञान की विजय की कहानी है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज अनकही एक कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक विकलांग समझे जाने वाले बालक ने संसार को यह सिखाया कि मनुष्य का मूल उसके शरीर से नहीं बल्कि उसके ज्ञान और आत्मा की शक्ति से आंका जाना चाहिए। तो अष्टावक्र की कहानी इस तरह शुरू होती है। महर्षि उद्दालक का शांत आश्रम, संध्या का समय, कुटिया में दीपक जल रहा है, ऋषि कहोर वेद मंत्रों का पाठ कर रहे हैं और सुजाता पास ही बैठी श्रद्धापूर्वक सुन रही है। तभी तेज और गंभीर स्वर में मंत्र पढ़ते हुए कहोर ऋषि कहते हैं,
0: ओम अग्निमिडे पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्विजम।
1: कहोर उच्चारण में एक गंभीर त्रुटि करते हैं और मंत्र के अर्थ को गलत संदर्भ में दोहराते हैं। तभी अचानक सुजाता के गर्भ से एक अत्यंत शांत, स्पष्ट और अलौकिक ध्वनि गूंजती है। गर्भस्थ शिशु कहता है, ठहरिए तात, रुक जाइए, आपके शब्दों का स्वर और संधान त्रुटिपूर्ण है। कहोर चौंक कर चारों ओर देखते हैं, हाथ से उनकी पोथी छूट जाती है और वे आश्चर्य में बोल पड़ते हैं,
0: कौन कौन बोला यह? इस एकांत कुटिया में मेरे पाठ में विघ्न डालने वाले का कौन, किसने दुस्साहस किया?
1: भय से थरथराते हुए अपने पेट पर हाथ रखते हुए सुजाता कहती है, स्वामी यह ध्वनि बाहर से नहीं मेरे गर्भ से आ रही है। हमारा होने वाला बालक बोल रहा है स्वामी, हमारा बालक। तभी पुनः शांत स्वर में गर्भस्थ शिशु कहता है, हाँ तात, मैं आपका पुत्र हूँ, क्षमा कीजिएगा, किंतु सत्य को छुपाया नहीं जा सकता। आप वेदों की ऋचाओं का केवल सत्य ही पाठ कर रहे हैं, शब्दों को रट लेने से ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलता। आप मंत्र के मर्म को छोड़ उसके बाहरी आवरण को पकड़ रहे हैं। यह पाठ अशुद्ध है तात, अशुद्ध है। गर्भस्थ शिशु की बात सुनते ही क्रोध से कहोर ऋषि का चेहरा लाल हो जाता है और आंखों से आग सुलगने लगती है। वे कहते हैं,
0: क्या एक अजन्मा शिशु जो अभी इस संसार की वायु को छू भी नहीं पाया, वह अपने प्रकांड पंडित पिता को वेदों का ज्ञान सिखाएगा, शास्त्रार्थ की मर्यादा सिखाएगा?
1: कहोर के पैर पकड़ते ही सुजाता कहती है,

0: स्वामी स्वामी शांत हो जाइए स्वामी, बालक अबोध है, वह नहीं जानता कि वह क्या कह रहा है। अपनी संतान पर क्रोध ना करें स्वामी, क्षमा करें। सुजाता को अनदेखा करते हुए अहंकार में चिल्लाते हुए कहोर ऋषि कहते हैं,
1: नहीं सुजाता, यह बालक अबोध नहीं, अत्यंत धृष्ट और अहंकारी है। जन्म से पहले ही जिसके भीतर अपने पिता के अपमान की भावना हो, वह कुल का नाशक है। ओ अभिमानी जीव, सुन, यदि तुझे अपने जान पर इतना ही अहंकार है तो मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू इस संसार में 8 स्थानों से टेढ़ा मेढ़ा होकर जन्म लेगा।
0: अपने पति की बात सुनते ही सुजाता चीखने लगती है,
2: नहीं नहीं स्वामी, यह क्या किया आपने, अपने ही अंश को ऐसा भयानक श्राप।
0: तभी कुटिया में सन्नाटा छा जाता है। कहोर को अपनी भूल का एहसास होता है, लेकिन श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था। तभी सुजाता को भूख से व्याकुल देख कहोर अपनी दरिद्रता पर गलानी से भर जाते हैं और बहुत ही भारी आवाज में अपनी पत्नी सुजाता से कहते हैं,
1: सुजाता, क्रोध ने मेरी मति हर ली थी, पर अब इस कुटिया की दरिद्रता और हमारे बच्चे का भाग्य, मुझे कुछ करना होगा सुजाता, कुछ करना होगा। सुना है मिथिला के राजा जनक अपनी सभा में विद्वानों को बहुत स्वर्ण मुद्राएं दे रहे हैं, मैं वहां शास्त्रार्थ के लिए जा रहा हूं सुजाता, शायद वहां कुछ हो जाए।
0: अपने महान ऋषि कहोर की बात सुनकर सुजाता रोने लगती है और कहती है,
2: नहीं स्वामी, नहीं स्वामी, मत जाइए वहाँ, मत जाइए। मैंने सुना है वहाँ बंदी नाम का एक क्रूर विद्वान रहता है, जो हारने वाले ब्राह्मणों को जल में डुबो देता है। मुझे भय लग रहा है स्वामी, मुझे भय लग रहा है।
1: डरो मत, मुझे अपने जान पर विश्वास है सुजाता, मैं लौट कर इस दरिद्रता को मिटा दूंगा, तुम अपना ध्यान रखना।
0: और यह कहकर कहोर तेजी से कुटिया से बाहर निकल जाते हैं। सुजाता रोती रह जाती है और गर्भ में पल रहा बालक मौन रहकर आगामी नियति को स्वीकार कर लेता है। दिन प्रतिदिन समय बीतता जाता है। 12 वर्ष बीत चुके हैं। महर्षि उद्दालक का आश्रम है, अष्टावक्र का जन्म हो चुका है। वह अपने टेढ़े मेरे शरीर के साथ धीरे धीरे चलते हुए आश्रम के प्रांगण में आता है। उसका शरीर विकलांग है, पर आंखों में सूर्य जैसा तेज है। अचानक श्वेत केतु वहां आता है और कहता है,
1: अष्टावक्र, तुम महर्षि उदालक की गोद से नीचे उतरो, यह स्थान केवल उनके वास्तविक पुत्र का है, तुम्हारा नहीं। तुम मेरे पिता की गोद पर अधिकार नहीं जता सकते।
0: शांत स्वभाव से बिना विचलित हुए श्वेत केतु के इस कटाक्ष को सुनते हुए अष्टावक्र कहते हैं,
3: भाई श्वेत केतु, महर्षि उद्दालक तो संपूर्ण जगत को अपनी संतान मानते हैं, फिर इस भौतिक शरीर के नाते तुम मुझसे इतने रुष्ट क्यों हो? पिता का प्रेम तो आकाश की तरह है, इस पर किसी एक का एकाधिकार कैसा?
1: पिता, यही तो तुम्हारा भ्रम है अष्टावक्र। महर्षि उदालक तुम्हारे पिता नहीं, तुम्हारे नाना है। तुम्हारे वास्तविक पिता तो तुम्हें इस रूप में छोड़कर कब के चले गए? जाओ अपनी माता से पूछो कि तुम्हारे असली पिता कौन है और उन्होंने तुम्हें यह विकृत शरीर क्यों दिया, जाओ पूछो।
0: श्वेत केतु की बात सुनकर अष्टावक्र के मन में पहली बार अपने

0: अस्तित्व को लेकर गहरी व्याकुलता जागती है। वे लड़खड़ाते कदमों से अपनी माता सुजाता की कुटिया की ओर बढ़ते हैं। सुजाता उन्हें उदास देखकर चौंक जाती है। अष्टावक्र के माथे को चूमते हुए वह कहती है,
1: क्या हुआ मेरे लाल, आज तुम्हारी आंखों में यह कैसा सन्नाटा है? क्या आश्रम के बालकों ने तुम्हारी देह को लेकर पुनः कोई उपहास उड़ाया है?
0: गंभीर स्वर में अष्टावक्र कहते हैं, नहीं माता, आज पीड़ा शरीर की नहीं आत्मा की है, मुझे सच बताइए। महर्षि उद्दालक अगर मेरे नाना हैं तो मेरे पिता कहाँ हैं? उन्होंने मुझे जन्म लेने से पहले ही यह 8 स्थानों से टेढ़ा शरीर क्यों दिया, और वे आज हमारे साथ क्यों नहीं हैं? अष्टावक्र की बात सुनकर सुजाता के आंखों में आंसू भर जाते हैं। वे अष्टावक्र को गले लगा लेती हैं और कहती हैं,
1: हाय नियति हाय, जिस सच को मैं आज तक छुपाती रही वह आज तुम्हारे सामने आ ही गया पुत्र, आ ही गया। तुम्हारे पिता महान विद्वान ऋषि कहोर थे।
0: माता की बात सुनकर अष्टावक्र आश्चर्यचकित हो जाते हैं और फिर बोलते हैं,
1: फिर उन्होंने मुझे यह श्राप क्यों दिया माता, क्यों दिया?
0: रोते हुए सुजाता कहती है,
1: जब तुम मेरे गर्भ में थे तब तुमने उनके वेद पाठ की त्रुटि सुधार दी थी पुत्र। अपने ज्ञान के अहंकार और क्रोध में आकर उन्होंने तुम्हें यह 8 वक्र अंगों का श्राप दे दिया, पर पुत्र वे बुरे नहीं थे। हमारी दरिद्रता दूर करने के लिए वे मिथिला के राजा जनक के दरबार में शास्त्रार्थ करने गए थे।
0: माता की बात सुनकर अष्टावक्र उत्सुक हो जाते हैं। वे पूछते हैं,
1: फिर क्या हुआ माता, वे लौटे क्यों नहीं?
0: रोते हुए माता सुजाता कहती है,
1: वहां राजा जनक के पंडित बंदी ने उन्हें शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया, और वहां की क्रूर सत्र के अनुसार हारने वाले विद्वानों की तरह तुम्हारे पिता को भी जल समाधि दे दी गई पुत्र, जल समाधि। वे अभी संसार में नहीं है, अष्टावक्र नहीं है।
0: अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए एक अलौकिक दृढ़ता के साथ अष्टावक्र खड़े होते हैं और कहते हैं,
1: माता रोइए मत, पिता का श्राप मेरे लिए श्राप नहीं वरदान है। इसी टेढ़े शरीर के भीतर उन्होंने मुझे वह तीक्ष्ण बुद्धि दी है जो सत्य को देख सकती है। यदि पिता ने शास्त्र का अपमान नहीं सहा तो उनका पुत्र अपने पिता का यह अपमान कभी स्वीकार नहीं करेगा।
0: सुजाता अपने पुत्र की बात सुनकर भयभीत हो जाती है और कहती है,
1: तुम क्या कहना चाहते हो पुत्र?
0: आकाश की ओर देखते हुए गर्जना भरे स्वर में अष्टावक्र कहते हैं,
1: मैं इसी क्षण मिथिला की ओर प्रस्थान करूंगा मां, इसी क्षण मैं राजा जनक की सभा में उस अभिमानी बंदी को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दूंगा और अपने पिता को उस जल बंधन से मुक्त कराऊंगा।

0: अष्टावक्र की बात सुनकर और उसके चेहरे पर छाए और पूर्व संकल्प को देखकर सुजाता निरुत्तर रह जाती है। अब आश्रम का बाहरी हिस्सा में देखिए क्या होता है। अष्टावक्र जाने की तैयारी कर रहे हैं। सुजाता रास्ता रोके खड़ी है। पृष्ठभूमि में तेज हवाएं चल रही हैं, क्योंकि अष्टावक्र ने एक महासंकल्प लिया है। अष्टावक्र के हाथ पकड़कर रोते हुए माता सुजाता कहती है,
1: नहीं पुत्र, नहीं, मैं तुम्हें इस महाविपत्ति में नहीं ढकेल सकती। तुम्हारी आयु मात्र 12 वर्ष है। इस पर तुम्हारा यह दुर्बल और 8 स्थानों से वक्र शरीर, तुम मिथिला के प्रकांड पंडितों का सामना कैसे करोगे पुत्र, कैसे करोगे? उस क्रूर बंदी से शास्त्रार्थ करना साक्षात मृत्यु के मुख में जाना है पुत्र, साक्षात मृत्यु के मुख में।
0: माता के चरण छूकर शांत परंतु दृढ़ स्वर में अष्टावक्र कहते हैं, माता, देह की दुर्बलता से आत्मा की शक्ति को मत मापिए। पिता का श्राप मेरे अंगों को टेढ़ा कर सकता है, पर मेरी बुद्धि को नहीं। यदि पिता की मुक्ति का मार्ग मृत्यु के मुख से होकर जाता है तो आपका यह पुत्र वहां भी सहर्ष प्रवेश करेगा। और उसी समय श्वेत केतु भी वहां उपस्थित है और वह अपनी बुआ को कहता है,
2: बुआ, आप चिंता न करें, अष्टावक्र अकेले नहीं जाएंगे, मैं इनके साथ मिथिला चलूंगा। भले ही हमारे बीच पूर्व में मतभेद रहे हों, पर अष्टावक्र का संकल्प न्याय संगत है, मैं मार्ग में इनका सहारा बनूंगा।
0: कांपते हाथों से दोनों के सिर पर हाथ रखकर माता सुजाता कहती है, तेजस्वी पिताओं की ओजस्वी संतानों, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जाओ और अपने पिता के गौरव को पुनः स्थापित करो पुत्र, पुनः स्थापित करो। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद दोनों भाई मिथिला राज की सीमा पर पहुंचते हैं। भव्य मुख द्वार पर हथियारों से लैस द्वारपाल उन्हें रोक लेता है। अष्टावक्र के चलने के ढंग और शारीरिक बनावट को देखकर उसका उपहास उड़ाते हुए एक द्वारपाल कहता है,
3: रुक जाओ बालको, कहाँ चले आ रहे हो? यह मिथिला की न्याय नगरी है, यहाँ केवल प्रतिष्ठित विद्वानों, राजाओं और सामंतों को ही प्रवेश की अनुमति है, यहाँ कोई खेल का मैदान नहीं।
0: क्रोध से श्वेत केतु भी कहता है,
4: सैनिक, अपनी जीभ पर लगाम दो, तुम जिसके शरीर का उपहास उड़ा रहे हो वे परम ज्ञानी अष्टावक्र हैं। हम महाराज जनक की शास्त्रार्थ सभा में सम्मिलित होने आए हैं, हमारा मार्ग छोड़ो।
0: ठहाका मार कर हंसते हुए द्वारपाल भी करता है,
3: शास्त्रार्थ सभा और यह 8 अंगों से टेढ़ा बालक, बालक, शास्त्रों में लिखा है कि राजा की सभा में केवल श्रेष्ठ पुरुषों का ही प्रवेश होता है, इस अपंग बालक को देखकर तो सभा का अनुशासन भंग हो जाएगा, लौट जाओ, अपने आश्रम लौट जाओ बालको।
0: द्वारपाल की बात सुनकर अष्टावक्र आगे बढ़ते हैं। गंभीर और सिंह जैसी गर्जना भरी आवाज में वे भी ललकारते हैं,
4: सैनिक, शास्त्रों का आधा अधूरा ज्ञान अत्यंत घातक होता है, जरा अपने उन शास्त्रों के पन्ने पुनः पलटो। मार्ग और सम्मान केवल 3 लोगों को दिया जाता है, वृद्ध को, राजा को और ज्ञानी को। यदि ज्ञान की कसौटी केवल आयु और सुंदर शरीर होती तो संसार का हर वृद्ध और रूपवान व्यक्ति महर्षि होता। अष्टावक्र के तेज से भयभीत होकर द्वारपाल यह बोलते हुए पीछे हटता है।
2: तुम्हारी वाणी में तो अद्भुत धार है बालक।
4: दृढ़ता के साथ अष्टावक्र फिर कहते हैं, मेरी देह टेढ़ी है सैनिक, मेरा ज्ञान नहीं। द्वार छोड़ो, मैं यहां भिक्षा मांगने नहीं, राजा जनक के अहंकार को तोड़ने और अपने पिता के न्याय के लिए आया हूं। मेरा मार्ग रोकने का साहस स्वयं नियति में भी नहीं है। अष्टावक्र के अलौकिक आत्मविश्वास और संकल्प को देखकर द्वारपाल का सिर झुक जाता है और वह चुपचाप मार्ग छोड़ देता है। दोनों भाई मिथिला नगर में प्रवेश करते हैं। मिथिला का राज दरबार सजा हुआ है, चारों ओर भव्यता ही है। सिंहासन पर राजा जनक विराजमान हैं और उनके दोनों ओर प्रकांड विद्वानों की मंडली बैठी है। अष्टावक्र अपने भाई श्वेतकेतु के साथ अत्यंत कष्ट से लड़खड़ाते हुए, शरीर को झटक झटकते हुए सभा के मध्य मार्ग में प्रवेश करते हैं। अष्टावक्र के चलने के अजीब ढंग, उनके आठ स्थानों से टेढ़े मेरे शरीर को देखकर पूरी सभा में सन्नाटा खींच जाता है और फिर अचानक सभी विद्वान जोर जोर से हंसने लगते हैं। एक विद्वान हंसते हुए दूसरे से कहता है, ओहो जरा देखो तो, यह कौन सा प्राणी चला आ रहा है? इसके पैर कहीं जा रहे हैं और सिर कहीं और। वहीं पर बंदी भी बैठा है जो महान विद्वान है, जिसने शास्त्रार्थ में

0: कई लोगों को परास्त किया है और उसे जल समाधि में बंदी बना लिया है। वह भी व्यंगपूर्ण मुस्कान के साथ कहता है,
1: महाराज जनक, ऐसा प्रतीत होता है कि आज मिथिला की शास्त्रार्थ सभा में किसी विद्वान के स्थान पर कोई बहरूप या अपनी कला दिखाने आ गया है।
0: पूरी सभा ठहाकों से गूंज उठती है। राजा जनक भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते और मन मन मुस्कुराने लगते हैं। तभी अचानक अष्टावक्र विचलित होने के बजाय उन विद्वानों से भी अधिक तीव्र और अट्टहासपूर्ण हंसी हंसने लगते हैं। उनका स्वर इतना शक्तिशाली है कि पूरी सभा का अट्टहास अचानक सन्नाटे में बदल जाता है। आश्चर्यचकित और गंभीर स्वर में राजा जनक कहते हैं,
1: रुकिए, शांत हो जाइए सब। बालक, इस सभा के विद्वान तो तुम्हारी शारीरिक बनावट और विचित्र चाल को देखकर हंसे, जो कि स्वाभाविक था, किंतु तुम इन परम ज्ञानी विद्वानों और मुझ पर इस प्रकार क्यों हंस रहे हो? तुम्हारी इस हंसी का रहस्य क्या है?
0: राजा जनक की बात सुनकर अपनी हंसी को रोकते हुए अष्टावक्र अत्यंत शांत परंतु वज्र जैसी गंभीर आवाज में कहते हैं, राजन, मैं हंसा क्योंकि मैं एक बहुत बड़े भ्रम में था। मैं दूर आश्रम से यह सुनकर आया था कि मिथिला के राजा जनक परम तत्व ज्ञानी हैं और उनकी सभा ब्रह्म ज्ञानियों से सुशोभित है, किंतु यहां आकर मेरा वह भ्रम टूट गया। महाराज, टूट गया।
1: तुम्हारा क्या तात्पर्य है बालक? क्या तुम्हें यहां बैठे ऋषियों के ज्ञान पर कोई संदेह है?
0: राजन, मैं तो यहां सत्य के पारखियों और विद्वानों की सभा में आया था, परंतु मुझे अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस राजसभा में कोई विद्वान नहीं बल्कि केवल चर्मकार, चमड़े के व्यापारी बैठे हैं। यह सुनते ही पूरी सभा में खलबली मच जाती है। विद्वान क्रोध से खड़े हो जाते हैं। एक दरबारी विद्वान क्रोध में चुनौती देते हुए कहता है, इस बालक की धृष्टता तो देखो, हम ब्रह्मविद्ताओं को यह चर्मकार कह रहा है। महाराज, इसे तत्काल दंड मिलना चाहिए। हाथ उठाकर राजा जनक सबको शांत करते हुए अष्टावक्र के तेज से प्रभावित होकर कहते हैं,
1: बालक, अपनी इस भारी बात का प्रमाण दो, अन्यथा तुम्हें राजद्रोह के अपराध में बंदी बना लिया जाएगा। तुमने हमें चर्मकार क्यों कहा?
0: निर्भीकता से राजा जनक की आंखों में देखते हुए अष्टावक्र कहते हैं, महाराज, चर्मकार की दृष्टि केवल चमड़ी पर होती है। वह चमड़े के ऊंच नीच और सीधे टेढ़े होने को परखता है। यहां बैठे आपकी तथाकथित विद्वान भी ठीक वही कर रहे हैं। इन्होंने मेरी आत्मा को नहीं देखा, मेरे भीतर के ब्रह्म को नहीं जाना। इनकी दृष्टि केवल मेरी इस हार मांस की टेढ़ी मेरी चमड़ी पर टिक गई। अष्टावक्र की बात सुनकर राजा जनक सन्न रह जाते हैं। अष्टावक्र आगे बढ़कर फिर कहते हैं, राजन, गन्ने के टेढ़े होने से क्या उसका रस भी टेढ़ा हो जाता है? नदी के मार्ग में घुमा होने से क्या उसका जल भी अपवित्र हो जाता है? यदि नहीं, तो इस नश्वर देह के 8 स्थानों से वक्र होने से मेरे भीतर का शाश्वत ज्ञान टेढ़ा कैसे हो सकता है? महाराज, कैसे हो सकता है? जो शरीर को देखकर ज्ञान का मूल्यांकन करे, वह ज्ञानी कैसा?

अष्टावक्र के गन्ने के टेढ़े होने के प्रमाण और नदी के मार्ग में घुमाव होने का उदाहरण सुनकर राजा जनक का अहंकार चूर चूर हो जाता है। वे तुरंत

0: अपने सिंहासन से नीचे उतरते हैं और अष्टावक्र के चरणों में गिर जाते हैं। पूरी सभा शर्म से सिर झुका लेती है। अब राजसभा सज चुका है, शास्त्रार्थ होना है। राजा जनक अपने आसन पर पुनः लौट चुके हैं, किंतु उनकी दृष्टि अष्टावक्र पर टिकी हुई है। सभा के केंद्र में अष्टावक्र और बंदी आमने सामने खड़े हैं। महा शास्त्रार्थ होने वाला है। वातावरण में भारी तनाव और उत्सुकता है, और सभा की गंभीरता को देखते हुए राजा जनक कहते हैं,
1: हे दिव्य बालक, आपकी बुद्धिमता देखकर मेरा मस्तक श्रद्धा से झुक गया है, किंतु नियम अपरिवर्तनीय है। यदि आपको अपने पिता को मुक्त कराना है तो हमारे प्रधान पंडित बंदी को शास्त्रार्थ में पराजित करना होगा। क्या आप तैयार है?
0: अष्टावक्र एक बार राजा जनक को देखते हैं, फिर बंदी को देखते हैं, फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, राजन, मैं पूर्णतः तैयार हूं। हे बंदी, आप आयु और प्रतिष्ठा में मुझसे बड़े हैं, इसलिए पहला प्रश्न या तर्क रखने का अधिकार मैं आपको देता हूं। प्रारंभ कीजिए।
1: बालक, तुम्हारी निर्भीकता प्रशंसनीय है। सुनो, सृष्टि का आदि अंत संख्याओं के खेल में छिपा है। मैं एक से प्रारंभ करता हूं। सूर्य संसार में केवल एक है जो पूरे जगत को आलोकित करता है। देवताओं का राजा इंद्र भी एक है और आत्मा भी केवल एक ही है।
0: बिना पलक झपकाए तत्काल उत्तर देते हुए अष्टावक्र बोलते हैं, विद्वान बंदी, अब दो की संख्या सुनिए। इंद्र और अग्नि दो देव हमेशा साथ पूजे जाते हैं। देवर्षि नारद और पर्वत मुनि दो प्रसिद्ध सखा हैं। अश्विनी कुमार भी दो हैं, और इस संसार में सुख दुख, पाप पुण्य जैसे द्वंद्व भी दो ही हैं। आश्चर्य से अष्टावक्र को देखते हुए बंदी कहता है,
1: अति सुंदर, तो फिर तीन के बारे में मुझसे सुनो। संसार में तीन प्रकार के जन्म, स्वेदज, अंडज, जरायुज होते हैं। तीन मुख्य कर्म यज्ञ, अध्ययन, दान है। तीन काल भूत, भविष्य, वर्तमान है। लोक भी तीन, आकाश, पृथ्वी, पाताल ही है।
0: अष्टावक्र भी तेज स्वर में कहते हैं, आचार्य, चार की महत्ता मुझसे सुनिए। ब्राह्मणों के आश्रम चार, ब्रह्मस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास हैं। वर्ण चार हैं, दिशाएं चार हैं, और पवित्र वेद भी चार ही हैं। इसी प्रकार दोनों के बीच संख्याओं के माध्यम से ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों पर तीव्र शास्त्रार्थ चलता रहता है। सभा मंत्र मुग्ध है। बंदी संख्या 5, 6, 7 से लेकर 12 तक पहुंचते हैं, और अष्टावक्र हर बार तत्काल और सटीक उत्तर देते हैं। अंततः बंदी संख्या 13 पर आते हैं। पसीने से लथपथ हांफते हुए बंदी कहते हैं,
1: संख्या 13 दिन का पक्ष अत्यंत अशुभ माना जाता है। पृथ्वी पर 13 ही मुख्य यज्ञ है, और
0: फिर बंदी अचानक रुक जाते हैं। उनका गला सूख जाता है। वे आगे का श्लोक पूरा नहीं कर पाते। सभा में गर्जना करते हुए अष्टावक्र कहते हैं, क्या हुआ आचार्य बंदी, आप रुक क्यों गए? संख्या 13 का आधा श्लोक कहकर आप मौन हो गए। चलिए,

0: से मैं पूरा करता हूं। आत्मा को जानने वाले 13 तत्वों 10 इंद्रियां मन बुद्धि और अहंकार से परे जाकर ही मुक्ति पाते हैं। वेद के अति छंद नामक छंद में 13 अक्षर होते हैं। अष्टावक्र की बात सुनकर पूरी सभा में सन्नाटा छा जाता है। बंदी के हाथ से उनकी शास्त्र पोथी गिर जाती है। वे निरुत्तर होकर अपना सिर झुका लेते हैं। उत्साह और विस्मय से खड़े होते हुए राजा जनक कहते हैं,
1: अद्भुत अकल्पनीय प्रधान पंडित, बंदी निरुत्तर हो गई। इस 12 वर्ष के बालक ने मिथिला के अजेय विद्वान को पराजित कर दिया।
0: कांपते स्वर में अष्टावक्र के सामने घुटने टेकते हुए बंदी कहते हैं,
1: महाराज जनक, यह बालक साधारण नहीं, साक्षात ज्ञान का पुंज है। मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ। मैं वरुण देव का पुत्र हूँ और मैंने जितने भी ऋषियों को जल में डुबाया था वे मरे नहीं हैं, बल्कि उन्हें मेरे पिता के लोक में एक महायज्ञ के लिए सुरक्षित रखा गया था। आज इस बालक की विजय के साथ ही वे सभी ऋषि बंधन मुक्त हुए।
0: अष्टावक्र की आंखों में विजय की चमक और पिता के प्रति सम्मान की भावना उभर आती है। राजसभा का प्रांगण है। वरुण लोक से मुक्त होकर ऋषि कहोर और अन्य विद्वान सभा में प्रवेश करते हैं। कहोर के बाल जटाधारी हैं और चेहरे पर गलानी तथा संतोष का अनूठा मिश्रण है। अष्टावक्र को देखकर उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकलती है। अष्टावक्र को बाहों में भरते हुए सुभगते हुए कहोर ऋषि कहते हैं,
2: ओ मेरे परम प्रतापी पुत्र, मुझे क्षमा कर दो। जिस देह को मैंने अपने अहंकार के अंधेपन में श्रापित किया था, आज उसी देह के भीतर छिपे ब्रह्मज्ञान ने मुझे जीवन दान दिया है। तुमने पिता के अपराध को भुलाकर पुत्र का धर्म निभाया है अष्टावक्र।
0: पिता के चरणों में सिर रखकर अष्टावक्र कहते हैं, पिताश्री, ऐसा ना कहें। यदि आपका वह श्राप ना होता तो शायद मुझे इस नश्वर संसार और देह की नश्वरता का भान इतनी अल्प आयु में कभी ना होता। आपका वह श्राप मेरे लिए परम दीक्षा बन गया। सभा के सम्मुख गर्व से हाथ उठाकर कहोर ऋषि कहते हैं,
1: हे मिथिलापति, हे उपस्थित ऋषियों, आज यह पिता अपने पुत्र के सम्मुख नतमस्तक है। पुत्र, समीप ही बहती समंगा नदी में स्नान करो। तुम्हारी देह का वक्रत्व अब समाप्त होना चाहिए।
0: अष्टावक्र समंगा नदी के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं और जब बाहर आते हैं तो उनका शरीर दिव्य, सीधा और अत्यंत कांतिवान हो चुका होता है। राजा जनक यह अलौकिक दृश्य देखकर अष्टावक्र के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं और हाथ जोड़कर अत्यंत व्याकुल हो कहते हैं,
1: हे महात्मन, आपने मिथिला का उद्धार किया है। अब मेरा यह राजपाट, यह वैभव मुझे निस्सार प्रतीत हो रहा है। कृपया मुझे अपनी शरण में ले लें और मुझे सत्य का मार्ग दिखाएं। मेरा प्रश्न है, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे मिलती है और वैराग्य कैसे सिद्ध होता है।
0: एक ऊंचे आसन पर विराजमान होकर शांत और परम गंभीर मुद्रा में अष्टावक्र कहते हैं, राजन, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो सबसे पहले इन 5 विषयों काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या को विष के समान त्याग दो और क्षमा, सरलता, दया, संतोष तथा सत्य का अमृत के समान सेवन करो।
1: हे गुरुदेव, इस स्थूल शरीर और संसार के प्रपंचों के बीच मैं स्वयं को कैसे पहचानूं?
0: परम सत्य का उद्घाटन करते हुए अष्टावक्र कहते हैं, हे जनक, तुम ना पृथ्वी हो, ना जल, न अग्नि।

0: न वायु और न आकाश। मुक्ति के लिए स्वयं को इन पंच तत्वों से अलग, इनका साक्षी और केवल चैतन्य रूप आत्मा को समझो।
1: अहो अद्भुत, मैं शरीर नहीं, मैं तो अनंत आकाश की तरह शुद्ध बुद्ध और शांत आत्मा हूँ। प्रकृति के नियम मुझ पर लागू नहीं होते, मैं मुक्त हूँ।
0: मुस्कुराते हुए अष्टावक्र कहते हैं, साधु जनक, साधु, तुमने सत्य को पा लिया। जो स्वयं को बंधन में मानता है वह बंध जाता है, जो स्वयं को मुक्त मानता है वह मुक्त हो जाता है। सारा खेल केवल तुम्हारी चेतना का है। राजा जनक की अंतरात्मा अष्टावक्र की बात सुनकर आलोकित हो उठती है और पूरी सभा इस महाज्ञान के अवतरण पर मौन रहकर नमन करती है। मिथिला नगरी की सीमा, सुबह का समय है। अष्टावक्र अपने माता पिता के साथ आश्रम लौटने के लिए तैयार हैं। राजा जनक अपने पूरे मंत्रिमंडल और प्रजा के साथ उन्हें विदा करने सीमा तक आए हैं। चारों ओर फूलों की वर्षा हो रही है और शंख बज रहे हैं। आंखों में कृतज्ञता के आंसू लिए हाथ जोड़कर राजा जनक कहते हैं,
1: हे परम गुरु अष्टावक्र, आपके जाने से मिथिला की भूमि आज उदास है, किंतु मेरी अंतरात्मा उस शाश्वत प्रकाश से जगमगा रही है जो आपने मुझे अष्टावक्र गीता के रूप में दिया है। अब मैं इस राज सिंहासन पर बैठकर भी पूरी तरह मुक्त हूँ।
0: मंद मुस्कान के साथ राजा जनक के कंधे पर हाथ रखते हुए अष्टावक्र कहते हैं, राजन, विलाप कैसा? ज्ञानी के लिए न कोई आता है न कोई जाता है। अब आप विदेह हैं, जो शरीर में रहकर भी शरीर के बंधनों से परे है। राजपाट को केवल एक नियमित मात्र कर समझ कर चलाएं, सत्य सदैव आपके भीतर ही रहेगा। राजा जनक से कहोर ऋषि कहते हैं,
1: हे मिथिलापति, आपकी मुमुक्षा और विनम्रता ने सिद्ध कर दिया कि आप केवल प्रजा के राजा नहीं बल्कि ऋषियों के भी सम्राट है। अब हमें अपने तपोवन की ओर प्रस्थान करने की अनुमति प्रदान करें।
0: अष्टावक्र को निहारते हुए गदगद स्वर में माता सुजाता कहती है, स्वामी, जब यह बालक 8 स्थानों से वक्र होकर जन्मा था तब मैंने केवल इसके कष्ट को देखा था, पर आज मुझे समझ आया कि नियति ने इसके माध्यम से पूरे संसार को यह दृष्टि दी है कि सत्य सुंदर या कुरूप का मोहताज नहीं होता। राजा जनक कहते हैं,
1: सत्य कहा माता सुजाता, गुरुदेव अष्टावक्र ने संसार को सिखाया है कि आत्मा अजर अमर और शुद्ध है, देह तो केवल एक वस्त्र है।
0: उपस्थित जन समुदाय को देखते हुए अंतिम उपदेश के रूप में अष्टावक्र कहते हैं, हे मिथिला के निवासियों, सदैव याद रखना, अज्ञान ही बंधन है और आत्मज्ञान ही मुक्ति है। जब तक तुम स्वयं को इस हार मास का शरीर मानते रहोगे तब तक सुख दुख के चक्र में फंसे रहोगे। जिस दिन यह जान लोगे कि तुम केवल शुद्ध चैतन्य हो, उसी क्षण सारे भय और सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। यही शाश्वत सत्य है। साष्टांग प्रणाम करते हुए राजा जनक कहते हैं,
1: गुरुदेव, आपकी यह सीख और यह महासंवाद युगों युगों तक मानव जाति का मार्ग आलोकित करता रहेगा। अखंड ब्रह्मांड के इस अनमोल रत्न को मिथिला का बारंबार प्रणाम।

0: मार्कस की तारीख में आज की रात एक यादगार रात होगी, क्योंकि बरसों के बाद आज फिर आपके सामने आ रहा है आपका प्यारा हंसता गाता जोकर राजू। मैं नहीं जानता पिछले 20 वर्षों में वो कहां था, उसने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, ये तो बेचारा राजू जानता है या उसका दिल जानता है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं वो जहां भी था, जिस हाल में भी था, सुखी था, दुखी था, खुशहाल था, मुफलिस था, बीमार था, वो लोगों में खुशी बांट रहा था। और ये वो दौलत है जो जितनी लुटाई जाए उतनी ही बढ़ती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, राजू का कहना है कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी तमाशा है, लेकिन मैं कहता हूं कि राजू का तमाशा कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये तमाशा नहीं, ये जिंदगी है।
1: रोकिए महेंद्र साहब, उसको रोक लीजिए। डॉक्टर कहते हैं अगर ये इस तरह छूकूद करेगा तो मर जाएगा। क्या आप अपने तमाशे के लिए एक आदमी की जान लेंगे?
0: शेर सिंह, राजू आदमी नहीं, जोकर है। ये जिएगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं।

0: अष्टावक्र की कथा हमें यह गहरा संदेश देती है कि सच्ची सुंदरता शरीर में नहीं बल्कि ज्ञान, विवेक और आत्मबल में होती है। अष्टावक्र का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि यदि हमारे भीतर सत्य, ज्ञान और आत्मविश्वास है तो संसार की कोई बाधा हमें महान बनने से नहीं रोक सकती।
1: जी,
0: इस बार की जो लोकोक्तियां हैं मैं अपने श्रोतागण से साझा करना चाहूँगा। भोजपुरी में है, का बरखा जब कृषि सुखाने।
1: जी।
0: फिर से सुन लीजिए, का बरखा जब कृषि सुखाने। इसका अर्थ अगली बार गुरु विश्वा बताएंगे और तब तक आप श्रोतागण इस पर विचार विमर्श कीजिएगा। हिंदी में है, जो धावे सो पावे, जो सोवे सो खोवे। फिर से सुन लीजिए, जो धावे सो पावे, जो सोवे सो खोवे। पिछली बार जो लोकोक्तियाँ पूछी गई थी उसका अर्थ गुरु विश्वा बताएंगे। भोजपुरी में जो लोकोक्ति थी, दुधारू गाय के लातो सहल जाला,
1: जिसका अर्थ है लाभ मिले तो मार भी सहनी पड़ती है।
0: बहुत बढ़िया। और हिंदी में लोकोक्ति पूछी गई थी, घर बैठे गंगा नहाना।
1: जी हाँ, बहुत ही दिलचस्प। इसका अर्थ है बिना परिश्रम के लाभ मिलना। श्रोताओं, इससे संबंधित एक छोटी सी कथा है, कृपया इसका रसास्वादन कीजिए। किसी गांव में प्रकाश नाम का एक आलसी लड़का रहता था। उसके तीन घनिष्ठ मित्र थे जो स्वभाव से मेहनती थे। प्रकाश स्वभाव से आलसी बन गया था क्योंकि वह घर बैठे गंगा नहाता था। उसके पिताजी धनी थे, पैसे वाले थे और प्रकाश को सब कुछ आसानी से प्राप्त हो जाता था। एक दिन उनके पिताजी बीमार पड़ गए। अब प्रकाश को उन्हीं की दुकान में काम करना पड़ा। उनकी साड़ियों की दुकान थी। एक दो दिन दुकान में काम करके प्रकाश थक गया और अपने बीमार बाप के पास जाकर बोला, पिताजी दुकान में काम करना आसान नहीं, बहुत धैर्य और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तब पिताजी ने उत्तर दिया, यदि धैर्य और मेहनत से काम नहीं करता मैं, तो अपने बेटे को उसकी मनपसंद की चीज़ें कैसे खरीद कर देता। तब प्रकाश की आंखों में आंसू आ गए। उसे यह बात समझ में आई कि कठोर परिश्रम से ही सच्चे सुख की प्राप्ति होती है।
0: हर बार की भांति लोकोक्ति के माध्यम से इतनी प्यारी छोटी सी कहानी

0: सुनाने के लिए गुरु विश्वा का हृदय से आभार।
1: धन्यवाद।
0: तो प्रिय श्रोतागण, हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब उसे अपने आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा देनी पड़ती है। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सफलता प्राप्त की हो? क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा अनुभव है जिसको आपने अपने जीवन में

0: ज्ञान और मानवीय मूल्यों से जुड़ी हो। हम बाहरी रूप से आगे बढ़कर मनुष्य के भीतर छिपी प्रतिभा और मानवीय गरिमा को पहचानें। अपनी अनकही कहानी हमें भेजिए इसमें ईमेल पर professorrasekhar@gmail.com। हमसे जुड़े रहिए, सुनते रहिए और लिखते रहिए, क्योंकि आपकी एक प्रेरक कहानी किसी और के जीवन में आत्मविश्वास और आशा का नया दीप जला सकती है। धन्यवाद, नमस्कार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर राज जी इन महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। श्रोताओं, कहा गया है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे न त्वम शोचितुम अरसी। अर्थात जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हो गई है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसीलिए जो अपरिहार्य है, जिसको टाला नहीं जा सकता, उसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, अब हम अपने कार्यक्रम के अंत तक आ पहुँचे हैं। अब विश्वानंद और प्रोफेसर राज को विदा दीजिए। अगले सप्ताह फिर एक ऐसी शिक्षाप्रद कहानी लेकर हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। आप सभी लोगों ने हमें ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए कोटिशः धन्यवाद और नमस्कार।

बुधवार 3 जून 2026 के इस सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की एक व्यापक जांच में कई विधवाओं, बुजुर्गों और संकटग्रस्त परिवारों से कथित ठगी का मामला सामने आया है। वाकवा निवासी 64 वर्षीय एक व्यक्ति पर भावनात्मक रूप से कमजोर लोगों का भरोसा जीतकर उनसे बड़ी रकम ऐंठने का आरोप है। वर्ष 2026-2027 का राष्ट्रीय बजट आगामी 19 जून को राष्ट्रीय सभा में पेश किया जाएगा, जिसे इस वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक घोषणाओं में से एक माना जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार सरकार के सामने आर्थिक पुनरुद्धार, सार्वजनिक ऋण नियंत्रण और कमजोर वर्गों को सहायता देने के लिए संतुलन बनाने की बड़ी चुनौती होगी। मॉरिशस ने अफ्रीका की सबसे अधिक औद्योगिकृत अर्थव्यवस्थाओं में अपनी मजबूत स्थिति बरकरार रखी है और एक नई सूचकांक में 5वां स्थान प्राप्त किया है। अफ्रीकी विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार देश उच्च मूल्य वर्धित यानी वैल्यू एडेड विनिर्माण निर्यात में सक्षम है, हालांकि औद्योगिक क्षेत्र के सामने कुछ चुनौतियां भी बनी हुई हैं। दक्षिण मॉरिशस के दक्षिण में पोनाचुरा क्षेत्र में 3 किलोमीटर लंबी नई प्राकृतिक वॉकिंग ट्रैक विकसित की गई है जो ले बुशों सार्वजनिक समुद्र तट से जुड़ती है। ये पहल वर्जीनिया के पाजियोमेट्रिक क्षेत्र में चल रहे पुनर्नवीकरण कार्यक्रम के साथ मिलकर पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को और मजबूत करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की राजधानी नई दिल्ली के मालवीय नगर क्षेत्र में आज एक इमारत में भीषण आग लगने से कम 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए।

0: इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की एक व्यापक जांच में विधवाओं, बुजुर्गों तथा बीमारी और शोक से प्रभावित परिवारों को कथित रूप से निशाना बनाए जाने का मामला सामने आया है। वक्वा सुल्फिकर नंबर 3 क्षेत्र के 64 वर्षीय निवासी हेमराज मनोहर पर आरोप है कि उन्होंने दर्जनों कथित पीड़ितों की भावनात्मक कमजोरियों का फायदा उठाकर उनसे बड़ी रकम हासिल की। आज बुधवार को उन्हें औपचारिक चेतावनी के तहत पूछताछ के लिए बुलाया गया। अधिकारियों के अनुसार पूछताछ पूरी होने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। मामले की जांच जारी है और फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन इस कथित वित्तीय धोखाधड़ी के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल कर रहा है। देश के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक आयोजनों में से एक के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि बजट 2026-2027 आगामी शुक्रवार 19 जून को राष्ट्रीय सभा में प्रस्तुत किया जाएगा। वर्तमान आर्थिक और राजकोषीय चुनौतियों के बीच इस बजट को लेकर काफी उम्मीदें जताई जा रही हैं। आर्थिक पुनरुद्धार, सार्वजनिक ऋण के प्रबंधन और कमजोर वर्गों को समर्थन देने जैसे प्रमुख मुद्दों के बीच सरकार को संतुलन साधना होगा, ऐसा अर्थशास्त्रियों का कहना है। विशेषज्ञों के अनुसार ये बजट देश की आर्थिक दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और आने वाले वर्षों की विकास रणनीति को प्रभावित करेगा।
1: Madam Speaker, I move for the adjournment of the House to the 19th of June 2026 at 5 p.m.
2: मंगलवार की रात राष्ट्रीय सभा के कार्यों के स्थगित किए जाने पर सभी लोगों का ध्यान अगले सत्र पर केंद्रित। शुक्रवार 19 जून 2026 को अगला राष्ट्रीय बजट प्रस्तुत किया जाएगा, प्रधानमंत्री ने इसकी पुष्टि की। प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री डॉ. नवेंद्र राम गुलाम की ओर से शाम 5 बजे इसकी शुरुआत होगी। अर्थशास्त्री डॉ. भवि चक्रनाथ ने कहा,
3: véritable manche de manœuvre pour résister davantage sur réallocation de ressources, l'amélioration de l'efficacité des dépenses publiques. Et me penser, Bizin mobilise plus beaucoup l'investissement privé.
2: आर्थिक प्रेक्षकों के अनुसार जिस परिप्रेक्ष्य में ये बजट पेश किया जा रहा है वो भी अहम है। अर्थशास्त्री एवं पूर्व बैंकर इब्राहिम मालिक ने कहा,
4: Avec ce qui s'est passé partout dans le monde, surtout au Moyen-Orient et dans un contexte de consolidation fiscale et économique au niveau local, qui a commencé avec le budget de l'année dernière, vous pensez que tout le monde mauricien en ce moment perd un zut, qui va être priorité budgétaire de cette année, avec un intérêt très particulier par rapport à ce qui pourrait arriver au niveau du pouvoir d'argent avec l'inflation qui peut tomber nous.
2: वित्त मंत्रालय के एक बजट सर्कुलर पर वित्तीय सचिव आनंद सिंह आचार्य के हस्ताक्षर हैं, जिस पर 2026-2027 कार्रवाई के प्रमुख मुद्दों का उल्लेख है। सरकार ज्यादा खर्च करने के बजाय बेहतर तरीके से खर्च करते हुए आर्थिक वृद्धि प्रोत्साहित करना चाहती है, आर्थिक स्तंभ डाइवर्सिफाई करना चाहती है, सोशल इंक्लूजन बरकरार रखना चाहती है और साथ में उत्पादकता मूल ढांचों में निवेश करना चाहती है, जलवायु मजबूती को सुदृढ़ करना चाहती है और सार्वजनिक वित्तीय स्थिति में भी सुधार लाना चाहती है। गवर्नमेंट हाउस के अर्थशास्त्रियों के मुताबिक संक्षेप में बजट 2026-2027 की फिलोसॉफी में बजट संबंधी अनुशासन का पालन करते हुए सार्वजनिक कर्ज को कम करते हुए टिकाऊ अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाना है, खरीद शक्ति को सुरक्षित रखना है और जरूरतमंदों का समर्थन करना है।
0: कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल कल रात 8 बजे के बाद राष्ट्रीय सभा में संशोधनों के साथ पारित कर लिया गया। विधेयक पर समिंग अप के दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने देश की चुनावी प्रणाली की समीक्षा और उसमें सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एक आधुनिक मॉरिशस गणराज्य के प्रभावी संचालन के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं और संवैधानिक ढांचे का समय समय पर पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि प्रस्तावित आयोग देश की शासन व्यवस्था और चुनावी प्रणाली को और अधिक आधुनिक, समावेशी तथा प्रभावी बनाने के लिए सुझाव प्रस्तुत करेगा। प्रधानमंत्री सुनते हैं।
1: Je dirais, Madame la Présidente, le projet de loi traduit directement un engagement pris dans le programme gouvernemental 2024-2029।
2: प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा, इस विधेयक के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप

0: से सरकारी कार्यक्रम 2024-2029 में प्रस्तावित कदमों के अमल में लाए जाने का प्रावधान है। इस विधेयक के तहत एक स्वतंत्र आयोग कायम किए जाने की बात का उल्लेख है। हमारे सर्वोच्च कानून हमारे संविधान पर फिर से गौर करने की बात भी कही गई है। प्रमुख सुधार प्रस्तावित हैं जिन पर यही पर वोट डाला जाएगा। यही उम्मीद है कि हमारी स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ से पूर्व सुधार हो जाए।
1: राष्ट्रीय सभा में कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल पर बहस जारी रही, जिसमें सरकार और विपक्ष दोनों ने अपने अपने तर्क रखे। प्रधानमंत्री के अंतिम संबोधन से पहले मंत्रियों, विपक्ष और अटोर्नी जनरल सहित कई सदस्यों ने विधेयक के महत्व और प्रभाव पर विचार व्यक्त किए।
2: पर्यावरण मंत्री के अनुसार इस सरकार को भविष्य की पीढ़ियों के हित में बड़े संरचनात्मक बदलाव लाने के स्पष्ट मैंडेट के साथ चुना गया है। उनके मुताबिक संसद में वर्तमान में विचार किए जा रहे ये विधेयक इसी सुधारवादी दृष्टिकोण का हिस्सा है।
3: La commission sera chargée d'examiner comment mieux protéger les droits fondamentaux, y compris ce qu'on appelle les droits de nouvelle génération. Le projet de loi mentionne explicitement les droits de la nature. C'est une vision audacieuse, progressiste, en phase avec les grandes réflexions internationales sur notre rapport à la planète.
2: विपक्ष की ओर से पुल बेरांजे का मानना है कि आयोग की सिफारिशों को लागू करने के दौरान समय कारक बेहद महत्वपूर्ण होगा।
4: La première question qui se pose est de savoir combien de temps prendra la commission que nous allons mettre sur pied pour faire ses recommandations au gouvernement. Et on peut s'attendre à ce que le gouvernement actuel prenne autour d'un an avant d'approuver telle ou telle recommandation de la commission constitutionnelle. En d'autres mots, il y a un risque. Un an et demi déjà depuis les dernières élections générales qu'aucun amendement ne soit apporté à notre constitution d'ici les prochaines élections générales.
2: वहीं अटोर्नी जनरल ने किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति को दूर करने का प्रयास किया। गाविन ग्लोवर ने स्पष्ट किया कि इस विधेयक के माध्यम से संविधान में सुधार लाने का कभी कोई इरादा नहीं था।
5: Not a single comma, not a single word of our constitution is being amended tonight. This bill only establishes an independent commission to consult the nation and to take expert advice and to recommend. The report of the proposed amendments will return to this House and every member will have his or her say and vote thereon.
2: आवास एवं भूमि मंत्री के अनुसार ये विधेयक मुख्य रूप से उन अनेक अन्यायों को दूर करने में मदद करेगा जिनका सामना मॉरिशसवासी कर रहे हैं।
6: The everyday Mauritian in whose name we sit in this chamber. To the student preparing for their exams. This bill is about your future. The Commission will examine the constitutional right to quality education and a freedom of information principle that will let you request the data shaping the decisions affecting your life. This bill is about your dignity at work. The Commission will examine enforceable rights to health, social protection and fair conditions. The expanded public bodies appeal tribunal will mean that when you are passed over for a promotion you earned, you will have a real forum to demand justice, not a closed door.
2: प्रधानमंत्री के समिंग अप से पहले अंतिम वक्ता उप प्रधानमंत्री आर्यन नावामारी थी। उन्होंने मॉरिशस जैसे बहुसांस्कृतिक देश में राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान सामूहिक निर्णय प्रक्रिया के महत्व पर जोर दिया।
7: In a society as diverse and plural as ours, it is important that the process leading to the election, the choice of our head of state, inspires confidence across all sections of the population. Madam Speaker, some voices and media narratives have attempted to attach the label of a second republic to the process of the possible introduction of an electoral college for the election of the president.

0: कुल मिलाकर कल की संसदीय बैठक के दौरान लगभग 10 सांसदों ने इस मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त किए, जिसके बाद प्रधानमंत्री का समिंग अप रहा।
1: राज्यसभा में कल मंगलवार को प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री नवीन राम गुलाम ने सप्लीमेंटरी अप्रोप्रिएशन बिल 2024-2025 नंबर 2 को प्रथम पढ़त में प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान कुछ सरकारी विभागों और सेवाओं के लिए संसद द्वारा पहले से स्वीकृत राशि के अतिरिक्त व्यय की अनुमति प्राप्त करना है। इस बीच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर राज्यसभा में बहस जारी है। और जैसे कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे, फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की एक व्यापक जांच में विधवाओं, बुजुर्गों और बीमारी तथा शोक से प्रभावित परिवारों को कथित रूप से निशाना बनाए जाने का एक मामला सामने आया है। वाकवा सुल्फिगनो नंबर 3 क्षेत्र के 64 वर्षीय निवासी हेमराज मनोहर पर आरोप है कि उन्होंने दर्जनों कथित पीड़ितों की भावनात्मक कमजोरियों का फायदा उठाकर उनसे बड़ी रकम हासिल की है। आज बुधवार को उन्हें औपचारिक चेतावनी के तहत पूछताछ के लिए बुलाया गया था।
2: शुरुआत में मामला व्यक्तिगत शिकायतों से संबंधित था, लेकिन बाद में ये बात सामने आई कि इन पिछले वर्षों में जरूरतमंद लोगों का विश्वास तोड़ा गया। असल में 64 वर्षीय हेमराज मनोहर को बुधवार 3 जून को फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की ओर से एक तथाकथित मनी लॉन्डरिंग और धोखाधड़ी के मामले की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। जांचकर्ताओं के मुताबिक सुल्फिगनो वाकवा के रहने वाले व्यक्ति ने 2017 के जून महीने और 2024 के मार्च महीने के बीच बुजुर्ग महिलाओं, विधवाओं और गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों या जिन लोगों के पति या जिनकी पत्नी गुजर गए हों, उन लोगों को निशाना बनाया और वो भारी रकम ऐंठने में कामयाब हुआ।
3: La première fois, le 7 septembre 2022, mon voisin 3 millions. Lui vient avec moi dans la banque pour faire cette transaction-là et Lynn et moi écrit comme si on prête l'argent. Après, on envoie un message quand ou pour retourner au casque. Lynn et moi ont besoin verse un nouveau 3 millions parce qu'il n'est pas assez pour faire sa transaction-là. Pour au total 7,7 millions. Et là, Lynn allait et depuis, nous pas trop mis.
2: कुछ लोगों ने उन पैसों का इस्तेमाल किया है जो अपने पति के देहांत में मिला हो। पैसे को एक फंड में जमा किया गया जिसका प्रयोग खेल संबंधी गतिविधियों में लगाया गया। हेमराज मनोहर के घर पर जब छापा मारा गया तब एफसीसी के अफसरों ने एक मोबाइल फोन जब्त किया, साथ में एक टेजर भी। लेकिन प्राप्त जानकारियों के अनुसार संदिग्ध व्यक्ति ने बताया कि उसका कोई फोन नहीं, जिसके बाद उसने जांचकर्ताओं को बताया कि उसके पलंग के नीचे एक हादिया आईफोन छुपाया गया है। अब तक 11 लोगों ने आयोग के सामने अपने बयान दे दिए हैं, जबकि 40 से अधिक क्षतिग्रस्त लोगों को पहचान लिया गया है। अब जांचकर्ता फाइनेंशियल फ्लो का पता लगाने की कोशिश कर रही है और साथ में संबंधित कुल रकम निर्धारित करने की भी कोशिश कर रही है जो 30 मिलियन रुपये से अधिक की हो सकती है।
1: और जैसे कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे कि कल राष्ट्रीय सभा में प्रथम पढ़त में प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने सप्लीमेंटरी अप्रोप्रिएशन बिल 2024-2025 नंबर 2 को प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान कुछ सरकारी विभागों और सेवाओं के लिए संसद द्वारा पहले से स्वीकृत राशि के अतिरिक्त व्यय की अनुमति प्राप्त करना है। इस बीच कॉन्स्टिट्यूशनल बिल पर राष्ट्रसभा में बहस जारी है। इस पर प्रस्तुत है ये रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्री रितेश रामफल ने याद दिलाया कि मॉरिशन संविधान नागरिकों की बुनियादी स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करते हुए कई दशक पार कर पाया है।
4: People should ask the question, why are we doing this? Why have we taken such a decision? Because little did we realize that one day there will be a tyrannical government who will rule and who will even dare to abuse people's right.
2: वित्तीय सेवा मंत्री ज्योति जितन ने कहा कि मजबूत संस्थाओं से देश समृद्ध बनता है और कि इसके आधुनिकीकरण पर विचार करना जायज है। ऐसे में संविधान पर गौर करने की अहमियत आन पड़ती है।
5: The true strength of a constitution is its ability to remain relevant in a changing world.

0: Nations too must periodically reflect on whether their constitutional arrangements remain adapted to the realities of their time.
1: समाज कल्याण मंत्री अशोक सुबो ने कहा कि प्रस्तावित सुधारों में ऐसे औजार हैं जिनसे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए अतिरिक्त इंक्लूजन और सामाजिक न्याय प्राप्त हो।
2: Shall we remain a community-based electoral system based on community classification of 1972, or shall we move towards another electoral system which will guarantee the diverse political representation via a dose of proportional representation?
1: राष्ट्रीय मूल ढांचा मंत्री अजय गणेश ने इस बात पर जोर दिया कि लोकतांत्रिक गारंटी बढ़ाना है ताकि कोई भी सरकार भविष्य में संवैधानिक सिद्धांतों के साथ आजादी न ले सके।
3: इट इज अबाउट करेक्टिंग इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस दैट हैव बीन एक्सपोज्ड ओवर टाइम। इट इज अबाउट मॉडर्नाइजिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड इट इज अबाउट एंश्योरिंग दैट नो गवर्नमेंट रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल कलर can ever take liberties with democratic institutions again.
1: कृषि उद्योग मंत्री डॉ. अरविंद बुलेट ने सुदृढ़ मैकेनिज्म के हक में बात की ताकि चुनाव प्रक्रिया की रक्षा की जा सके और राजनीतिक फाइनेंसिंग के अधिक पारदर्शिता प्रोत्साहित की जा सके।
4: We made a specific public commitment to appoint a constitutional review commission. The bill before this house today is the fulfillment of that commitment to the letter. We said we would do it. We are doing it.
5: गुश्ते सरकारी पाठशाला में आज सुबह संदिग्ध गैस रिसाव की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप किया। घटनास्थल पर पुलिस की विभिन्न इकाइयों के साथ साथ सामे और मॉरिशस फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज मौजूद थी। कुछ विद्यार्थियों को मौके पर ही प्राथमिक चिकित्सा दी गई जबकि अन्य को अस्पताल ले जाया गया। कुल 13 विद्यार्थियों को SSRN अस्पताल में भर्ती कराया गया जिनमें से 7 को निगरानी में रखा गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कथित गैस रिसाव स्कूल परिसर के भीतर से नहीं बल्कि उसके आसपास स्थित किसी स्थान से हुआ प्रतीत होता है। मामले की जांच के लिए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि कल से गुश्ते सरकारी पाठशाला में पढ़ाई पुनः सुचारू रूप से जारी रहेगी तथा प्रभावित बच्चों का स्वास्थ्य फिलहाल ठीक है। देश के दक्षिणी हिस्से में स्थित पो नेचुरल स्थल पर अब 3 किलोमीटर लंबी नई प्राकृतिक पैदल पथ यानी कि वॉकिंग ट्रैक विकसित की गई है जो लुबुशों के सार्वजनिक समुद्र तट से जुड़ती है। ये विकास वर्जीनिया क्षेत्र के पाजियोमेट्रिक में चल रहे पुनर्वनीकरण परियोजना के साथ समन्वय में किया गया है। ये कार्यक्रम वर्ष 2004 में शुरू किया गया था जिसके तहत अब तक 2500 से अधिक स्थानिक पौधों को रोपा गया है। इस परियोजना को कई मंत्रालयों और विभिन्न संस्थाओं के संयुक्त प्रयास से आगे बढ़ाया गया है और ये पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। इस पहल का औपचारिक शुभारंभ आगामी 5 जून को मनाए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर में भी जोड़ा गया है। और कूटनीति के अंतर्गत आज दोपहर पोर्ट लुइस के ट्रेजरी बिल्डिंग में कैथोलिक शिक्षा सेवा के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल के साथ मोसेनियर जोमिकल जॉन भी उपस्थित थे। इस बैठक में सिडेक के भविष्य पर चर्चा की गई जो जोसेस के अंतर्गत आने वाले कैथोलिक स्कूलों की पादरी शैक्षिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी संभालता है। चर्चा के दौरान मुख्य रूप से युवाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और शिक्षा प्रणाली से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक को शिक्षा और सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और आज रिजवी के सनातन वाटिका में मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन ने एक प्रेस सम्मेलन का आयोजन किया। फेडरेशन के सदस्यों ने रामायण और रिजवी में नए कन्वेंशन केंद्र के निर्माण के लिए भूमि पूजा के सिलसिले में गतिविधियों का ऐलान किया। इस पर याचना मिश्रा की रिपोर्ट।
6: सनातन वाटिका कन्वेंशन सेंटर के लिए भूमि पूजा 21 जून को होगी। एक प्रेस सम्मेलन के दौरान इसका ऐलान किया गया।
7: 21 जून को यानी कि सनातन वाटिका में यहां पर सनातन वाटिका कन्वेंशन सेंटर के शुभ आरंभ के लिए हम लोगों ने यहां पर एक भूमि पूजा का आयोजन किया है। सवेरे 9:30 बजे यहां पर

0: भूमि पूजा होगी।
1: मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल्स फेडरेशन की पहल पर कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जा रहा है।
0: पहली जो है रामायण गायन प्रतियोगिता जो मॉडर्न वर्शन में होगी, और ये हमारे जो नौजवान हैं जो कॉलेज में हैं उन लोगों के लिए है। दूसरी पारंपरिक यानी कि ट्रेडिशनल नॉर्मल वर्शन और ट्रेडिशनल चौताल वर्शन, तीसरी मॉडर्न क्लासिकल वर्शन पर होगी, चौथा जो है गीत गवाय प्रतियोगिता, पांचवी है इलोकेशन कंपटीशन कहते हैं, चौथा है चित्रकला प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी जो हम कहते हैं क्विज कंपटीशन, इसमें भी ये यंगस्टर्स के लिए हैं।
1: मॉरिशस के लिए अगले हिंदू कैलेंडर की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। इसके अलावा गंगातलाव स्पिरिचुअल सेंचुरी को लेकर कुछ निर्देशों पर भी फेडरेशन द्वारा काम किया जा रहा है।
2: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमरीकी सेना ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा के तहत हमले किए और जहाजों तथा खाड़ी देशों की ओर दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराया। अमरीकी सेंट्रल कमान के अनुसार स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में स्थित कश्म द्वीप पर किए गए ये हमले मध्य पूर्व में ईरान की ओर से कथित हमलों की कोशिशों के जवाब में किए गए। ईरान ने कहा है कि उसने जवाबी कार्रवाई में एक क्षेत्रीय देश में मौजूद अमरीकी ठिकानों और हेलीकॉप्टरों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया है। और दूसरी ओर भारत की राजधानी नई दिल्ली के मालवीय नगर क्षेत्र में आज बुधवार को एक इमारत में भीषण आग लगने से कम 21 लोगों की मौत हो गई जबकि अन्य कई घायल हुए हैं। पुलिस के अनुसार इमारत के भूतल यानी ग्राउंड फ्लोर पर एक रेस्टोरेंट और ऊपरी मंजिलों पर एक होटल संचालित किया जा रहा था। इस पर और दुनिया भर की अन्य खबरों पर ये रिपोर्ट।
3: दिल्ली के मालवीय नगर में आग लगने की घटना सामने आई है जिसमें कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई है। आग पर काबू पा लिया गया है लेकिन बचाव और खोज कार्रवाई जारी है। ये घटना दक्षिण दिल्ली की एक बहुमंजिला इमारत में लगी जिसका नाम फ्लरिश स्टे बीएनबी है। मारे गए अधिकतर लोग विदेशी थे। रेस्टोरेंट के बेसमेंट से करीब 37 लोगों को बचाया गया है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस त्रासदी पर शोक व्यक्त किया और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड से मरने वालों के रिश्तेदारों को 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है।
2: बढ़ते हैं हम मौसम संबंधी जानकारियों की ओर, पूजा हस्ताबीर के साथ।
4: हमारे इलाके पर हल्की और गर्म हवाएं बह रही हैं। उत्तर की ओर से आ रहे बादलों का असर हमारे स्थानीय मौसम पर रहा है। पूर्वानुमान रात को तथा कल सुबह बादल घिरे रहेंगे। देश के उत्तर पूर्व और ऊंचाइयों पर रह रहकर वर्षा होगी। कल दिन के दौरान भी बादल कुछ छाए रहेंगे। कुछ इलाकों में बारिश के साथ बादल भी गरजेंगे। हवा हल्की रहेगी। दक्षिणी पूर्वी लगूनों में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। जनता से समुद्र में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 16 से 18, अधिकतम तापमान 23 से 25, साहली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22, अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह सूर्योदय 6:39 पर होगा।

इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का सहयोग प्राप्त हुआ, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। कंसल पर हमारे सहयोगी लुडोविक हैं, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, बढ़ते हैं अब हम शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। रागुलेन ल्योशेतेरोज में 78 साल के 78 ईयर्स ओल्ड के श्री राजमन रागू जिन्हें राजमन के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके बेटे परमानंद रागू के घर ल्योशेतेरोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिश्तिया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। कमीशन टुमोरो 1 PM मोसलमो बसावन बुआपिन

0: Li tirujme monselmon basawan bois pignolé tirujme unasi salki amina bi olkori amina bi olkori jinne mina ke naam se log zyada jante the intikal kar gayi hain inka janaza aaj raat 9 baje is shok samachar ek bar phir sun lete hain Mousselman Basawan, Bois Pignolé, Terre Rouge, mais Navasi Sal, qui 89 years old, qui Aminabi Olkori, Jinemina, qui dame ses blogs à d'agente, et hint calcargé, hein, kajanaza, ajrat, nobaji, inki batiji, Yasmin, Bibi, Komal, ki makan, Bois Pignolé, Terre Rouge, se utaka, dafnani, ki li, bois moshoka, kabrasan, li, jaga. Funeral tonight at 9 p.m. रॉयल रोड कोचिमलितिया में रॉयल रोड कोचिमलितिया में 75 साल की 75 इयर्स ओल्ड की श्री जगदत सिंह संदुगाम जिन्हें जग के नाम से लोग ज्यादा जानते थे और जो पहले बायवन कॉलेज और बॉम्बू एसएसएस में एजुकेटर थे की मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल सुबह 11:30 बजे उनके घर कोचिमलितिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए विल्मे की शमशान भूमि ली जाएगी कमीशन टुमारो एट 11:30 AM मोगल रोड रिविया जुरांपा में मोगल रोड रिविया जुरांपा में 92 साल की 90 इयर्स ओल्ड की बीबी अमीना धर्मन पैदाश नाम कुदाबकस और जिन्हें मीना के नाम से लोग ज्यादा जानते थे इंतकाल कर गई है इनका जनाजा आज रात 8:30 बजे इनके बेटे रफीक धर्मन के मकान रिविया जुरांपा से उठाकर दफनाने के लिए पॉइंट दे लास्को का कब्रस्तान ले जाया जाएगा फ्यूनरल टुनाइट एट 8:30 PM रू गालिया कास्टेल में 54 साल के 54 इयर्स ओल्ड के श्री उत्तम दत्त सामनाथ जिन्हें प्रीतम के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल सुबह 11 बजे उनके घर कास्टेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अलीब्रियों की शमशान भूमि ले जाएगी कमीशन टुमारो एट 11 AM गांधी रोड एनएस फ्लोरेंट बेलिया में 52 साल की 52 इयर्स ओल्ड की श्रीमती देवयानी लक्ष्मण पैदाश्रम जहाजिया जिन्हें बबीता के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी उनके पति विनोद श्याम लक्ष्मण के घर एनएस फ्लोरेंट बेलिया से उठाकर सुबह 11:30 बजे अंतिम संस्कार के लिए बोशों की शमशान भूमि ले जाएगी कमीशन टुमारो एट 11:30 AM काना अवेन्यू कैथ्रोकोको में 80 साल के 80 इयर्स ओल्ड के श्री हरिप्रसाद रामित जिन्हें महाराज तैयर के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल दिन के 2 बजे उनके बेटे रामित जयदत्त के घर कैथ्रोकोको से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की शमशान भूमि ली जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 2 PM बेलेक्स हीथ कैंट यूके में 74 साल के 74 इयर्स ओल्ड के श्री जयराज जीवन जिन्हें अनिल के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे और जो पहले टैगोर रोड फोंजसाक के रहने वाले थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी शुक्रवार को उनकी पत्नी अनुराधा जीवन के घर बेलेक्स हीथ कैंट यूके से उठाकर यूके समय अनुसार शाम 3 बजे थेम्स व्यू क्रिमेटोरियम ले जाएगी क्रिमेशन ऑन फ्राइडे एट 3 PM यूके टाइम शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है
1: NBC Play, NBC Radio.tv. You're listening to RM3 Radio Man.

0: तो चलिए दोस्तों, शाम के 6:36 और लेकर आए हैं प्रोग्राम नई सोच। प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। जुड़े हुए हैं आप RM3 रेडियो मनोरंजन के साथ और मैं हूं परी, आपका साथ निभाऊंगी अभी से लेकर रात के 9 तक। हमारा ये जो शो है नई सोच, एक ऐसा सफ़र जहां हम बात करते हैं ज़िंदगी को थोड़ा सा और बेहतर, थोड़ा खूबसूरत और एक ऐसा नज़रिया जो ज़िंदगी को एक पॉजिटिव रुख दे। सो यहाँ पर अगले कुछ मिनटों तक हम बात करने वाले हैं पॉजिटिविटी की, उम्मीद की और उन छोटी छोटी बातों की जो जिंदगी को और भी बेहतर बनाती है।
1: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
0: और जी हाँ दोस्तों, जिंदगी को सबसे ज्यादा बेहतरीन बनाने के

लिए अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है आपकी स्माइल, आपकी मुस्कुराहट। कहते हैं ना, ये एक ऐसा कर्व है जो जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक कर ही देता है। और ये भी तो हमने देखा है कि कभी अगर आप लो फील कर रहे हैं, कभी उदास फील कर रहे हैं, बस 20 सेकंड्स तक आप ऊपर देखिए, आसमान में देखिए और स्माइल कीजिए। यू विल सी द डिफरेंस एंड यू विल फील दैट पॉजिटिविटी, यू विल फील दैट हैप्पीनेस। तो लाइफ में सिचुएशंस तो आती जाती रहेंगी, लेकिन आपकी मुस्कुराहट हमेशा बनाए रखिए। एक प्यारा सा शो आपके नाम लेकर आए हैं नई सोच। मैं हूं परी आपके साथ रात के 9 बजे तक ऑन रेडियो मनोरंजन। आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5250602000 पर।

0: नहीं सो। तो चलिए दोस्तों, हमारा ये प्रोग्राम नई सोच बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम है, क्योंकि होता है ना ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों से आप लड़ते होते हैं, जूझ रहे होते हैं, लेकिन बस अगर कोई एक इंसान ऐसा मिल जाए जो शायद आपके दिल के उस कोने को छू ले जहाँ पर आपको वो हौसला मिल जाए, वो एक बूस्ट मिल जाए कि आपको भी लगे कि कोई बात नहीं, अभी उतनी देर कहाँ ही हुई है, एवरी डे आप कुछ ना कुछ अचीव ज़रूर करते हैं। और ये भी है ना दोस्तों कि आजकल सोशल मीडिया पर इतनी ज़िंदगी लोगों की सब कुछ परफेक्ट लगती है, यानी कि जो भी हम देखते हैं कि कोई इतने ट्रिप्स कर रहा है, कोई इतना ट्रैवलिंग कर रहा है, कोई नई गाड़ी खरीद रहा है, कोई नया घर खरीद रहा है, एंड कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि क्या हम कहीं पीछे छूट रहे हैं। लेकिन सच कहें तो हर इंसान एक अलग रेस में लगा है। आपका चैप्टर 2 किसी और के चैप्टर 20 के साथ कंपेयर नहीं हो सकता, इसीलिए अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट कीजिए। छोटी जीत भी जीत ही होती है, छोटी सी अचीवमेंट भी अचीवमेंट ही होती है। जैसे हम कहते हैं कि लाइफ कैन नॉट बी कंपेयर्ड, किसी की जिंदगी, किसी का एक अचीवमेंट वो उनकी ज़िंदगी की कहानी है, और आपका अचीवमेंट आपकी कहानी, ये आपकी ज़िंदगी को बयां करती है।
1: नहीं सो।
0: जैसे हम कहते हैं कि अगर हम खुद पर भरोसा रखते हैं तो फिर लाइफ में सब कुछ अच्छा ज़रूर होता है, और वो एक बूस्ट, वो एक किक जो लाइफ में हम को चाहिए होती है, हर किसी को चाहिए होती है, जहाँ पर बस आपको वो मोटिवेशन मिल जाए कि जो भी आप कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो बस दोस्तों, अगर आप इस वक्त हमें सुन रहे हैं तो यही कहना चाहते हैं कि आप जहाँ तक पहुँचे हैं वो बहुत बड़ी बात है। आप ही को पता है कि ना जाने कितने उतार चढ़ाव पार करते आप यहाँ तक पहुँचे हैं। सो दैट्स अ ब्यूटिफुल लाइफ और दैट्स ब्यूटिफुल अचीवमेंट्स जो आपने किए हैं अभी तक। सो खुद पर भरोसा रखिए और ज़िंदगी के इस पहिए को ऐसे ही चलने दीजिए। सो इसी बात के बाद ये गाना लेकर आए हैं हम, दैट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, जो जीता वही सिकंदर। वैसे तो फिल्म के टाइटल में ही जोश और मोटिवेशन है, लेकिन गाना भी कुछ ऐसा ही है। जिंदगी में सही वक्त आता जरूर है, और जो भी उतार चढ़ाव है जिंदगी का हिस्सा है। सो लेट्स सेलिब्रेट लाइफ, लेट्स लिव ईच एंड एवरी मोमेंट जो आपको मिलता है। मैं हूँ परी आपके साथ, इट्स टाइम फॉर नई सोच ऑन रेडियो मनोरंजन।

You're listening to RM3 Radio Manoranjan. तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए तो हमारा ये प्रोग्राम बढ़ रहा है अगले प्रोग्राम की ओर। अंत में बस यही कहेंगे कि बादल कितने भी गहरे क्यों ना हो, आसमान कभी अपनी रोशनी नहीं खोता। सो इसी पॉजिटिव नोट के साथ बस आगे एक प्रोग्राम की ओर बढ़ रहे हैं, जहां पर कुछ रोमांटिक गाने आपके लिए लेकर आएंगे। तो बस दोस्तों यही कहेंगे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन को नई सोच के साथ जीते रहिए। अभी के लिए आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं हूं परी आपके साथ रेडियो मनोरंजन। ब्यूटीफुल सॉन्ग आप सभी के नाम।

तो चलिए दोस्तों शाम के 7 बज चुके हैं बुधवार की ये खूबसूरत सी शाम जहां पर लेकर आए हैं प्रोग्राम दिलों की आवाज मैं हूं परी आपके साथ खूबसूरत रोमांटिक गाने आपके नाम इस दिन को आगे बढ़ा रहे हैं यानी कि ढलती शाम में कुछ गाने ऐसे जो आपके दिल को सुकून पहुंचाएं प्यारे गीतों के साथ आपका एंटरटेनमेंट आपका मनोरंजन ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन मैं हूं परी आपके साथ रात के 9 बजे तक आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस 5250620000 पर

0: RM3 Radio.
1: तो जी हाँ दोस्तों, ब्यूटीफुल गीतों का कारवां आपके नाम. इट्स टाइम फॉर दिलों की आवाज़. मैं हूँ परी आपके साथ है बुधवार की ये शाम जहाँ पर आप हमारे म्यूजिकल हमसफर बने हैं. तो कोशिश यही है दैट इन गानों के साथ आपका दिल भी बहल रहा होगा. एक प्यारा सा गाना अमित कुमार उदित नारायण की आवाज़ें. सुदेवी जी जुड़ गई हैं हमारे साथ वाकवा से, कहती हैं गुड इवनिंग और प्रोग्राम को एंजॉय कर रही हूँ. गाना डेडिकेट करना चाहती हूँ ट्रियोले की दीदी ललिता और खुशहाल परिवार के नाम आत्माराम भैया, दीदी सुनीता, शोभा मालिंगा के और सभी राम रतन परिवार के नाम भी. खूबसूरत सा गीत आप सभी के नाम जो इस वक्त बने हैं हमारी हमसफर, हमारे सभी लिसनर्स के नाम. बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, चुना है आपने RM3 रेडियो मनोरंजन. तो बस आपका मनोरंजन ऐसे ही हम करेंगे रात के 9 बजे तक. मैसेजेस डेडिकेशंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो 52506200 5250600 इसी नंबर पर हो रहा है आपका इंतजार.

तो चलिए दोस्तों कुछ प्यारे गाने आपके नाम हम पेश कर रहे हैं आज का हमारा ये जो शो है बस रोमांटिक गानों के नाम दिलों की आवाज प्रोग्राम जहां पर आपके दिल के साथ हम कनेक्शन बना रहे हैं इन गीतों के साथ गुलशन जी साथ दे रहे हैं आप भी और कहते हैं दैट गाना हो जाए फॉर ममा प्रभा सिस्टर दीक्षिता सभी भोला परिवार के नाम साथ ही यहां पर अर्ज किया है दैट्स ओनली फॉर आयशा कहते हैं कि कुछ रिश्ते वक्त पर बात ना होने की वजह से खत्म हो जाते हैं इसलिए कुछ भी करो जितना बिजी रहना है रहो पर उसका भी ख्याल रखो जो तुम्हारे कॉल और मैसेज का हर वक्त इंतजार करता हो दैट्स रियली स्वीट और ये तो हम जानते हैं दैट रिश्तों को अगर मजबूत बनाना है तो फिर एफर्ट्स दोनों तरफ से लगते हैं एक दूसरे को स्पेशल फील करवाते रहिए और लाइफ में कितना भी वक्त क्यों ना बीत जाए जो इंसान आपका ख्याल रखता है जो इंसान आपके बारे में सोचता है उसका सबसे पहले आप सोचे सो वेल आयशा दिस वन गोज आउट फॉर यू स्पेशली दैट्स कमिंग फ्रॉम गुलशन भेजा है आपके लिए बहुत सारा प्यार और सभी हमारे दोस्त जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं रेडियो मनोरंजन पर लेकर आए हैं दिलों की आवाज़ प्रोग्राम मैं हूं परी आपके साथ रात के 9 बजे तक

You're listening to RM3 Radio Manoranjan. So, well, real life से real life तक का सफर अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय उन्हीं पर पिक्चराइज्ड ये ब्यूटीफुल गाना आया रहमान चिन्मय श्रीपदा की आवाजें और उसके बाद लेकर आए हैं अरिजीत सिंह की मैजिकल वॉइस आपके लिए राइट हियर ऑन द वेव्स ऑफ RM3 रेडियो मनोरंजन. रेहाना जी फिनिक्स से हमारा साथ दे रहे हैं आप. प्यार भरा आदाब आपको भी. साथ देने के लिए शुक्रिया. रेडियो मनोरंजन को चुनने के लिए शुक्रिया. मैं हूं परी आपके साथ लेकर आए हैं प्रोग्राम दिलों की आवाज. साथ रहेगा आपका और मेरा रात के 9 बजे तक. फॉर नाउ वी हैव दिस रोमांटिक ब्यूटीफुल सॉन्ग आप सभी के नाम. एंजॉय दिस वन.

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: और चलिए दोस्तों कुछ प्यारे गानों के साथ आपके म्यूजिकल हम सफर हम बने हैं ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन टाइम फॉर दिलों की आवाज़ अभी से लेकर रात के 9 बजे तक ऐसे ही कुछ प्यारे रोमांटिक गाने आपके नाम मैं हूं परी आपके साथ रात के 9 बजे तक आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस 5250620025206200 पर हो रहा है आपका इंतजार मुकेश अग्रवाल अलका याग्निक की आवाज़ें एक खूबसूरत सा गाना आप सभी के नाम

So, चलिए ऐसे ही कुछ प्यारे गाने अगर आप सुनना चाहते हैं, you at the right place, RM3 Radio मनोरंजन. अभी के लिए यहाँ पर मिस्टर रफिक मोहित साथ दे रहे हैं तायाक से. शास्त्री बोनमली हमारे साथ जुड़े हुए हैं मौतवा से. सो गाना आपके नाम. थैंक यू सो मच. मैं हूँ परी आपके साथ रात के 9 बजे तक. अनीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आप फ्लक एंड फ्लक से. और थैंक यू सो मच कहते हैं गाना हो जाए एक फ्रेंड, सभी परिवार, सभी अपनों के नाम जो इस वक्त कनेक्टेड हैं RM3 Radio मनोरंजन के साथ. सो वी हैव दिस ब्यूटिफुल गाना आप सभी के लिए. शाम से रात का वक्त हो रहा है और गानों का कारवां ऐसे ही जारी है. कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आपके नाम. चलिए दोस्तों अभी के लिए एक और प्यारा सा गाना, उदित नारायण लता मंगेशकर की आवाजें, फिल्म दिल तो पागल है. हो जाए आप सभी के लिए जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं. आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5250 6200 5250 6200 पर मैं कर रही हूँ आपका इंतजार.

You're listening to RM3 Radio Manoranjan. तो चलिए दोस्तों, एक और प्यारा सा गाना उदित नारायण की आवाज़, फिल्म है दिल तो पागल है, शाहरुख खान माधुरी दीक्षित की ब्यूटीफुल केमिस्ट्री. ये गाना पिक्चराइज्ड हुआ ऑन करिश्मा कपूर एंड शाहरुख खान, जहां पर शाहरुख खान एक्सप्लेन करते हैं कि उनकी जो ड्रीम गर्ल है वो कैसी होगी. तो यहाँ पर ऐसे ही कुछ प्यारे गाने आपके लिए लेकर आए हैं आपकी इस रात को और भी खास और स्पेशल बनाने. मैं हूँ परी आपके साथ, दिलों की आवाज़ प्रोग्राम ऑन रेडियो मनोरंजन.

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: सो वेल, मिलन अभी आधा अधूरा है एंड ऐसे ही कुछ प्यारे गाने आपके लिए हम लेकर आए हैं. विवाह फिल्म के गाने के बाद टाइटल ट्रैक कभी अलविदा ना कहना. कहते हैं ना दोस्तों कि जिंदगी के इस सफर में न जाने हम कितने लोगों से मिलते हैं. अनगिनत लोग हमारे जिंदगी का हिस्सा बनते हैं. कुछ हम सफर बन जाते हैं, कुछ जिंदगी में एक खास जगह बनाकर चले जाते हैं. लेकिन लाइफ गोज ऑन और लोग जो हैं वो ज़िंदगी में आते हैं, सिखा कर जाते हैं, कुछ ज़िंदगी के खूबसूरत मायने समझा कर जाते हैं, तो कभी कभार कुछ लोग आंखें नम करके चले जाते हैं. इस वक्त आप हमारा साथ दे रहे हैं तो कोशिश यही है कि आपके हमसफर हम बने रहें. इन कुछ प्यारे गीतों के साथ आपके दिल को छूने की कोशिश हम भी कर रहे हैं. सो इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल टाइम जो आप हमें इस वक्त दे रहे हैं ऑन रेडियो मनोरंजन. मैं हूं परी आपके साथ रात के 9 बजे तक लेकर आई हूं प्रोग्राम दिलों की आवाज़. दिल को छूने वाला एक खूबसूरत सा गीत आप सभी के नाम. एंजॉय दिस वन.

0: दिलों की आवाज की आवाज दिलों की आवाज।
1: और जी हाँ दोस्तों, अब वक्त हो चला है कि मैं परी आपसे लूँ अलविदा। इट्स 8:53 और अगले गाने के साथ मैं आपसे लूँगी अलविदा। वादा रहा कि आपसे मुलाकात होगी जल्द यहीं आपके प्यारे से रेडियो स्टेशन RM3 रेडियो मनोरंजन पर। तब तक के लिए साथ देते रहिएगा। जाते जाते कुछ प्यारे गाने आपके लिए चलते रहेंगे यहाँ पर ऑन रेडियो मनोरंजन। 9 बजे सुन पाएंगे आप भोजपुरी प्रोग्राम और आपके लिए कुछ खास हमेशा हम चलाते रहते हैं, लेकर आते रहते हैं। बिकॉज कोशिश यही रहती है कि इन खूबसूरत गीतों के साथ आपका मनोरंजन, आपका एंटरटेनमेंट हो सके। तो जाते जाते बस यही कहेंगे दोस्तों कि एक खूबसूरत सी रात है और इन प्यारे गानों को आपने पसंद किया होगा, तो बस आपका प्यार आपका साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा। मुलाकात होगी आपसे बहुत ही जल्द। तब तक के लिए ये प्यारा सा गीत, प्यारा सा गाना आप सभी के नाम। अपना ख्याल रखिएगा।

0: और जैसे हम हमेशा कहते हैं स्टे मैजिकल स्टे म्यूजिकल अपना ख्याल रखिए हमेशा और टेक केयर कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड RM3 रेडियो मनोरंजन के साथ
1: You're listening to RM3 Radio

0: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा
1: एक से एक जोली भोजपुरी की प्रताप सिंह के संगे एमपीसी रेडियो पर गमट धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमपीसी रेडियो पर
2: सब संगतियालों के अजय प्रताप सिंह सितालू की ओर से प्यार भरा नमस्ते और सलाम। यह तो मनपसंद रेडियो चैनल रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन लाइव एमबीसी मौका से हमने की प्रसारण चला था और तू हमने की सुना था रेडियो पर और देखा था टिकटॉक पेज पर रेडियो मॉरिशस की। सबको के स्वागत बा, सब दर्शक लोग के और सब रेडियो लिसनर्स लोग के स्वागत करते हैं। भोजपुरी जर का प्रोग्राम चली अभी से लेके रात के 11 बज रही, थोड़ा मन करता है कोनो भोजपुरी गीत सुने के तो नंबर वो घुमाया काट जगह दे विद जगह विद सैंक पर या हमने के सको एस एम एस करे हमने के टिकटॉक पेज पर। बेशक अभी भोजपुरी जर का प्रोग्राम में एक से एक जबरदस्त गीत चली, खाना खजाना फिर कर में रही कहानी चुटकुले ढेर कुछ भाई प्रोग्राम में अभी से लेके रात के 11 बजे रही। तो शुरू करी रहे भोजपुरी तड़का प्रोग्राम के चंगन मंगन पानी भरे पानी नहीं बा, चंगन मंगन पानी भरे पानी नहीं बा। गीता चलावत ऐसा गीता चली खासम खास विश्वानी जमन खातिर और सब परिवार के नाम दृष्टिना शिवचन गीत हर खातिर शीना सिबोरत हर खातिर शालिनी हिरू हवा नाफलोगा से हेलो भौजी है गीत हर खातिर तोहर दुल्हा विशाल खातिर तोहर दुगो बेटी और सब एगो परिवार के नाम देवी सिवान से गीत हो खातिर संगीता मिरन हवन लागोजा से तोहर खातिर तोहर बहन हेमा शांति खातिर और तोहर माता जी जो हिरण कास्तेल भाई दान आजी खातिर भी और अनुष्ठा मोहन है गीत और नाम और जितना कोई हमने के टिकटॉक पेज पर दिखाता और रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर सुनाता है गीतवा तो लोग के नाम चंगन मिंगन पानी भरे पानी नहीं बा।

चिंगन मिंगन पानी भरे पानी नहीं भाई सब जन गीत था हमने क्या हमके बचपन के याद दिला वेला और अब बात कर सा होरोस्कोप के बारे में राशि के बारे में धीरे कुछ जैसे भजन की नींद से जागेरा पहला जो चीज है वो लोग देखे ना इंटरनेट पर वो लोग के राशि तो धीर कोई राशि में माने ला लोगोस्कोप में तो राशि कौन सी बतावेला हमके स्वभाव और ज्योतिष मार्गदर्शन आत्मचिंतन धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व दैनिक राशिफल और ढेर कोई माने रखकर में और राशि के बारे में बात कर बता धीमाना राशि बस जैसे कि मेष राशि एरियस फिर वृषभ राशि टोरस मिथुन राशि जेमिनी कर्क राशि कैंसर सिंह राशि लेओ कन्या राशि वर्गो फिर तुला राशि लिब्रा और स्कॉर्पियो जोडियक साइन वृषक राशि धनु राशि सजिटेरियस मकर राशि कैप्रिकॉर्न कुंभ राशि एक्वारियस और मीन राशि पाइसेस अभी कहाँ ले हमने के दैनिक जीवन में प्रभाव पड़ेगा ई तो लोग के विश्वास पर अगर तू राशि में मानत हुआ और माने ना कि जो जो चीज तो राशि में लिखा बरोज के वो होला तो होला और

अगर नहीं माने रहा तो ये भी तो पर निर्भर पर देर कोई माने रहा देर कोई नहीं माने रहा तो ये गो विश्वास करे रहा चीज़ देर कोई होरोस्कोप में माने रहा देर कोई नहीं माने रहा तो कोई बात नहीं हमने यहाँ पर इसे तेरों के साथ देखा देर और अगला गीत है आई लव यू बोली रहा गीता का चदर का होता आरव गीत हर खातिर सायरादा और नेहा और नेहा बोलाते हो गीत चला कि नेहा अभी हम थोड़ा से बच्चे आप जा थोड़ी समय में एंड रॉयल गर्ल गीत हर खातिर पीवीना गंगा विश्वन साथ में गीत चली दृष्टि शिवचंद खातिर चंद्र कला है गीत रो नाम सीरा श्वेता और जितना कोई भी हम के साथ देवता आरव भी हम के साथ देवता वन और संजय बिहारी है गीत हो खातिर और बेशक जितना दर्शक हमने के देखता है टिकटॉक पर और जितना व्यूअर्स लोग हमने के देखता है इंटरनेशनल लेवल पर दूसरे देश से सबको के स्वागत बा यह मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के रेडियो चैनल रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन साथ में रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर हमने के देखता है जितना कोई रात के भी हमने सुनता है गीत के नाम हंके आई लव यू बोले ला शेरी गाते बोले ला और वो तोरा का बोले ला हो चलो एक साथ सुनेगी तो

हाँ देख रहा प्यार से कैसे मैं मुँह गाती बोले रहा शेरी बोले रहा कोको एतामो लड्डू एतामो जिसिक एतामो गातो कोको ऐसे बोले रहा ना तू भी ऐसे ही बोल जा अपन प्यार के अपन प्रेमी प्रेमिका के तो लड्डू डू बोल बा माखन नगई बा तब तो हर बात सुनी अब रोज के हल्ला कर बा चिगर बा ऊपर पर तब तो हर बात कहाँ सुनी तो अपन पौटने के खूब गाते करिया अगला गीत झुनझुना झुनझुना जी हाँ गीत चलावत है इस सुमन राम तोहर ग्रुप द्वारा गीत झुनझुना और गीत चलावत है इस सोनम खातेर और हई गीत चली देवीना खातिर नेहा खातिर फिर हई गीत बुल ज्ञान खातिर आप हवन दूसरे पेई से हवन जा साउथ अफ्रीका से गीतोलो खातिर साथ में निकोला खातिर हम के साथ देवत हवन और फिर है गाना चलावत इस जितना कोई भी रात के काम करता था नाइट शिफ्ट में लगल हवन सा है गीत तोलो के नाम और जानी साथ कर सर्दी खांसी जुकाम होता सब कोई के तो जब तुम्हारा सर्दी खांसी जुकाम हो तो जितना सकब बोतल वाला पानी पिया जो बुटीक में बेचारा हो पनिया पिया कहे कि हो पनिया चुनह जब पीबा तो तुहर जो है खांसी हाँ हम मौके कर दे हैं जब लाफी लगेला तो है जो बोतल वाला पानी है कोनो मौके भी पानी पी बिस्ते नहीं करते हैं है बोतल वाला जो पानी है जो बेचारा बुटीक में सुबह मौसम में उपीबा तो जो है हमने के खांसी कम रहेला और लाफी सब दूर भागेला और जब लाफी लगी जब दवाई पिया तो अच्छा पानी पिए कि जितना पानी पीबा दस्ती अच्छा है स्वास्थ्य खातिर है अब ग्लास से पानी नहीं बताए पनिया सोफे कर दिया था सुनते मुझ में डाल दिया तो हये की चली रूमिता गुर्जा के नाम फिर पोल वेशन भी अपनी साथ देवत हवन और जितना कोई भी रात के अपनी देखा था टिकटॉक पेज पर या रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर हमने सुना था तो है गीत तो लोग के नाम खासकर ये गीत यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के फैकल्टी ऑफ सोशल स्टडीज एंड ह्यूमैनिटीज की बी ए फ्रेंच ईयर वन ईयर टू ईयर थ्री एम ए फ्रेंच ईयर वन ईयर टू और पी एच डी फ्रेंच में एनरोल हमने के सब स्टूडेंट्स और लेक्चरर लोग खाती रहे गीत झुनझुना

0: सगळ्या लोग सच्चा शिक्षा जो है वो घर से शुरू होला। एगो माँ बाप जब एगो लड़का के दुनिया में आने तो कर्तव्य है लड़का के शिक्षा दे के कैसे बचाए के समाज में कैसे उठे बैठे के क्या क्या आजकल लड़का लोग बड़े मोवे हो जाते हैं उनसे मानिए नहीं भाई बचाए के बड़ा आदमी लोग से दिखी रहा सा ढेर मना जगह में खासकर कॉलेज में स्कूल में दिखी रहा सा कैसे लड़का लोग फौंती करे रहन सब बच्चा रहन सब प्रोफेसर लोग संगे तो हम बुरी रहा माँ बाप से को मांग करब जा कि अपन लड़का के नीमन शिक्षा दिया ताकि तुम्हारे तो लड़का जब कहूँ भी जाए तो सबके बोली हाँ अगर माँ बाप की मानिए सीख रहा बका कि आजकल के लड़का लोग बड़िए मोवे और फौंते करे रहन सा कोनो बात बोल पा कोनो निम्न बात बोल पता तुहरा तेहरा टाके रहन सा और वो लोग यानी कि बुफों करे रहन सा तो ये बहुत बुरी बात है अगर लड़का लोग नहीं सीखेबा निमन मानिए तो लड़का लोग बिगड़ जाए और आजकल देखते हैं जमाना बहुत बुरा बा है लड़का लोग पढ़िए बिगड़ता है आजकल अभी को संगत है लाइन पे कब से मिल जा कब से इंतजार कर रहा था हेलो
1: हेलो प्रताप जी
0: नमस्ते के हवा जा
1: नमस्ते हाँ हम हैं मनु रोजबेर से
0: तो हाँ स्वागत बा मनु बोला
1: बहुत धन्यवाद इतना हंसाई बा को वो गाते
0: हाँ तो ऐसे बोल बता झगड़ा नहीं हो
1: अभी की ऐसे ही चहला दो
0: काज नहीं हो आज तो खाई झगड़ा होला अब बोला अगला गीत चिकन खाते
1: हाँ बोला जैसे सामने से लाइन नहीं मिला
0: हाँ
1: लड़का लोग बोले मामा नहीं हवन मामा गुजर के पापा होने हाँ तब लड़का लोग खाते हम बोले को गीत चुलो खाते मांग दे मां के बोले मां तो जो नहीं सोते तो लाइन नहीं मिला
0: अरे बोला
1: हाँ हमारे बेटी हवन अति फ्रैक रहे लान अगर पति भी हवन और हमारे बेटा पति हवन रोशन और पल्लवी और छोटका रीना अभी सब बहन है सर पांच बहन अब सब मजे अपने में मिल के कैसे फिर मामा बनाए ला सर
0: हां तो का कर ब परे रख कर के ना
1: कहते सामने के चल गई सब निशान नामे सब भाई बहन
0: अच्छा बा अच्छा
1: हां निशान हम इस रहे दे मामा पापा ने हम तो हम नेक सब हैं
0: हम नहीं है सर ना
1: हां हम नेक सब हैं सर तो ई से कुमा जे मां लोग नहीं बात अब कि हम नहीं भाई बहन में कुमा जे
0: मिल के मनाए ला सर
1: हां मिल के मनाए सर तो नहीं बुझला कि मां पापा हवन कि नहीं हवन मां हां जब अकेला पन रब तब सोच ब
0: तब बुझला
1: हाँ यादवा अबे लाने बोला ना
0: का कर बा
1: हाँ तो अबे एको गीत डाल दिया तू सु पापे ना ये मामा ऐ माँ के वो गीत
0: एको माँ के गीत
1: हाँ एको माँ के गीत आलाने वैसे नहीं बोला कोई गुबा
0: हाँ हाँ
1: अभी ये ना कोई बात आ रहे ना दूसरे
0: हाँ हम जानी रहा हाँ पापी कर नहीं बा
1: हाँ लड़का लोग के अभी एको हमारे बहन के नाती के हो नाती के सब को ये लाने
0: तो तू दादी हुआ नानी हुआ परदादी हुआ कौन से हुआ
1: हम नानी नानी है नानी एगो बा हम हाँ, सिया भुला गेल म छोटा सिया के
0: ए सिया उ कौन क्लास में बा
1: ना हम छोटा सिया वो अभी 9 महीना के हुआ
0: ए ताची बेबे हाँ, पिची लड्डू
1: बेबे हम नाती उ से तो के बा उ ट्राजन में बा
0: अच्छा
1: वो फ्लैक रहे लन हां तो एगो गी डाल दिया हम छिप छिप छिप वो खदीन हम छोटा परी सबाउ नॉर्मल
0: ए ता
1: हम ही देख ला दिन के जालम काम करे कहो बीरो जालम कहो घर तो देख ले ला कंसर कमांसमा जाने ला हम बोला हम ही नहीं हम बोला नहीं तू ही घरे रह हम तो के देवा पैसा जब लड़का हो गया तो हम ही नहीं जा सक काम करे हम बेबी के छोटे से हम सक
0: हाँ सक बस देखिए तू कहे नहीं
1: हाँ देखिए यार बस हम हमारे बेटा काम करे लम करे ताको एड मिल जाला
0: मिल जाला
1: ताको गिन हाँ डालिया और हमारे आसी के हमार बहिन के नातिन हवा नासी आसी हाँ उकरो मगन उकरो लानी वैसे रहा लैजी के तब एक दूसर के एक दूसर नेवे के उकर बेटा के उकरो रहा लानी वैसे वो लोगों मगन वे हवान सा रियान डाल दिया ले कल के खुशी रहे लोग सा डाल दी तो जीवन एंड साथे
0: हाँ जी खुशी एंड सा सुने के
1: खुशी रहे सा ले कल सुने हाँ
0: फिकर नहीं करे तो हर गीत डाल दी माँ पर है थोड़ी समय
1: हाँ डाल दिया बहुत धन्यवाद
0: बहुत धन्यवाद अली बाबा हाँ तो इसे नचते गाते रहे उनके साथ देते रहिए और अगला गीत चलाओ अब सा मीठा मीठा बोल अकल की ना बोल मनी मनी प्रिया है गीत और खाते तो हर सब परिवार के नाम साथ में है गीत चली शमिला खातिर किंग राकेश अभी अविशान और जितना कोई अभी उनके देखा था टिकटॉक पेज पर रेडियो मनोरंजन पर हम की सुना था रेडियो मनोरंजन पर अनीता हवन अनीता लाल जी फिर तराज मदर बेसनी तफरी कॉम्फ्लाक से और रिहाना सिनानी हवन फिनिक्सन के साथ देवत हवन तय गीत तुलुक नाम मीठा मीठा बोल अकर के ना बोल

रात के 9:40 होता है रेडियो मॉन्शस रेडियो मनोरंजन और टिकटॉक पेज पर हमने की फॉलो करे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी वो कहानी सुनाओ आपसे थोड़ा, सुंदर और घमंडी अभिनेत्री की कहानी। एगो समय की बात है, एगो शहर में एगो प्रसिद्ध अभिनेत्री रहा था, लोगों नाम रहल अनाया। सबको एक सुंदरता और अभिनय के दीवाना रहा, जहाँ भी वो जाता सब लोग पीछे पीछे जाता जो तारीफ करते हैं कितना जोड़ी एक्ट्रेस, बाप रे बाप। धीरे धीरे अनाया अपन सुंदरता और प्रसिद्ध अपन सुंदरता पर घमंड करे लगल और वो लोग से उतना अच्छे से बात नहीं करत हल। और जब नया कलाकार लोग आवत हल तो वो कर अपमान करके उसे जतल उधेर एक तरह बा। एक दिन एगो नई फिल्म रिलीज हो, फिल्म एगो फिल्म में साथ एगो साधारण हीरो रहल, वो काफ़ी मेहनती रहल और साथ में काम करता अभिनेत्री, तो सभी के सम्मान के पेश में आवत है। धीरे धीरे पूरी टीम जो है ओकर तारीफ करे लगल। फिल्म में दू जुग आते, एगो जो घमंडी आते सर और एगो नवात्री सर। जो नवात्री सर रहकर सबको तारीफ करे लगल, अनाया के लगल कि लोग ओके भूल गल बा। तो वो सोचलक कि केवल सुंदरता और प्रसिद्धि ही सब कुछ नहीं बा। एक दिन शूटिंग के दौरान एगो कर्मचारी बीमार हो गल, तो वो नई अभिनेत्री जो है ओकर मदद करलक और सबको एक ध्यान दिलक। ये देखकर अनाया को अपन गलती के एहसास हो कि जिंदगी में खूबसूरत ही सब कुछ नहीं है। तो वो सबको इसे माफ़ी मांगलक, वो बोलक कि वो इतना सुंदर रह, सोचा था ढेर सुंदर बा, अपन सुंदरता पर घमन करत है। पर वो बोलक लोगन से कि सुंदरता सब कुछ नहीं है, जो निमन मानिए चेहरा वो भी ज़रूरी है जीवन में। कुछ समय बाद लोग केवल सुंदर अभिनेत्री के नहीं बल्कि अच्छा दिल वाली अभिनेत्री के भी पसंद

0: करेलन सा तो कहानी की सीख यह है कि अगर तू सुंदर हवा तो सुंदरता पर घमंड नहीं करिया लोग सुंदरता पर हाँ पहले पहले जालन सा पर बाद में दिखेलन सा तो और मानिया अच्छा बा तो वही सबसे सुंदर जरूरी है कि शारीरिक सौंदर्य ही सब कुछ है कभी मन के सौंदर्य भी अच्छा रहेगा अगर तू सुंदर हवा जोली हवा चिकन चाकन हवा हैंडसम हवा ब्यूटीफुल हवा तो ढेर घमंड नहीं करिए क्योंकि जन सुंदरता ढेर दिन नहीं रहेगा समय के साथ साथ सुंदरता ढल जाला सच्ची सुंदरता तो हर मन के अंदर होला सुंदरता है अभी एक संगत है लाइन पे कसम मिला जा हेलो नमस्ते
1: नमस्ते जी
0: तो हर शुभ नाम
1: श्रीमती
0: कहाँ से
1: से।
0: तो स्वागत बा श्रीमती बोला
1: एगो गीत डाल दिया सब हमारे परिवार का तीन और मोहिश परिवार निष्कालिये के सुयाग के सब चंद्रमुनि परिवार एक गीत डाल दिया था चिराई करे चिक चिक महलिया में चोर बा
0: चिराई करे चुकु चुकु
1: महल में चोर
0: बा
1: ना
0: महल में
1: चुका
0: बोले चोर बा चोर बा
1: डाल दिया
0: हाँ डाल दियो अब सर
1: ठीक है
0: बहुत बहुत धन्यवाद टेलीफोन नहीं कर ला शुभ रात्रि बाय बाय और फिर चित्रा हवन मोदल शुक्रपति यान और सब विश्राम परिवार खातिर अगला गीत चली साथ में ये गीतवा चला अब सुनंदा की ओर से घरोला और कद्दू को बेटा खातिर और साथ में ये गीत चली हीरा लाल दिन खातिर बहुत बहुत प्यार से अभी आरोग संगत लाइन पे चाची ललिता नमस्ते चाची ललिता तोहर काजू ढे जोर से डाल दो प्लीज कमती कर दे प्लीज जब भी टेलीफोन कर काजू कमती कर दिए सब वरना नहीं सकब सब आई हेलो काजू ढे जोर बा चाची आयो हम फांसी फांसी की बोले बतिया बता तो लोग बोलते रह रहा तो लोग काजू जोर से डाल रहा जब भी बचे बा हजवा की बोली कमती कर दिया या हम की काने क्लाते हुए लगे प्लीज हेलो हाँ चाची बोला
2: कैसे बा बेटा
0: हम अच्छा है तो कैसे हुआ चाची
2: खुश साल मंगल बेटा
0: हाँ आज के दिन कैसे बीता
2: आज अच्छा से बीता
0: हाँ लड़का लोग सबको अच्छा होने से ना
2: सबको अच्छा बा बेटा तो हर
0: यहाँ चला था धीरे धीरे तू बोला चाची अगला गीत के कर खातिर
2: अगला
0: विनोद शिवदास के गीत डाल दिया
2: हमारे बहन सुदेवी देवीना ज्ञानी छोटी दीदी दादी प्रभावती हरीश भैया आत्माराम भैया सुखलाल मौसी और माला हम जीवन खातिन
0: ओके
2: तोहरो खातिन बेटा
0: ओके चाची चला दो अब सर ठीक बा
2: शुभ रात्रि
0: शुभ रात्रि चाची नंदा हवन पाई से हेलो नंदा
3: हेलो भाई साहब कैसा है
0: कैसे दीदी अच्छा हुए ना
3: अच्छा है बहुत अच्छा
0: टिकटॉक पर दिखे
3: बहुत बहुत
0: बाप हमारी दिन से नहीं सुने करे तो
3: नहीं भाई साहब
0: गाते अकेले खा ले थोड़ा सुन
3: फौसी
0: बनाओ दी
3: भाई
0: भतकवाई
3: बना एक महीना
0: हल बामर
3: पिता के
0: शादी
3: देखे ना हम कि दीदी सुरेखा रहल आर अथी आ रहा हूँ कुन्ना बा रहा हूँ बेटी वा रहा हूँ दुगना आप कोई नहीं हाँ मुपा ट्रोसोस मुपा गैंजोट
0: लाली नहीं मिलेगा
3: नहीं मिलेगा नहीं तो तू रह ते कर दिगे
0: ताम बाजने हम बाजने कर देगी माँ कहे तो ताम
3: दिवि सुरक्षा विनीली
0: हाँ
3: हाँ हाँ आप
0: बहुत बहुत बधाई अब तू सासू माँ बन गला हुआ तीसरा बार ओके ओके
3: भाई साहब
0: नहीं तो डाल दे जुबेदा लुतो लेके जाए पाइयों में ठंडा करेला इसने
3: ठंडा करेला
0: अभी पानी बसा था की तिरंगन लौका था
3: नहीं
0: तिरंगन कोई बात नहीं कोई बात नहीं आशीर्वाद तो और बेटा पतु के लोग के जीवन मीठा मीठा चली प्यार से मोहब्बत से
3: बाहर जाने के हा भाई
0: जय गणेश
3: की जाने रे ना
0: हाँ शादी कर ला कहाँ पर ओके एमबीसी की पूरी टीम के बेटा और बहू के ध्येय माना प्यार और आशीर्वाद
1: ताली बाय
0: ओके नंदा बाय बाय।

चल अभी छे कोई अभी शादी हो नवा नवा दुल्हा दुल्हन लोग बना लो तो देखा है जो शादी के जीवन है फैगौते के जीवन नहीं है अब तू जन ओकर का हक थे कैसे बा फैगौते के समय में जब जाला घूमे गातो तो लेके तो छोकरी तो हंसी प्यार से कि मानिए कोको कि मानिए गाते छोकरा भी खूब जीबे पासे करी छोकरिया संग बोली एता मो बेबे तब शादी के बाद तब बेबे कोको बुझाई तब साथ में रह तब बुझाए का आगते है कैसे बा छोकरी के कि छोकरा के कहा थे कैसे बा हों कि नहीं तो शादी करे से पहले सोच लिया है खाइए शादी के बाद सब कुछ बदल जला भैया तो शादी के लड्डू जो खाए वो भी पचता है जो ना भी खाए वो भी पचता है ऐसे में चल सुनब जा मार ताली मार गीता कह रहे वन कुनाल हिरी लाल

0: चोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर। कमट धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर।
1: Continuous music. RM3.
2: 819 kilohertz. ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
3: रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर चलाता प्रोग्राम भोजपुरी टर का और रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर ये प्रोग्राम लाइव चलाता दर्शक लोग हमने की देखा था भी बहुत बहुत धन्यवाद हमने की देखी खातिर और सुने खातिर। रात के 10 बजे था और भोजपुरी टर का जारी बार रात के 11 बजे ले और अब बात करब सा हमने मालिश के बारे में था। शरीर के जो मालिश है मसाज है वो बहुत जरूरी है कहे कि जो शरीर की मालिश होला एक कई लाभ होला और एक से स्वास्थ्य अच्छा रहेला और शरीर की मालिश करब तो रक्त संचार अच्छा होला थकान कम होला और मांसपेशी के आराम पहुँचेला तनाव कम होला और नींद में सुधार आवेला त्वचा की देखभाल हो रहा और लचीलापन शरीर की मदद करेला और मालिश करते समय बहुत दबाव नहीं चलना करे के चोट सूजन या तेज दर्द वाले हिस्सा पर मालिश नहीं करे के यदि कोई स्वास्थ्य समस्या हो तो डॉक्टर की सलाह लेके पहले जो शरीर के मसाज होला जो मालिश होला ये बहुत जरूरी है। अगर हर सप्ताह सकब अपन शरीर के मालिश कराए तब मोकस में ढेर मना सौंत बा मॉरिशस में ढेरी सन सौंदी मसाज बा जहाँ सकब जाके अपन शरीर के मालिश कराए इसे तो हर स्वास्थ्य अच्छा रही और देखे रहे टूरिस्ट लोग आवे रहा था वो लोग है दस्ती मसाज करावे ला कहे कि वो लोग जाए रासौते जो है प्रियोगिता जो प्रियोगिता यही खातिर अपनी जानी रह सक कि अगर तू चाहत हो तो शरीर स्वस्थ रही तो अपन शरीर की मसाज सकब जा कराए ताकि तुहर के शरीर में दर्द है सब ना रही कभी कभी पीठी में गोर में हाथ में पेट में जुलिया होला दर्द होला तो सब के दूर करे खाली सब अपन शरीर की मसाज करवाई तो चलना जाने के हैं कहाँ पर जाए के तो मॉरिशस में ढेर मना सन जगह बा जहाँ शरीर के मालिश होवेला और से तो स्वास्थ्य अच्छा रहेला स्वास्थ्य अच्छा बात है सब कुछ अच्छा भैया स्वास्थ्य अच्छा नहीं बात कुछ भी अच्छा नहीं बा। अगला गीत चलावब सुग्रीव खातिर गीत तोहर खातिर बहुत बहुत प्यार के साथ सुग्रीव भाई होवन कौतवल से उनके साथ देवत होवन और कर सब परिवार के नाम फिर प्रणव दुखन गीत और खातिर तो सब परिवार खातिर त्रियोली के सब ककतिया परिवार जीराखंड परिवार महाराणा प्रताप लेन के सब हरकू परिवार चाचा आत्माराम चाची लोल हवन चाची लोल हवन नोवेल फ्रांसे और हमनी के चाची प्रभावती लोलो नोवेल फ्रांसे गीत संगीता की ओर से चाची लोल खातिर और संगीता की ओर से गीत चली माँ रीता सीतालू के नाम भी चल एक साथ सुने है पोटपुरी रंभा राम तोहल की सुबानी

सच्चे के संगत या लोग पैसा बात करेला जेकर पे लगे पैसा बा तो राजा है सब कोई कर आगे पीछे घूमेला पर जेकर लगे पैसा नहीं बा वो दाने दाने के लिए मोहताज हो जा रहा पर पैसा काम आवेरा जब सब पैसा के सही इस्तेमाल कर बतब आजकल देखिए ऐसा स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी जनह बीमारी फैल रहा था दुनिया भर में कहूँ कहूँ एपिडेमी बा कहूँ वायरस बा तो कहूँ कहूँ मारादी बा एक से एक मारादी बा ये सब बच्चे खातिर चेहरा खान पान पर ध्यान दे के हमेशा बोईरा सा जैसा अन वैसा मन आई एम व्हाट आई ईट हाँ कि नहीं तो जब तू भोजन कर रहे तो को बैलेंस डाइट फॉलो करिया और दिखा कौन चीज़ खाता हुआ और हम जान के साथ कर के ढेर कोई के समय नहीं मिल रहा घर में पकाए के सब कोई भाड़ा खरीदे रहा हम नहीं बोलते कि भाड़ा नहीं खाए के अच्छा बा खाए के पर ज़रा देख के कौन चीज़ खाता हुआ जब घर में पकाई अपन हाथ से पकावाता हुआ तो जानता हुआ कि तू अच्छा भोजन बनाता हुआ तुम्हारे पति पत्नी लड़का लोग सबके अच्छा भोजन करता और जब पौष्टिक भोजन कर बैलेंस डाइट करब तो तुहर शरीर स्वस्थ रहेगा तंदुरुस्त रहे एक खातिर बैठा सा स्वस्थ जिकर अच्छा बा तो सब कुछ बा अगर स्वास्थ्य नहीं बा तो कुछ नहीं बा है प्लीज वाइफ कब कब पोस्ट में पैसा रहेगा दुखते के बोल हमके बचा रहा दुखते बोली माँ बाप का पापा ना हो या कब दुखते फॉर्म बोल देवेरा जिन व्यक्ति के लॉस थे जैसे कैंसर की बीमारी बा डायबिटीज बा या दिल की बीमारी तो ये सब खातिर चेहरा हमने के स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान दे के हम नहीं जानी ना सर सब कोई ओक्यूपे रहे सर काम में फिर घर में आके घर के काम करे के लड़का के देखे के हम नहीं जानी ना सर बड़ी हेक्टिक जीवन बा पर चेहरा कोशिश करे के जाने की कौन चीज खाते हैं सर जो खाते हैं सर अगर शरीर में लगत है कि नहीं कहे कि हमने के शरीर के खाना चेहरा पर वो खाना खाइए जिनसे तो शरीर के लाभ पहुँची हावे बैलेंस डाइट हाँ कि नहीं हाँ तो ऐसे में चल अगला गीत सुनब जब स्वास्थ्य जिकर अच्छा बा इतिश गीत और खातिर एरा या हेलो जी है गीत महिर खातिर जो हमने के दिखा था वन यूट्यूब हमके दिखा था वन टिकटॉक पेज पर करिश्मा अजय राजमन वर्ष फिर प्रिया हवन सरिता सिबारहत परिधि मिमी सिदय देवयानी लाला लाली और लीना महादू शीता रघुनु लीना देवी जितना कोई अशिता अनिष्टा राधिका जितना कोई बखत हमने के देखा था टिकटॉक पेज पर रेडियो मॉरिशस के है गीत तो लोग खातिर और जितना कोई हमने के सुना था रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर है गीत तो और खातिर स्वास्थ्य पर ध्यान दिया भैया स्वास्थ्य बा तो सब कुछ बा स्वास्थ्य नहीं बा तो कुछ भी नहीं बा चल एक साथ सुने गीत स्वास्थ्य जेकर अच्छा बा

है जोन गाय के गोबर है एकर बड़ा ही महत्व है। पहले के जमाना में घर के गाय के गोबर से लिपा तली सा और गाय के गोबर के पूजा भी होला ओके लक्ष्मी माँ के रूप देवल गरबा। तो आजकल गाय के गोबर उतना नहीं मिले।

ना कहे कि उतना कोई गाय नहीं पोसेला पर आगे के जमाना में देर कोई गाय पोसत है अब गाय पोस पर तो गाय के दूध मिली गाय के दूध से सब माखन बनाए पनीर बनाए ना अब ओकर दूध अच्छा पिएगी गाय के दूध जो है जो जो आदमी एनीमी है वो गाय के दूध पी तो एनीमी सब भाग जाए सकेला देर को नहीं जाना तो गाय के दूध में ढेर पौष्टिक तत्व और ये गोबर जो है एक से घर के शुद्धि होला जहाँ पूजा पाठ होला अगर गोबर के इस्तेमाल कर तो कल्याण ही कल्याण होला हो बा अभी ले बात ढेर मन को जगह में आदमी लोग गाय पोसेला और गोबर के प्रयोग होला और विष्णु पुराण पर्व हमने के धर्म ग्रंथ वेद उपनिषद पर्व त ढेर मना उपनिषद वेद में एक गोबर के वर्णन करल गए बा कैसे गोबर के इस्तेमाल होला पूजा पाठ में कर है और शुद्धिकरण कर बा त गोबर के इस्तेमाल होला अभी के लड़का लोग सब नहीं जानी अभी के जैन जो जैनफी लोग नहीं जानी हमने के चारा सिखाए के लड़का लोग की ठीक बा तो चला अगला गीत सुना कौन सी लेके आ रहे हैं इसे दुनिया में कुछ तो नहीं क्या से भैया खाली हाथ आए से खाली हाथ जाप सा अगला गीत चली शिखा खातिर इकबाल चामू खातिर सलमा मोहबी है गीत होरो खातिर फिर लता खातिर फिर है गीत चली रतन निहाल खातिर आप्रहन खोबे और उकर पापा उकर पत्नी करुणा सब परिवार राम जतन ठाकुर गीत और खातिर मुक्तिश मुक्षाद गीत और खातिर प्रश्नी मालिनी आनिया दिया और स्नोवी साथ में गीत चली पूनम मजूद तोर नाम एंजल शिखा निष्ठा गंगाराम गीत और खातिर निर्मल मालिनी आनीश इंदिरा सुनेराम और फिर है गीत जो ना चलावती सब बहुत बहुत प्यार के साथ मोहेश खातिर हाफूज अधिकारी एंजल मिमी है गीत हो रहा नाम जितना कोई जितना व्यूअर्स हमने की देखा था टिकटॉक पेज पर जय श्री इस्लाम और जितना कोई हमने की सुना था रेडियो पर है गीत तो लोग के नाम भी साध्या जी हाँ मीनाक्षी रू लारा वो भी हमने की देखा था वन टिकटॉक पेज पर ईसाई राम दिया और पूनम साथ में स्वीति और स्वीनी खातिर भी एक गीत चली कौन चीज लेके आ रही सर

सच्चे के गीतों में बोला था हान पसार के आलाई से हान पसार के जाप से कुछ भी लेके नहीं आलाई से कौन ची लेके जाप से जब आड़ से कोई हमने के नहाई रहा जब हमने मरब से तक कोई हमने के नहाए और दुनिया के छोड़ छाड़ के परी जाए के यहाँ पर कोई नहीं आल बा कासिन करे भैया ये कहते घमंड मत नहीं करिए अगर तो और जोली लो तो बा या तो लगे ढेर पैसा बात ढेर घमंड नहीं करिए काहे कि जुनहा वो हमेशा नहीं रहेगा खाली हाथ आए सर खाली हाथ जाप सर अगला गीत जलसा लालबा सुनाम तिलक कई तोहर खातिर तोहर सब सुन खातिर सुनाम तिलक के गोध्या पिका हुआन मैविन हमने के साथ देवतवन रूबीना और एगो संगत्या बा हमने के रोज हमने के सामने के फजीर के सुनेला और अभी हमने के देखा था वन सेवियर एंजल आयुष परी अंजू अनाइशा द्रिपोल हमने के साथ देवतवन और भाविश दसवा वो भी हमने के साथ देवतवन हमने के टिकटॉक पेज पर रेडियो मॉरिशस के ओके श्रीनाल बोला हाँ प्रीति है गीत और खातिर जलसा लालबा ओम खातिर भी एक गीत चलते से कायरा और फिर है गीत चली वो सब संगत यारों खातिर जो कोशिश कर रहा था और लाइन ना मिला था तह गीत हो नाम चला आपसे जलसा लालबा जब हमने ऐसे तो जलसा ही जलसा होला खूब कमर हो रहा नाचे गावा कमरवा डुलावा शर्मा की बात नहीं बा चला जलसा करी रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन और टिकटॉक पेज पर

झोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर। कमट धमाल और मस्ती प्रताप सिंह के संगे

देखिए ऐसे ढेर कोई ढेर सब्जी नहीं कुछ ऐसा खाए कि जैसे पातो पिपांगा या लालू तो अपने लालू पर बताया आपसे जिसकी हमने हिंदी में भिंडी बोला सा या ओके ओकरा भी बोला ला तो भिंडी को पौष्टिक हरी सब्जी है और इकर में विटामिन बा फाइबर बा और

एंटीऑक्सीडेंट भी बा पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम का तीर अच्छा है लालू खाई बात खाई की निमन से पचेला भिंडी में फाइबर अच्छी मात्रा में बा और पेट साफ करेला और रक्त संचार का तीर अच्छा है ब्लड शुगर के नियंत्रण में रखेला और भिंडी के जो है चहला खाई के हृदय स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है जो कि दिल की बीमारी हो के चहला है लालू खाई के साथ में रोग प्रतिरोध क्षमता के सहारा देवेला कर में विटामिन सी बा एंटीऑक्सीडेंट बा और शरीर के प्राकृतिक सुरक्षा करेला त्वचा और बाल खातिर जो लालू है खैबत तोहर लापू और तोहर बाल के सुंदर बनावेला वजन वजन संतुलन करेला जे को ओबेस बा ढेर मोटा होवन सा त ई वजन के जुन्हा कम करेला हड्डी खातिर भी अच्छा है जो आदमी के हड्डी के दुलिया होला हाथ दुखाला या गोर दुखाला या हड्डी हड्डी दुखाला तो अगर तू लालू खैबा तो इकर से तोहर हड्डी की बीमारी दूर हो जाए और भिंडी के ढेर प्रकार से सकबब बनाए हल्की सब्जी बनाकर ओके सकबब भूंजे भून के खाए तारल लालू लालू के सलाद बनेला लालू के सकबब मसाला में पकाए लालू के उबाल के ओके काट के प्याज पीमा डाल के जोड़ी से सकबब सलाद करे और ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा तेल में भिंडी के नहीं तरिया कहे कि जब ढेर माना तेल में भिंडी के तरबा तो का सब विटामिन चला जाला तो हमेशा रखिए लालू ऐसे ना कुछ सब्जी है जो तोहर स्वास्थ्य के लाभ पहुँचावेला जैसे हड्डी जेकर जेकर जेक ढेर आदमी लोग के शिकायत है कि उनके हड्डी हड्डी दुखाला गोर हाथ दुखाला ज्वाइं सब दुखाला या ढेर कोई निमन से नहीं जान से टॉयलेट तो ये अच्छा है लालू खेब तो टॉयलेट निमन से जेब तो डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रही तो हर लापू तो हर बाल सुंदर हो और लालू चहना खाए कि नहीं जानने से ढेर को बस बड़ी लागली रहेगा पर लालू के चहना जाने की तैयार करके लालू के चहना आगे धो दे के तब कटिया ढेर कोई काट के लालुआ तब धोवेला तो खातिर लागली लागली हो जा रहा ठीक बा तो आज से जब जेब बाजार तो एक दूली बार लालू ले लिया अपनों खातिर बनाइए अपन पति पत्नी अपन एक कालू खातिर भी लालू के सगबा तरकारी बनाए ठीक बा और ऐसे में सुनब जा अगला गीत भोजपुरी हमार माँ है गीत तो हमें चलावत ऐसा अनिता पेटोप खातिर श्वेना तिलक खातिर केशव बिलक रिवेदिस्पोस हेलन प्रिया जी है तो है गीत तो हर बेटा आदिश केशव और चीकू को खातिर क्या ना है जीना की ओर से भावी और नैवा खातिर और है गीत चलावत ऐसा रजनी खातिर भी फिर राम दुलार मंडल है गीत और खातिर गीता जाबुल क्या ना है लियोना है गीत और खातिर प्रिया जी रुद्राक्ष केशव और सब संगत यालो खातिर जुन हमने के साथ देवत हवन विद्या स्वीट भी हमने के देखा था वन थैंक यू हमने के साथ देखा तेर टिकटॉक पेज पर तो है ये गो इनोवेशन है कि आजकल रेडियो तो लोग सकबा जब हमने के देखे भी टेलीविजन लेकर इस टेलीविजन देखे लसा तब तो सकबा हमने की जब प्रोग्राम लाइव कराते ऐसा जब हमने लाइव करब सा रेडियो पर तो लाइव करब सा और मैं तो टिकटॉक पर तो हमने की सकबा जा देखे तभी रात के जितना कोई मॉरिशस में हमने की देखा था दुनिया भर में तो है गीत तो लोग के नाम चली भोजपुरी हमार माँ है खासम खास है गीत इंदिरा चिंताराम खातिर और बेटा जय बहु पूनम बेटा चंदन बहु प्रिया सब चिंताराम परिवार के नाम शिव कुंवर है गीत तोहर खातिर सुनीता तोहर खातिर वीना कुपुस्वामी आप रहन मेबग तोहर घरोला बेटी बेटा पतो चीजों फोर सब परिवार खातिर विश्वानी बाबूलाल हवन लाहौजा से वो भी हमने के साथ देवत हवन वहाँ परी और घरोला आपका लेखा लो खातिर रूपाक्रज है गीत तोहरो नाम और चलक साथ सुने भोजपुरी हमर माह

0: भोजपुरी तड़का तुहर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा।
1: एक से एक जोली भोजपुरी की प्रताप सिंह के संगे MPC रेडियो पर। गमट धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे MPC रेडियो पर।
2: रात के 10:50 हुआ था, गमट हुआ था, हुई थे बार जलसा हुआ था, चलते रही रात की 11 बजे थी। और अभी को गीत बचाव अपसा, नाच अपसा, गाव अपसा, झूम अपसा है गीत खातिर ढेर मना SMS और डेडिकेशन रोज के आवेला हमने के प्रोग्राम में। एक जोली छोकरी से प्यार करीला, जिक्र खातिर हम रोज जीला, कैसे बता रहा दोगे, कैसे समझाओगे, कैसे ओके हम प्यार करीला। यस है गीत काव्या खातिर, साकुन है गीत तोरो खातिर, नुआ कोट है गीत तोरो नाम, और है ये गीत चलावत स वर्षी खातिर, और सब हमार रेडियो मोशस रेडियो मनोरंजन के परिवार के नाम जितना कोई MBC राजू ये बखत सुना था, ये बखत MBC राजू देखा था टिकटॉक पर है गीत खास हम खास तो लोग खातिर, पर है गीतों में तोड़ा चला हमारे संगे संगे नाचे के और गावे के भी। तो चला नाचब से गीतों पर जोड़ी चोकरी से प्यार करी रहा।

जोली छोकरी से प्यार करीला जिक्र खातिर हम रोज जीला कैसे समझाबो के सब कोई जोली जोली छोकरी कुछ पसंद कर रहे हैं ना और हमने के देश में जोली जोली छोकरी बा के बोले ना नहीं बा जोली जोली छोकरी काहे नहीं और अभी रात के समय हां और अभी को अंतिम गीत प्रस्तुत कर जा सुंदर देश और है गीतवा चलावत है इस बिस्वानी दीपा की गावल और सच्चे कि हमने के देश जो ना बड़ी सुंदर है हमने के समुंदर हमने के जो पर्यावरण है हमने के जो जनता है बहुजातीय जनता है जहाँ पर हर समुदाय के लोग एक दूसरे से प्यार से रही रह सुख शांति के देश है हरियाली हरियाली और हमने के देश प्रगति कर ले जाता जोरी जोरी बा देश मेथो बा हमने के देश में और बड़ा बड़ा लिकोल बा यूनिवर्सिटी बा कॉलेज बा है बड़ी जोरी बा टूरिस्ट गावेला बोले ना मॉरिशस एगो पराजी है एगो स्वर्ग है सच्चे के स्वर्ग देशन देश हमने के मॉरिशस और हमने के चेहरा इस स्वर्ग देशन देश की सुंदरता बनाए रखे के और देश के देश आगे बढ़ते रही सब कोई निमन से हमने के देश में जी हमने के देश प्रगति करी और यही हमने के दिल की दुआ है प्राउड टू बी मॉरिशन हाँ कि नहीं जब दुनिया भर में जेबा पूछलन से कहाँ से आलो बोलबा मॉरिशस से ए मॉरिशस सच ए ब्यूटीफुल आइलैंड सो ब्यूटीफुल जितना ब्यूटीफुल आइलैंड है उतना ब्यूटीफुल लोग भी बा यहाँ भरी हाँ कि नहीं तो चला सुनब जाएगी तो सुंदर देश संगठा लोग है गीत के संगे भोजपुरी तरह का प्रोग्राम यहाँ पर समाप्त हुआ था बहुत बहुत धन्यवाद हमने के साथ देखा थे रात के 9 बजे से अभी हमने के साथ दिया जाए बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस पर हमने के साथ देखा जाए और टिकटॉक पेज पर हमने के देखे खातिर रात के 11 बजे सुनबा जागरा प्रोग्राम

सुनहरे पर और रात के 12 बजे से कल फजीर के 6 बजे तक नॉनस्टॉप फिल्मी तराने हमने के चलो के मुलाकात हुई अब सामदी के फजीर के तोहर से मिलब जा फजीर के सामदी के फजीर के 6 बजे से 9 बजे ले एमबीसी रेडियो मॉर्चेस पर लाइव टिकटॉक पेज पर तब तक हमने के इजाजत दे और जी प्रताप सिंह से ताल्लुक की ओर से सबको की प्यार भरा नमस्ते और सलाम शुभ रात्रि लव यू ऑल गॉड ब्लेस नमस्ते बाय बाय

में जब बॉलीवुड के गीत सिर्फ सुने नहीं जाते थे बल्कि दिल में बसा लिए जाते थे। अगले कुछ घंटों तक साथ रहिए और महसूस कीजिए पुरानी यादों का जादू सिर्फ सुनहरे पल में।

0: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: हर गीत एक कहानी है, हर सुर एक याद है। दोस्तों, रेडियो मॉरिशस पर सुनहरे पल में हम लेकर आए हैं वो अमर बॉलीवुड गीत जो आज भी दिल को छू जाते हैं। तो चलिए मिलकर यादों के इस सफर का आनंद लेते हैं। थैंक यू सो मच जी साथ देने के लिए ऑन रेडियो मॉरिशस।

दोस्तों, अगर आप घर पर आराम कर रहे हो, किचन में काम कर रहे हो या हो सकते हैं सफर पर हैं, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए पुराने बॉलीवुड संगीत का खजाना। ये है सुनहरे पल, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर। और जितने भी हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं, अगला नगमा खासकर आपके नाम।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: कुछ गीत कभी पुराने नहीं होते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि कुछ गीत कभी पुराने नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें बसी होती हैं हमारी जिंदगी की खूबसूरत यादें। तो तैयार हो जाइए सुनहरे पल के साथ, जहां हर नगमा दिल को सुकून देता है और पुरानी यादों को ताज़ा कर देते हैं।

याद कीजिए उन दिनों को, वाकई में वो दौर अलग था, वो गीत अलग थे और उन गीतों की बात ही कुछ और थी दोस्त। और रेडियो मॉरिशस पर सुनहरे पल में आज भी सजेगी यादों की महफिल, तो साथ बनाए रखे और बस हर एक गाने को आप दिल से महसूस कीजिए।

बॉलीवुड के सुनहरे दौर के लाजवाब गीत, दिल को छू लेने वाली आवाजें और यादों से भरा सफर। बिल्कुल जी, ये सब कुछ लेकर हाजिर है सुनहरे पर, सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर। और अगला गाना हम उन लोगों के लिए डेडिकेट करना चाहेंगे जो शायद इस वक्त काम पे हैं, एंड इफ यू आर वर्किंग राइट नाउ, आपको हम विश करना चाहेंगे बो कोहाज माय डियर। तो चलिए, ये अगला नगमा खासकर आपके नाम।

0: उम्र है
1: छोड़ो बहाना
0: ना ना ना।
2: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।

सुनहरे पल सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर पुरानी फिल्मों के गीत पुरानी यादें और वही पुराना एहसास चलिए कुछ पल के लिए वक्त को पीछे ले चलते हैं दोस्त और अगला गाना हम ऐसे पेश करना चाहेंगे जो हम चाहते हैं कि आप आराम से बैठे आंखें बंद करके अपने इन खूबसूरत यादों में खो जाइए उनको याद कीजिए होंठों पर आम प्रेटी मच्छों की छोटी सी प्यारी सी मुस्कुराहट जरूर आएगी तो ये रहा अगला गाना खासकर आपके लिए।

तो चलिए जी, फिलहाल के लिए आप हमें दीजिए इजाजत. बिल्कुल, इट्स टाइम फॉर गिनिशा टू से गुड बाय. आपको विश करना चाहेंगे टू हैव अ ग्रेट ग्रेट टाइम अहेड, लेकिन बस यूं ही साथ देते रहना ऑन रेडियो मॉरिशस इन योर सुनहरे पल. फिर से लौट आएंगे एक और खूबसूरत से शो के साथ. तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत. शुभ रात्रि, शब्बा खैर.

सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो हो, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

0: My, this is Radio Marches.
1: 您好
2: ，Assalamualaikum.
3: Kim Jumarishes.
4: Namaskar.
5: Shudrendra ki hrudaya purvaka namaskaram.
6: Ungal anaivarukkum vanakkam.
7: Radio Mauritius पर दिल से स्वागत है आप सभी का।